हर सुबह भगवान का एक संदेश है, उठो, मुस्कुराओ और अपने सपनों को फिर से आवाज दो। आज का दिन किसी और जैसा नहीं, क्योंकि आज आप कल से बेहतर बनने का निर्णय जो लेंगी। नमस्ते लखनऊ में, मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली के इंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार

की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाजी वाडे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 41.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्कार लखनऊ। किसान अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार का पालन करता है बल्कि देश को भी आत्मनिर्भर बनाता है। और अपने किसान भाइयों के लिए कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं आलू की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर विनायक प्रताप शाही से की गई ये भेंटवार्ता। भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां रबी के मौसम में आलू उत्पादन की आपकी योजना है तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर बीपी शाही साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां आलू उत्पादन की योजना बनाए हैं किसान भाई बहन, डॉक्टर साहब खेत का चुनाव और खेत की तैयारी कैसे करें आलू के लिए?
2: देखिए किसान भाइयों, जो खेत की चुनाव हम करते हैं तो सामान्य पीएच वाली भूमि का चुनाव करते हैं जिसमें बलुई दोमट और दोमट भूमि की आवश्यकता होती है और जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी देखिए किसान भाइयों, अभी बारिश हुई है और ये बहुत ही अनुकूल समय है कि इस समय अगर 2-4 दिन बाद खेत की कल्टीवेटर से 3-4 जुताई करके उसके बाद पाटा चला दें, समतलीकरण कर लें तो ये खेत की तैयारी का अनुकूल समय है। अगर कहीं बारिश नहीं हुई है तो इस समय पलेवा कर दें तो पलेवा करने के 1 सप्ताह बाद इसकी 2-3 बार जुताई करके खेत की तैयारी कर लें
1: और उचित नमी की दशा में बुआई करें।
2: उचित नमी होनी चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि नमी होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अगर नमी नहीं रहेगी तो आपका जो जमाव होता है उसमें प्रतिकूल

0: प्रभाव पड़ता है।
1: डॉक्टर साहब, प्रजातियां कौन कौन सी हैं और खास करके आजकल बायो फोर्टिफाइड जो प्रजातियां हैं, प्रसंस्करण के लिए जो प्रजातियां हैं और बाजार में जिनकी डिमांड अच्छी है, उन प्रजातियों का जिक्र करें।
0: किसान भाइयों, देखिए जो हम अगेती अगर बात करते हैं तो अगेती के में कुफरी पुखराज है, कुफरी सूर्या है, कुफरी ख्याति है और कुफरी भास्कर एक नई प्रजाति विकसित की गई है।
1: तो इसकी खासियत क्या है कुफरी भास्कर की?
0: कुफरी भास्कर की ये 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है और लगभग 140 से 160 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है और ये अगेती जो हम 10 अक्टूबर तक इसकी हम बुआई कर सकते हैं। जो मुख्य फसल होती है किसान भाइयों, जो हम 15 अक्टूबर से लेकर के और नवंबर के प्रथम सप्ताह में, तो उसमें कुछ प्रजातियां हैं, अभी नई नई प्रजातियां हैं, कुफरी गंगा है और कुफरी मोहन है, कुफरी गरिमा है, कुफरी ख्याति है, कुफरी बहार है। ये सब प्रजातियां अगर हम देखेंगे तो 90 से 100 दिन में ये तैयार हो जाती है और उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग हमारा 140 से 160 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है। कुछ प्रजातियां देखिए अभी विकसित की गई हैं जो लेट वाली कंडीशन की प्रजातियां हैं,
1: यानी
0: देर से तैयार होती हैं, तो उसमें कुफरी संगम है और कुफरी बादशाह है, ये हमारी लेट है। कुछ प्रजातियां अभी जो विकसित की गई हैं प्रसंस्करण के लिए वो करते हैं, जैसे कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना 4, अभी नई एक प्रजाति विकसित गई कुफरी चिप्सोना 5, कुफरी फ्राई सोना और कुफरी फ्राई ओम, ये हमारे प्रसंस्करण के लिए प्रजातियां हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों, तो आजकल बायो फोर्टिफाइड की बात होती है तो उसमें कुफरी नीलकंठ है, कुफरी जमुनिया है और एक कुफरी माणिक है, ये तीन प्रजातियां हैं। जो कुफरी नीलकंठ है तो इसका छिलका देखते हैं कि बैगनी कलर का होता है और इसका गुद्दा हल्का पीला होता है। कुफरी जमुनिया की बात करते हैं तो जैसे जामुन का गुद्दा होता है तो बैगनी रंग का गुद्दा होता है और इसमें एंथोसाइनिन और विटामिन सी अधिक पाया जाता है। कुफरी नीलकंठ की बात करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है तो जो शुगर डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए खाने के लिए उपयोग होती है। ये कभी लाल गुद्दे वाली कुफरी माणिक है तो वो भी बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है और इसमें भी जिंक भी पाया जाता है, इसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। किसान भाइयों, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें लाल रंग की भी किसान बहुत डिमांड करते हैं कि हम लाल रंग की के, तो लाल रंग में तीन प्रजातियां अभी दो, एक कुफरी अरुण लगाते थे, दो प्रजातियां अभी कुफरी लोहित और कुफरी आपका उदय, दो प्रजाति ऐसी है जो लाल कलर की जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में डिमांड होता है, तो ये अभी दोनों प्रजातियां नहीं है और लगभग 90 से 110 दिन तक ये तैयार हो जाती है और इसकी उत्पादन बात करते हैं तो लगभग 160 से लेकर 180 कुंटल प्रति एकड़।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आलू उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 87 550 110 86, 8755011086, 87 550 110 86।
1: डॉक्टर विनायक प्रताप शाही साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आलू उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने आलू की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर विनायक प्रताप शाही से की गई ये भेंट वार्ता सुनी। इनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
3: गांधी चर्चा।

0: सबसे पहले आप सुनेंगे बापू के विचार।
1: मनुष्य का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति। मनुष्य चाहे जो करे, उसकी सारी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हलचलों को ईश्वर के साक्षात्कार के चरमोद्देश्य से परिचालित होना है। सभी मनुष्यों की तत्काल सेवा हमारे प्रयत्नों का अविभाज्य अंग इसीलिए बन जाती है कि ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय उसे उसकी सृष्टि में देखने का प्रयत्न करते हुए उससे एक रूप हो जाना है। ऐसी स्थिति सबकी सेवा लिए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। मैं समग्र का अंग हूं और सारी मानवता से विलग होकर मैं समग्र से जुड़ा नहीं रह सकता। सच्चा व्यक्तित्व अपने को शून्य बना लेने में है। जीवन का रहस्य है स्वार्थहीन सेवा। सबसे बड़ा उद्देश्य है वीत राग बनना। ऋषियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सदाचार के नियम बनाए थे। ऋषि वह है जिसने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। गीता ने फल की इच्छाओं से प्रेरित कर्म के त्याग को संन्यास कहा है। जो कामनाओं अर्थात कर्म फल की इच्छाओं को छोड़ देता है, जो जितेंद्रिय है, वही वास्तव में मनुष्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य जिस अनुपात में मानवता प्राप्त करता है, अर्थात मानव समाज से अपनी एकता का अनुभव करता है, वो उसी अनुपात में ईश्वरत्व के निकट पहुंचता है। व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का विकास करे तो दूसरे व्यक्ति या समूहों द्वारा शोषण कम होता चला जाएगा और व्यक्ति स्वयं अपने विवेक के अनुसार काम करेगा। भावना और विचार दोनों ही मनुष्य स्वभाव के अंग हैं। इंद्रियों की अंधी प्रगति के वश में होकर बुद्धि अथवा विवेक के अंकुश को अलग कर देना मानो एक बहुत बड़े मानवीय सत्ता क्षेत्र को छोड़ देना है। मनुष्य को यह सत्ता क्षेत्र कुछ दिनों के लिए सौंपा गया है। इस क्षेत्र में अच्छी और बुरी ताकतें हावी होने की कोशिशें किया करती हैं। लोभ और मोह इसे लेना चाहते हैं। इन्हें पराजित करना ही पुरुषार्थ है। जो किन्हीं बाहरी शत्रुओं से लड़ता है और भीतर के अनंत शत्रु के विरोध में एक उंगली भी नहीं उठाता, यहाँ तक कि उन्हें मित्र समझने की भूल करता है, सच्चा योद्धा नहीं है। विवेक के जाग जाने पर भावनाएं उसका अनुकरण करती हैं। विवेक को जगाने का अर्थ है बुद्धि को जगाना, अच्छे और बुरे में अंतर करना और आत्मा की आवाज को सुनना और समझना।

गांधी चर्चा संपन्न हुई। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार शाम 6:50 से 7:20 तक। आप सुनेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार शाम 6:30 से 7:20 तक कृषि कार्यक्रम प्रायोजक नमामि गंगे एवं राज्य स्वच्छ जलापूर्ति उत्तर प्रदेश। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी।

राम से बढ़कर है राम का नाम। जिसने भी राम नाम को आधार बनाया उसका जीवन सुगम हो गया। हे मन, तो संसार की विषय वासना और विकारों से प्रीति तोड़कर श्री राम नाम का जप कर ले।

कृष्ण नाम जीवन का मधुर संगीत है, उनकी भक्ति आत्मा के लिए पावन प्रीत है। जो प्रेम से पुकारे कान्हा उसके पास आते हैं, अपने भक्तों के जीवन में आशा का दीप जलाते हैं।

जो भक्त राम नाम के आदर्शों को अपने आचरण में उतार लेता है, उसके जीवन में भक्ति के साथ संस्कार, शांति और सद्मार्ग का प्रकाश फैलता है। यही श्री राम की भक्ति का सच्चा फल है।

प्रभु राम का स्मरण करते ही मन के भीतर एक सौम्य शांति उतर आती है, मानो सारी व्यथा सारा बोझ हल्का हो जाए। श्रद्धा भरे हृदय से प्रस्तुत है हरिओम शरण की अमर भक्ति धुन।

आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ। भक्ति की रस्में और डूबने के लिए आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 318।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। एक ओर श्रीराम तो दूसरी ओर रावण के जयघोष के साथ दोनों ओर के वीर सेनानी एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं। वानर और भालू भीमकाय शिलाखंड किले पर फेंकते हैं। राक्षसों के पैर पकड़ उन्हें धरती पर पटक देते हैं। श्री राम के प्रताप से वानर सेना राक्षसों के झुंड के झुंडों को मसल कुचल डालती है और चारों ओर राम का जय घोष गूंज उठता है। राक्षसों के समूह युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। नगर में स्त्रियों बच्चों और विकलांगों का क्रंदन सुनाई देने लगा। नगर निवासी इस विपत्ति के लिए रावण को कोस रहे हैं। रावण ने जब अपनी सेना के पस्त होकर युद्धभूमि से भागने का समाचार सुना तो भागते सैनिकों को रोक चेतावनी दी, जो भी युद्ध में अपनी पीठ दिखाकर भागेगा मैं अपनी तलवार से उसे मार डालूंगा। मेरे दिए हुए भोजन पर पलने और भोग विलास करने के बाद अब तुम लोगों को प्राणों का मोह हो गया है। रावण से अपनी भर्त्सना सुनकर राक्षस योद्धा एक बार फिर युद्ध में आ डटे। सोचा, रावण के हाथों मरने की अपेक्षा लड़ते हुए शत्रु के हाथों मरना ही श्रेयस्कर है। नए उत्साह के साथ राक्षसों ने वानर सेना को त्रस्त कर दिया। अब भयभीत वानर भागने लगे। जिस समय हनुमान ने अपनी सेना में भगदड़ का समाचार सुना उस समय पश्चिमी द्वार पर मेघनाथ से उनका युद्ध हो रहा था। द्वार तोड़ना कठिन लग रहा था। हनुमान को अतिशय क्रोध हो आया। काल की भांति गर्जन करते हुए एक भीमकाय शिलाखंड लेकर वे लंका के किले पर जा चढ़े। फिर मेघनाथ के रथ को सारथी समेत छिन्न भिन्न कर दिया और लात से मेघनाथ की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि वो धराशायी हो गया।

0: सरस्वती सुन रहे थे। गायक कलाकार थे रविंद्र साठी, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार शाम 6:50 से 7:20 तक।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आक्रमणेषु नागरिकाणां मृत्युः अभवत् तथा अनेकजनाः व्रणिताः जाताः। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् नागरिकोपयोगी आधारभूतसंरचनां लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं सर्वथा अस्वीकृतं वर्तते। रियाद नगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन सऊदी अरब देशे निवसतां भारतीय नागरिकाणां कृते परामर्शः प्रसारितः। वर्तमानस्थितिं दृष्ट्वा भारतीय नागरिकाः सतर्काः भवेयुः, आवश्यकतायां च गृहेषु एव तिष्ठेयुः इति दूतावासेन परामर्शः प्रदत्तः। भारतीय नागरिकाः प्रवर्तमान घटनाभिः सम्बद्धानां दृश्य श्रव्य चित्राणां वार्तानां च सामाजिक माध्यमेषु प्रसारणं पुनः प्रसारणं च न कुर्युः इति दूतावासेन अनुरोधिताः। स्थानीयाधिकारिभिः आधिकारिक माध्यमैः प्रसारितानां निर्देशानां पालनमपि कर्तुं तान् सूचितम्। प्रवासी भारतीय सहायता केन्द्रस्य अहोरात्रम् उपलब्धा दूरभाष सहायता सेवा निःशुल्क दूरभाष संख्यायाम् 8-0-0-2-4-7-1-2-3-4 इत्यत्र उपलब्धा अस्ति। क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य रांची नगरे वेस्ट इंडीज दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आप सभी श्रोताओं का नमस्कार। लखनऊ कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। स्वस्थ शरीर में ही सपनों को पंख मिलते हैं और स्वस्थ मन से ही जीवन की राहें आसान बनती हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे गुड़ों से भरपूर अडूसा के बारे में। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, आज की चर्चा एक ऐसे पौधे पर है जो दिखने में भले ही आम लगे लेकिन इसके भीतर छिपी शक्ति असाधारण है, अडूसा। आज हम बात करेंगे अडूसा की। ये भारतीय उपमहाद्वीप में आसानी से पाया जाने वाला झाड़ीदार पौधा है। इसकी पत्तियां गाढ़े हरे रंग की होती हैं और इनमें एक विशिष्ट तीव्र गंध होती है जो इसकी औषधीय महत्ता का पहला संकेत है। श्वसन तंत्र की बात करें तो अडूसा एक ऐसा पौधा है जिसे आयुर्वेद में मुख्य कफहर औषधि माना गया है। जब गले में खराश हो, कफ जमा हो या सांस लेने में तकलीफ हो तब अडूसा की पत्तियों से बना काढ़ा या उसका रस चमत्कारिक रूप से राहत देता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि अडूसा ब्रोंकाइटिस, दमा, खांसी और टीबी जैसी बीमारियों में उपयोगी होता है। खास बात तो ये है कि ये बलगम को ढीला करता है और उसे बाहर निकालने में मदद करता है जिससे छाती में जमा भारीपन कम होता है और सांस लेने में आसानी होती है। बहुत से घरों में आज भी जब किसी को खांसी होती है तो अडूसा की 2-3 ताजी पत्तियां लेकर उन्हें अदरक और तुलसी के साथ उबाला जाता है। इसमें थोड़ा शहद मिलाकर दिया जाता है और ये मिश्रण गले की सूजन, जलन और कफ को तुरंत राहत देता है। यही नहीं, इसके पत्तों का रस भी निकाला जा सकता है जिसे गर्म पानी के साथ लिया जाए तो वो श्वास मार्ग को साफ करता है और फेफड़ों को बल देता है। लेकिन अडूसा के गुण केवल श्वसन तंत्र तक सीमित नहीं है। ये पौधा रक्त स्राव को रोकने के लिए भी जाना जाता है। जब कहीं से अधिक रक्त बह रहा हो, जैसे नाक से खून आना, मुंह से खून आना या मासिक धर्म में अत्यधिक रक्त स्राव, तो अडूसा के रस को उपयोग में लाया जाता है। इसकी पत्तियों में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो रक्त को जमने में सहायता करता है जिससे रक्त स्राव धीरे धीरे नियंत्रित हो जाता है। महिलाओं के लिए भी अडूसा अत्यंत लाभकारी होता है, विशेषकर जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्त स्राव या अनियमितता की समस्या होती है उनके लिए अडूसा एक औषधीय मित्र बन सकता है। कुछ पारंपरिक नुस्खों में इसे अशोक और शतावरी जैसी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर दिया जाता है ताकि स्त्री स्वास्थ्य में संतुलन बना रहे। इसके अलावा अडूसा पाचन तंत्र में भी सहायक होता है। जिन लोगों को पेट में भारीपन, गैस या अपच की समस्या होती है, उनके लिए अडूसा का हल्का काढ़ा लाभकारी होता है। ये आंतों को शांत करता है और पाचन अग्नि को सक्रिय करता है। खास बात तो ये है कि ये बहुत सौम्य होता है, इसलिए बच्चों को भी सीमित मात्रा में दिया जा सकता है। विशेषकर

0: तब जब उन्हें खांसी या छाती में जकड़न हो। अड़ूसा की छाल, फूल और जड़ें भी औषधीय होती हैं। इसके फूलों का उपयोग शरीर को ठंडक देने और सूजन कम करने के लिए किया जाता है। वहीं इसकी जड़ें वात और कफ दोष को शांत करती हैं और गठिया या जोड़ों के दर्द में भी राहत देती हैं। कई आयुर्वेदिक दवाओं में अड़ूसा को मुख्य घटक के रूप में शामिल किया गया है, जैसे वासावले, जो विशेषकर खांसी, दमा और टीबी के इलाज के लिए दिया जाता है। एक और पहलू है जिसकी चर्चा आवश्यक है और वो है अड़ूसा का प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव, यानी ये केवल लक्षणों का इलाज नहीं करता बल्कि शरीर को इतना मजबूत बनाता है कि वो स्वयं बीमारी से लड़ सके। जब हम नियमित रूप से ऐसे पौधों का सेवन करते हैं, चाहे चाय में डालकर, काढ़े के रूप में या औषधि के रूप में, तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे बेहतर होती है। खासकर बदलते मौसम में जब सर्दी जुकाम आम हो जाता है, अड़ूसा शरीर को भीतर से तैयार करता है। श्रोताओं, अड़ूसा हमें एक और बात सिखाता है और वो है स्थिरता और सहजता की ताकत। ये पौधा किसी ऊंचाई या विशेष परिस्थितियों में नहीं उगता, ये तो वही उगता है जहाँ सामान्य जमीन हो, नमी हो, थोड़ी सी छांव हो, और वो भी बिना किसी विशेष देखरेख के। लेकिन इसकी उपयोगिता असाधारण है। ये बात हमें भी अपने जीवन में सीखने योग्य है कि जो चीजें साधारण लगती हैं, उनमें भी गहराई, शक्ति और उपयोगिता हो सकती है। आज जब बाजार में हर छोटी तकलीफ के लिए एक गोली मौजूद है, तब अड़ूसा जैसे पौधे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ रहकर कैसी गहरी समझ विकसित की थी। उन्होंने देखा, परखा और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उन जड़ी बूटियों को अपनाया, जो न केवल बीमारी को दूर करती हैं, बल्कि शरीर को समग्र रूप से संतुलित और सशक्त बनाती हैं। श्रोताओं, इस उम्मीद के साथ कि आज की बातचीत ने अड़ूसा के गुणों को न सिर्फ जानकारी के रूप में बल्कि एक आस्था और समझ के रूप में भी आपके मन तक पहुंचाया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए औषधीय पौधे, देसी नुस्खे या सेहत से जुड़े जीवन दर्शन के साथ। नीना सुनकर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: गुड़ों से भरपूर अड़ूसा, अभी आप इस विषय पर नीना सुनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है, उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे बालिका सिंह गुप्ता से सुनिएगा काव्य पाठ। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश, सुनिएगा सेहतनामा। मौजू है बदलता मौसम, बदलती सेहत। बात की है डॉक्टर मोहम्मद जावेद सिद्दीकी ने, प्रेजेंटर हैं शमशुल आरफीन और पेशकश आसिफ इकबाल की है। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज अम्बेडकर नगर और बांदा जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुर्खियों में ये कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 11 बजे से। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, अंतरिक्ष सप्ताह। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और रात 10:30 पर विनोद कुमार द्विवेदी का ध्रुपद गायन प्रसारित होगा। दिन में 1:15 पर शहरी महिलाओं के कार्यक्रम उदिता में लेटर थेरेपी, मन के सुकून की जादुई शक्ति, इस विषय पर अंजलि गुप्ता मनोरोग विशेषज्ञ से की गई भेंटवार्ता बहनें सुनेंगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर धान की फसल में कीट रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर जय कुमार यादव से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंटकर्ता हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनते ही शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर हमारी नजर में कार्यक्रम में युवा समाधानकर्ता, सामाजिक नवाचार, जागरूकता, ओबी पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर लोकार्पण कार्यक्रम में अदिति उमराव से की गई भेंटवार्ता होगी, गांव में सर्पदंश से बचाव और प्रबंधन, भेंट करता है रामजीत मौर्य। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी प्रसारित होगी। आलेख एवं वाचन अमरेंद्र सहाय अमर का, संपादन डॉक्टर सुशील कुमार।

शाम 7:31 पर अंग्रेजी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें टेरिटोरियल आर्मी डे पर टॉक सुनिएगा, वॉरियर्स ऑफ द नेशन, ए कन्वर्सेशन विद मेजर विराट मिश्रा, आर्मी ऑफिसर सिविल सर्वेंट। इंटरव्यूअर हैं डॉक्टर शिवा राकेश। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर दिग्विजय नाथ सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीतों का आप आनंद ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर अरशद हुसैन चिश्ती की गायन नात और कवाली पेश की जाएगी। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरव्यू प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा सुबह 11:35 से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है आओ तुम्हें चांद पे ले जाए अंतरिक्ष सप्ताह। कल्पना कीजिए रात का स्याह आकाश, असंख्य तारों की झिलमिलाहट और उन तारों के बीच शान से चमकता हुआ हमारा अपना चांद। सदियों से मनुष्य ने चांद को केवल देखा नहीं, उसे पाने का सपना भी देखा है। कभी कवियों ने उसे प्रेम का प्रतीक बनाया, कभी माताओं ने बच्चों को बहलाने के लिए चंदा मामा की कहानी सुनाई और कभी वैज्ञानिकों ने इस चांद की धरती पर कदम रखने का सपना देखा। आज विज्ञान ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया है। तो आइए इस बार कल्पना के पंख लगाकर निकल पड़ते हैं एक ऐसे सफर पर जहां धरती पीछे छूट जाएगी, आसमान हमारा रास्ता बनेगा और मंजिल होगी चांद। इसी रोमांच और वैज्ञानिक उपलब्धियों को समझने का अवसर देता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, जो हर वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है।

विश्व अंतरिक्ष सप्ताह केवल तारों और ग्रहों की बातें करने का अवसर नहीं, बल्कि यह उस जिज्ञासा को सलाम करने का सप्ताह है जिसने मनुष्य को धरती की सीमाओं से बाहर देखने का साहस दिया। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा था और मानव द्वारा निर्मित वस्तु पहली बार अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंची। इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। फिर 10 अक्टूबर 1967 को बाह्य अंतरिक्ष संधि प्रभावी हुई जिसने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आधार तैयार किया। इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की स्थापना की। अब जरा आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि हम एक अंतरिक्ष यान में बैठे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 10, 9, 8 और जैसे

जैसे संख्या शून्य की ओर बढ़ती है, रोमांच हमारे भीतर तेज हो जाता है। 3, 2, 1 और रॉकेट आकाश को चीरता हुआ ऊपर उठता है। कुछ ही क्षणों में धरती से हमारी दूरी बढ़ने लगती है। नीचे दिखाई देती है चमकती हुई शहरों की रोशनियाँ, नदियों की लकीरें और धीरे धीरे नीला ग्रह एक सुंदर गोलाकार दुनिया में बदल जाता है। शायद उस क्षण अंतरिक्ष यात्री को सबसे गहराई से यही एहसास होता होगा कि हमारी धरती कितनी सुंदर है और उसकी रक्षा करना कितना आवश्यक। और अब सामने है चांद, वही चांद जिसने बचपन में खिड़की से झांकते हुए देखा था, लेकिन आज हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। चांद पर ना हमारे जैसा वातावरण है, ना वहाँ धरती जैसी हवाएं चलती हैं। वहाँ का आकाश भी हमें धरती जैसा नीला नहीं दिखाई देता। उसकी सतह पर विशाल गड्ढे हैं, पर्वत हैं, धूल से भरा एक अनोखा संसार है। लेकिन इस वीरान सी दिखाई देने वाली दुनिया में भी वैज्ञानिकों ने संभावनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। विशेष रूप से दो चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौजूद बर्फ के संकेतों ने वैज्ञानिकों की रुचि और बढ़ा दी, क्योंकि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए पानी अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। भारत ने भी अंतरिक्ष की इस रोमांचक यात्रा में अपनी अलग पहचान बनाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिया को दिखाया कि दृढ़ संकल्प शक्ति और प्रतिभा, वैज्ञानिकों के सोच के बल पर बड़े से बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया और चंद्रयान 3 ने 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक यादगार अध्याय जोड़ा। यह उपलब्धि केवल वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के लिए यह संदेश भी थी कि सपने वही बड़े होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी उतनी ही बड़ी की जाए। अंतरिक्ष विज्ञान का संसार केवल चांद तक सीमित नहीं है। हमारी आंखों से दिखाई देने वाले अनगिनत रहस्य अंतरिक्ष की विशालता में छिपे हैं। मंगल ग्रह की लाल मिट्टी हमें पुकारती है, शनि के छल्ले हमारी कल्पना को चकित करते हैं, बृहस्पति का विराट आकार हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है और दूर दूर स्थित आकाश गंगाएं हमें यह सोचने को मजबूर करती हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा स्थान कितना छोटा और फिर भी कितना महत्वपूर्ण है।

कभी हमारे पूर्वज आकाश को देखकर नक्षत्रों की कल्पना करते थे, आज मनुष्य अंतरिक्ष यान भेज रहा है, रोवर उतार रहा है और दूर स्थित खगोलीय पिंडों का भी अध्ययन कर रहा है। कल शायद ऐसे नए वैज्ञानिक सामने आएंगे जो चंद्रमा पर मानव बस्तियों की संभावनाओं पर काम करेंगे। और अंत में बस इतना हम कहना चाहेंगे, कभी किसी बच्चे ने आसमान की ओर देखकर पूछा था, चांद इतना दूर क्यों है? शायद विज्ञान ने उसी मासूम सवाल को अपना लक्ष्य बना लिया। आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं, कल शायद किसी और दुनिया की ओर बढ़ेंगे। सफर लंबा है, रास्ता अनंत है, लेकिन मानव जिज्ञासा की उड़ान उससे भी कहीं अनंत है। तो आइए अपने भीतर उस जिज्ञासु बच्चे को जगाएं और कहें, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, क्योंकि जहां कल्पना समाप्त होगी वहीं से विज्ञान की शुरुआत होगी। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की अंजलि श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, गांव से लेकर शहरों तक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है मजबूत। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारने के दिए निर्देश। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। कर दरों में नहीं किया गया कोई बदलाव। और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने तपेदिक मुक्त भारत अभियान के तहत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पुलिस के कुशल खिलाड़ी कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पाने वालों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता शामिल हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 1000 खिलाड़ियों को पहले नियुक्ति मिल चुकी है और 555 अन्य की चयन प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहरों तक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है।
5: गांव से लेकर के ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर जनपद स्तर तक, जनपद स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, खेल के मैदान से लेकर के मिनी स्टेडियम, मिनी स्टेडियम से स्टेडियम और स्टेडियम से इंटरनेशनल स्टेडियम आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित हो रहे हैं।
6: हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज दे रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दे रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस करने की सुविधा हो और उस प्रकार के कोचेज भी हो, उस प्रकार की टीम वहां पर उनके साथ कार्य करती हुई दिखाई देनी चाहिए।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, ऊर्जा, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में चल रही बड़ी परियोजनाओं को केवल प्रक्रियाओं तक सीमित न रखा जाए बल्कि उन्हें समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारा जाए। एक रिपोर्ट।
7: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जहां आधारभूत ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं की गति तेज करने के निर्देश दिए तो वहीं उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान में चिन्हित परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने, मंडियों में किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं

0: और ग्रेटर नोएडा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की प्रगति का हाल भी जाना। समाचार कक्ष से रितेश।
1: मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 5वें संस्करण की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी केवल निवेश परियोजनाओं को प्रारंभ करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह प्रदेश में रोजगार, उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों को गति देने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन कल नोएडा में एक निजी इंस्टीट्यूट के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास
2: काउंसिल रेकमेंडेड रिमूविंग अरेस्ट पावर्स अंडर GST।
3: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: वित्त मंत्री ने बताया कि कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
3: GST परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
2: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी लंबी अवधि तक निरंतर सरकार का नेतृत्व करना दुर्लभ है।
4: आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को एज हेड ऑफ गवर्नमेंट 25 साल मुकम्मल हुए हैं। मुझे नहीं लगता विश्व में कोई ऐसा और उदाहरण है जहां निरंतर बिना ब्रेक कोई भी व्यक्ति किसी सरकार का मुखिया रहा हो इतने लंबे अंतराल। वही अपने में कीर्तिमान है, विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वही हमारे लिए गर्व की बात हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि यह दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ है।
5: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
6: आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
5: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

0: इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के तहत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। यह भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी इस कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से प्रसारण किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस कोटे से चयनित 470

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, गांव से लेकर शहरों तक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है मजबूत। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारने के दिए निर्देश। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। कर दरों में नहीं किया गया कोई बदलाव। और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने तपेदिक मुक्त भारत अभियान के तहत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का किया शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। समय है शास्त्रीय संगीत का। आज हम आप रचना चार ताल में निबद्ध है।

ಮಾಂಗ ದೇವ ಮಾಂಗ ದೇವ ಮಾಂಗ ದೇವ ಮಾಂಗ ದೇವ.

अभी आप विनोद कुमार द्विवेदी का राग भैरव में ध्रुपद गायन सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो रहा है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए। भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
2: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की

0: 456 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
1: दूर दूराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गाँव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गाँव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
0: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के इलाकों पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशी हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन,
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतदान की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। PVK के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग

0: खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
1: हूती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आएं देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हुई चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए

0: बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए। भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। FM 100.4 MHz, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप तथा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 10 अक्टूबर सन 2026 को साय 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 9 अक्टूबर सन 2026 को साय 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। श्रोताओं, इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 9 अक्टूबर सन 2026 को साय 4 बजे से, यानी के आज शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। श्रोताओं, इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। FM 100.4 MHz पर यह आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली है। आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे।
1: फिल्मी फ्राइडे कट वन
2: टेक वन 5, 6, 7, 8
1: लाइट कैमरा एक्शन एक्शन एक्शन।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, होल्ड योर हार्ट।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के बॉलीवुड गॉसिप्स के वीकली शो नाम फिल्मी फ्राइडे है। यहाँ बातें टोटल फिल्मी होती है और जिंदगी कई बार लगती है फिल्मों की तरह है, लेकिन हाँ कई बार फिल्में भी लगती हैं कि हमारी जिंदगी की तरह है, मगर रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। यकीन मानिए दोस्तों, फिल्मों का हमारे समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है और कहा जाता है कि बहुत सारी बातें और बहुत सारी थीम और बहुत सारी चीजों को लेकर ही फिल्में बनाई जाती हैं। कुछ काल्पनिक कहानियां भी हो सकती हैं और कुछ समाज से जुड़ी हुई कहानियां, लेकिन जिन इमेजेस को, जिन कैरेक्टर्स को हम अपने जहन में बसाते हैं, उनके पीछे अभिनय करने वाले कलाकारों को हम सदैव याद रखते हैं। इंसान का नाम आपको पता हो या ना हो, लेकिन यह तो आपको मालूम ही होता है कि किस फिल्म में कौन सा किरदार कौन से कलाकार ने किया, और जिस समय हम उस किरदार को देख रहे होते हैं तो उस किरदार का जो नाम होता है वह हमारे जहन में बसा रहता है। ये अलग बात है कि उस अभिनेता या अभिनेत्री या कलाकार को हम उसके नाम से जानते हैं और पता करने की कोशिश भी करते हैं, अगर हम नहीं जानते हैं कि ये जो रोल किया है

वो कौन कलाकार ने किया है। कई बार कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी बातों से, अपने अभिनय से और अपनी बुलंदियों से एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मालूम है कि हमारे बीच एक प्रसिद्ध और एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेता नाना पाटेकर जी अब नहीं हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का शुरुआत में ही नाना पाटेकर जी को हमारी पूरी टीम की ओर से, यानी फिल्मी फ्राइडे की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि नमन।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो, रेडियो बधाई हूँ ना, क्षमा कीजिए, श्रोताओं आपने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली, और इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो फिल्मी फ्राइडे। यहाँ बातें टोटल फिल्मों की होती हैं, फिल्मी बातें होती हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम आपकी सेवा में लाइव रहता है प्रत्येक शुक्रवार सुबह 8:15 से। और हाँ दोस्तों, अब एक और खास बात यह है कि नाना पाटेकर जी की वो कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर नाना पाटेकर का कौन सा ऐसा संवाद जिसे आप बार बार याद करते हैं और कहते भी हैं अपनी जुबान से। मुझे अभी आप मैसेंजर के थ्रू भेज सकते हैं अपना नाम पता लिखकर, वो संवाद जो आपको पसंद है या वो फिल्म जो आपको पसंद है, हम लाइव कार्यक्रम के दौरान आपका संदेश शामिल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और उधर चलते हैं जहां हमारे ढेरों स्टार हैं। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्मी फ्राइडे में आपको मौका मिलता है स्टार या सुपरस्टार बनने का।

सुपर स्टार से तो हम बातें करते हैं मगर स्टार के नाम लिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए और पहला सही जवाब जिन्होंने भेजा है वो सुपर स्टार है, बाकी के स्टार हैं तो स्टार की शुरुआत कर देते हैं। हमारे कौन दोस्त हैं जिन्होंने राइट आंसर भेजा? हमने आपको पूछा था कि जहर उस दिन के कौन से गाने में आया था, किस गाने में जहर शब्द आया था। हमने आपसे ये नहीं पूछा था कि सड़क फिल्म के गाने में है, किस फिल्म के गाने में है। आपको फिल्म का नाम तो बताना ही नहीं था, आपको सिर्फ उस गाने के बोल बताने थे, कौन सा गाना था जिसमें जहर वर्ड आया। तो चलिए देखते हैं कौन दोस्त हैं जिन्होंने राइट आंसर भेजे हैं। और आप हैं बीपी गौतम, एटा रोड, गंज डंडवारा, उत्तर प्रदेश से। आपने राइट आंसर भेजा, राइट आंसर हमें भेजा मणिनाथ बरेली से, नीरज सक्सेना जी ने भी, और कोई साथी आए राइट आंसर के साथ। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौड़ जी ने हमें सही आंसर भेजा। एक चीज और भी है दोस्तों, जो सवाल किया जाता है मुझे लगता है उस पर आप गौर नहीं करते। हमने सिर्फ ये पूछा था आपसे कि किस गाने में शब्द आया, आपको फिल्म का नाम तो बताना ही नहीं था, है ना। सिर्फ आपको गाने के बोल बताने थे, कौन से गाने में जहर वर्ड आया था। खैर कोई बात ना, आगे बढ़ेंगे। और हाजीपुर, खजुरिया, फरीदपुर, बरेली से पंकज गंगवार जी ने भी हमें एकदम राइट आंसर भेजा है। राइट आंसर के साथ हमारे ये जो साथी हैं वो हैं डॉक्टर डी एच बच्चन जी, गणेशपुर, गंज डंडवरा से, और मोहम्मद कलीम जख्मी, रेलवे रोड, गंज डंडवरा से भी हमें सही जवाब भेजते हैं। और एकदम करेक्ट जवाब हमें भेजा है, कौन साथी हैं आप हैं मास्टर विठल सुरोशे, काटा रोड, वाशिम, महाराष्ट्र से। मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही जवाब के को सुना और बिल्कुल सही जवाब भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई दोस्त हैं? चलिए हम कोशिश कर रहे हैं उन सबको जल्द से जल्द शामिल करने की। तो ये तो बिल्कुल गलत जवाब है क्योंकि ये सवाल का जवाब है ही नहीं, हमने फिल्म का नाम किसी से पूछा ही नहीं। आप बताइए, अच्छा आप में से किसी ने भी ये सुना हो कि हमने कहा फिल्म का नाम बताओ या किस फिल्म के गाने में, ऐसा तो हमने नहीं पूछा था। हमने तो सिर्फ आपसे इतना पूछा था किस गाने में ये शब्द आया है। तो अभी तक तो भैया जितने भी जवाब हम ओपन करते जा रहे हैं मैसेज, वो सब गलत जा रहे हैं, सब फिल्म का नाम बता रहे हैं। हमने फिल्म का नाम बताया ही ना, पूछा ही ना, बिल्कुल ना पूछा। आपको तो सिर्फ ये बताना था कि यह कौन सा गाना था जिसमें ये जो शब्द है जहर आया था। तो कौन कौन कौन कौन कौन कौन कौन कौन कौन कौन ना, अभी तो लाइन लगी हुई है आपके गलत जवाबों की। हाँ जी हाँ जी, सही बात है। तो हमने फिल्म का नाम तो पूछा ही नहीं था। देखो ऐसा लगता है कि सबने कॉपी किया है एक दूसरे को, इसीलिए आप सबके जवाब गलत जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। चलिए और कोई दोस्त तो मुझे लग नहीं रहे कि जिन्होंने राइट आंसर भेजा है, सबने फिल्म का नाम लिखकर भेजा है। हमने फिल्म का नाम पूछा ही नहीं था किस गाने में ये शब्द आता है ना। तो चलिए अब तक तो मुझे कोई भी और दोस्त का जवाब मिला ही नहीं है सही। चलिए और कोई दोस्त देख लेते हैं इस दौरान, अगर आपके जवाब देखते हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, यहां पर यही बात हुई कि बाकी और कोई है ही ना। तो आप सबको, जिन दोस्तों ने सही जवाब भेजे उन सबको बहुत बहुत बधाई, बधाई हो भाई, आप सुपरस्टार की जगह स्टार बने। लेकिन सुपरस्टार जो बने वो अब आपके साथ होंगे।

एक ही गीत को कितनी बार तोड़ मरोड़ के गाओगे। हाँ सच मानिए, ये जो गीत अभी आपने सुना, इससे पहले भी सुना होगा, बस थोड़ा सा इधर उधर उलट फेर किया और गाना तैयार कर दिया। खैर कोई बात ना, आपको बता दें आकाशवाणी बरेली से इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो, नाम फिल्मी फ्राइडे है। प्रत्येक शुक्रवार सुबह 8:15 से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में लाइव होता है और आपको मौका मिलता है स्टार या सुपर स्टार बनने का। तो आप कहाँ खोए हैं भाई, जल्दी से ट्यून करो 100.4 FM हमारी रेगुलर फ्रिक्वेंसी, और इसके अलावा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप हमें सुन रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोग्राम में हम एक सवाल पूछते हैं और सवाल का सही जवाब जो दोस्त भेजते हैं वो स्टार और सुपरस्टार बनते हैं। हाँ, हमने अभी आपसे कुछ देर पहले पूछा था कि भाई ये बताइए कि नाना पाटेकर जी की कौन सी वो फिल्म या उनका कौन सा संवाद है जो आपको आज भी पसंद है और आपके जहन में गाए बगाहे आप उसे याद कर लेते हैं या जुबां से कह देते हैं। तो एक डायलॉग हमें भेजा है, एक मच्छर, ये वाला डायलॉग पसंद है पवन गौर जी को, और यशवंत फिल्म आपको बहुत पसंद है। अगर आप लिखते हैं कि इस फिल्म में उनके रोल के बारे में भी अगर कुछ और लिख पाते तो और भी बढ़िया था। खैर, क्रांतिवीर और तिरंगा इस फिल्म के डायलॉग जो है वो अजीत भावसार जी को बहुत पसंद है, जो नाना पाटेकर और अन्य कलाकारों द्वारा अभिनीत है। और आपके अलावा भी हमें क्रांतिवीर फिल्म का डायलॉग है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, ये विनेश कुमार श्रीवास्तव जी को निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली कैंट से, इनको भी ये डायलॉग पसंद है। सच कहें दोस्तों कि वैसे तो एक अलग चीज़ है, मजनू मेरे पास दौलत है, शौहरत है और मौत भी, ऐसा करके कल हमने कोई एक उनका एक कार्टून देखा था। और सच मानिए उनके कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे। ये हमें मैसेज भेजा है डॉक्टर DH बच्चन साहब ने गणेशपुर के इंटनवरा से, कहते हैं कि मैं सूखी लकड़ियाँ जमा कर रखी हैं, मैंने सूखी लकड़ियां जमा कर रखी हैं, गीली लकड़ियों से मत जलाना, धुआं उठेगा तो आंख में पानी आ जाएगा। यह डायलॉग हमें भेजा है डॉक्टर DH बच्चन साहब ने, यकीनन उनके अभिनीत फिल्मों का एक अलग ही रौला कह सकते हैं, और इसके अलावा उनकी जो अदायगी थी उसमें भी एक विविधता थी और एक अलग तरह का कंटेंट वो लेकर आते थे, और अपनी अदायगी से उनके डायलॉग में पता नहीं ऐसा क्या है, चाहे हास्य फिल्मों की बात की जाए या गंभीर फिल्मों की बात की जाए। आपने देखा होगा वेलकम सीरीज में जितने भी उनके वो थे, मजनू का और उनका जो किरदार था। खैर, नाना पाटेकर की तिरंगा और क्रांतिवीर इनको बहुत पसंद है। ये कौन है? नीरज सक्सेना जी हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, कार्यक्रम में हमारे द्वारा आपसे जो सलाह और राय, जो मशविरा आपसे किया गया, जो सुझाव मांगा गया, जो आपकी बात मांगी गई कि कौन सी फिल्म है नाना पाटेकर जी के

0: उनका कौन सा डायलॉग है उसके बारे में आप सबने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। और अब चलते हैं वहां जहां हमारे भी यानी कि फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए क्योंकि अब हमारे साथ हमारे पिछले हफ्ते के फिल्मी फ्राइडे के प्रोग्राम में सुपरस्टार का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो,
1: बुलंद शहर की बुलंद आवाज सईद अब्बासी का, गजेंद्र जी आपको और आपके तमाम चाहने वालों को पुरखलूस आदाब।
0: हमारी ओर से भी आपको आदाब अर्ज है, साथ ही मुबारकबाद आपको फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए कैसे मिजाज हैं आपके?
0: एकदम मिजाज बहुत अच्छे हैं और आप सबकी सेवा करते हुए और भी अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है, जब सुपरस्टार से बात करने का मौका मिल जाए तो फिर अपनी तो बल्ले बल्ले है।
1: बल्ले बल्ले दोनों तरफ से बल्ले बल्ले हो जाती है।
0: हाँ ये तो है। अच्छा ये बताइए, फिल्में देखने का तो शौक हो गई आपको?
1: जी बहुत बेतहाश शौक रहा है।
0: बेइंतहा।
1: अब तो इतनी फिल्में, मतलब हमारे बुलंदशहर के अंदर 6 पिक्चर हॉल थे। जब तक हर पिक्चर हॉल की फिल्म नहीं देख लिया करते थे ना, तो सुकून नहीं मिलता था।
0: क्या
1: और
0: बात है।
1: स्कूल जाते वक्त सारे पोस्टरों को देखते हुए जाते थे, और जब फिल्म देखने जाते थे तो ये सोचते थे यार पोस्टर में हमने ये सीन देखा, ये तो अभी तक आया ही नहीं है।
0: फिर
1: सारी फिल्में देखते थे, जितनी भी फिल्म आती थी बस ये रहता था कि यार ऐसा ना हो कि ये फिल्म उतर जाए और हमें कल लास्ट डे है इसका,
0: जी
1: हमें देखनी जरूर है। तो किसी ना किसी तरीके से स्कूल से बंक मार के या कुछ भी करके फिल्म
0: जी
1: को देखना जरूरी था। और
0: जैसा
1: हालात उस वक्त, इस वक्त, उस वक्त जब हालात इतने थे, मतलब पिक्चर का इतना क्रेज था लोगों में कि बहुत बहुत लंबी, जैसा कि फिल्मों में भी दिखाया गया है,
0: जी
1: बहुत बहुत लंबी टिकट के लिए लाइन लगी रहती थी। हमने भी उसी लाइन में खड़े होके चीरते फाड़ते बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करते हुए खिड़की पे जाके टिकट ली है।
0: कुछ फिल्में
1: वो
0: तो
1: भी
0: ऐसी
1: एक
0: थी,
1: दौर
0: टिकट
1: था।
0: विंडो पर जब हाथ बढ़ाते थे खिड़की लेने को, पता चला कि बहुत सारे लोगों के हाथ होते थे तो उसमें लोगों
1: छिल जाया
0: के
1: करते
0: छिल
1: थे
0: जाया
1: हाथ
0: करते
1: भी,
0: थे। हैं।
1: कुछों के पैसे अंदर रह जाया करते थे। फिर वो खिड़की बंद कर लिया करते थे क्योंकि अब हाउसफुल हो गया, अब टिकट नहीं मिलेगा,
0: टिकट नहीं
1: फिर
0: मिलेगा।
1: ब्लैक में मिला करती थी टिकट।
0: क्या बात है, वो दौर था, लेकिन वो दौर अब नहीं आएगा लौट के।
1: एक बार तो मैंने अपने फादर से बहुत जिद की थी, फिल्म नसीब आई थी, तो मैंने कहा मुझे फिल्म नसीब जरूर देखनी है। तो बस दिमाग में ये चल रहा था कि नसीब में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के नसीब में नसीब की बातें दिखाई दी होंगी उसके अंदर, के नसीब में क्या क्या होता है लोगों के। तो
0: क्या आपको याद है
1: मैं,
0: आपकी आपकी पहली फिल्म कौन सी थी जो आपने देखी?
1: हाँ मेरी मेरी पहली फिल्म थी बदलते रिश्ते, दिल्ली
0: कितनी उम्र में देखी थी ये?
1: में। वो करीब मैं ऐसा था 12-13 साल का था जब देखी थी।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: और
1: बदलते
0: सबसे
1: रिश्ते। और जब वो मेरे, मतलब मेरे जीजा जी और जीजी लेके गए थे मुझे फिल्म दिखाने, तो जब वो टिकट चेक कर आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये इंजेक्शन लगाने आएगा, तो मुझे डर लग रहा था। मुझे
0: बिल्कुल।
1: इतना भी होश नहीं था कि मतलब ये टिकट चेक करने आया है,
0: अच्छा एक बात
1: अंधेरे में
0: बताइए,
1: डर लगा था। जी
0: अभी आपकी सबसे आखिरी फिल्म कौन सी है जो आपने पिछले दिनों में देखी है, लास्ट सिनेमा हॉल में?
1: लास्ट लास्ट फिल्म वो देखी थी मैंने, ये जो आई थी हिना,
0: ही ना,
1: हाँ उसके बाद में कोई फिल्म नहीं देखी
0: सिनेमा हॉल में।
1: जी, फिल्म सिनेमा हॉल में। अब
0: अच्छा
1: तो सिनेमा हॉल से अब तो इतना वो हो गया है कि सिनेमा हॉल की तरफ देखने का मन ही नहीं करता,
0: क्या बात है, फिल्म तो दूर की बात
1: क्योंकि
0: है।
1: सारा सारा कुछ तो मोबाइल पे सिमट के रह गया है ना।
0: हाँ ये तो बात सही है।
1: जब चाहो जब देख लो, यूट्यूब खोलो, कोई सी फिल्म देखना चाहो वो देख लो।
0: अब मुद्दे की बात करते हैं, ये बताइए पिछले हफ्ते हमने आपसे एक सवाल पूछा था, पूछा था कि कार्यक्रम में ऐसा कौन सा गाना था जिसमें जहर शब्द आया, आपको गाना बताना था, तो
1: हाँ
0: कौन सा
1: गाने तो
0: गाना?
1: आप, गाने तो आप हमेशा इतने बेहतरीन बेहतरीन चलाते हैं कि बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता है कि पता नहीं आपका अगला सवाल इन्हीं में से कोई ना हो।
0: हाँ
1: तो
0: कौन
1: ये
0: सा
1: गाना
0: गाना?
1: भी मैं सुन रहा था,
0: हाँ
1: रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाना। और इसी में लाइन में एक गान वो आती है लाइन, जीवन जहर का है
0: बिल्कुल
1: प्याला।
0: राइट आंसर है आपको।
1: बड़े
0: जी
1: ध्यान से मैं गाने को सुन रहा था, और यकीन मानिए मेरे को लग रहा था कि आप इन्हीं में से गानों में से कोई आप जरूर क्वेश्चन करेंगे।
0: अभी आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में एक विषय रखा गया था कि वो कौन सा ऐसा पूर्वाभास है जो आपको हो जाता है और आप सोचते हैं और कुछ देर में या कुछ दिनों में पता चलता है कि वो बात सच हो गई, तो जो आपका पूर्वाभास रहा उस दिन कार्यक्रम में, जो गीत आप सुन रहे थे, वो बिल्कुल सच हुआ
1: जी,
0: है ना?
1: हाँ बिल्कुल सच हुआ, यकीन मानिए आप, मैं बाय गॉड सही बता रहा हूँ। मैं गाना बड़ी ध्यान से सुन रहा था मुझे, और जैसे ही ये आया ना शब्द, तो
0: जी
1: एकदम से फिर आपने जब प्रोग्राम में एंड में जब ये क्वेश्चन

0: दिया रे, मैंने तुरंत आपको आंसर कर दिया।
1: बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अभी जो नाना पाटेकर जी हैं वो हमारे बीच नहीं हैं, उनका अभिनय तो इतना दमदार है कि सदियों तक ये वहीं दिलों में बसा रहेगा।
0: अरे साहब, उनके अभिनय की तो, उनके डायलॉग्स की तो बात ही करनी, मतलब समझ लीजिए सुबह से लेके शाम तक, जितने भी उन्होंने अब तक जितने भी उन्होंने डायलॉग बोले, फिल्मों में काम
1: जी
0: किया, हर डायलॉग उनका जिंदगी को छूता हुआ था।
1: बिल्कुल
0: मतलब कहीं ना कहीं अपने जीवन में इंसान अगर उस डायलॉग को उतार लेना तो वो हमेशा कामयाब रहेगा और बहुत कुछ सुधार हो सकता है उसके अंदर।
1: गिरो, लेकिन उनका
0: जैसे
1: उनके
0: क्रांति वीर
1: जी
0: के डायलॉग थे, लोगों ने सुना और उन्हें अनसुना कर दिया, क्योंकि वहां पे एक जगह वो दो मतलब लोगों की उंगलियां पत्थर से कुचल के और दोनों का खून मिक्स करके और कहते हैं कि पहचानो इसमें कौन सा हिंदू का खून है, कौन सा मुसलमान का खून है।
1: बिल्कुल
0: तो ये सब
1: बिल्कुल
0: चीजें जो है मतलब पब्लिक को जागरूक करने वाली चीजें उन्होंने
1: बिल्कुल।
0: मतलब पर्दे पे उतारी
1: जैसे कि
0: और उन
1: आपने
0: सब
1: अभी अभी अभी आपने कहा क्रांतिवीर फिल्म के बारे में बात की, तो तिलक राज अरोड़ा जी हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से, उनको भी क्रांतिवीर फिल्म पसंद है। और नाना पाटेकर जी का एक डायलॉग है कि गिरो लेकिन उस झरने की तरह कि जो गिरने के बाद भी अपनी सुंदरता को खत्म नहीं होने देता।
0: जी,
1: इसका मतलब है
0: बहुत
1: कि अपने उसूल और अपने सिद्धांतों पर कायम रखिए रहिए। और बहुत धन्यवाद आपका। हम आपने सुपर
0: और
1: स्टार को
0: सबसे बड़ी
1: उनकी
0: बात देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, वो अर्लिंग जो उसकी उनकी हुआ करती थी ना,
1: जी
0: उसमें से मान लो अगर 1 करोड़ रुपया उनको मिल रहा है तो 90 लाख रुपया वो दान कर दिया करते थे।
1: बिल्कुल। ये उनकी खासियत और उनकी विशेषताएं हैं। और अब हम अपने सुपरस्टार को गाना सुनवाएंगे। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज?
0: गाना एक हमारी जवानी का गाना है, उसे सुनना चाहूंगा। वक्त
1: कौन सा?
0: की दीवार का गाना है,
1: हाँ
0: जादू सा छाने लगा है, दिल गुनगुनाने लगा है, जवानी का गुजरा जमाना
1: हाँ
0: मुझे याद आने लगा है।
1: एक बार फिर से आपको मुबारकबाद फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की। और आपकी पसंद का गीत ये रहा, लीजिए सुनिए।

दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो फिल्मी फ्राइडे। बातें यहाँ टोटल फिल्मों की होती हैं और फिल्म को फ्राई भी करते हैं, तो आप तैयार हो जाइए। हम भी एक फिल्म अपने फ्राइंग पैन में लेकर तैयार हो चुके हैं फ्राई करने के लिए और आज है कौन सी, दृश्यम 3। जी हाँ, दृश्यम 3। दोस्तों आपको बताते हैं कि इस फिल्म में जो कलाकार हैं वो अजय देवगन, जयदीप अहलावत, श्रिया शरण, तब्बू, रजत कपूर, प्रकाश राज, सौरभ शुक्ला, इशिता दत्त हैं। ये एक क्राइम सस्पेंस और थ्रिलर टाइप की फिल्म है। 2 घंटे 30 मिनट अवधि है इसकी। शब्दों में झूठ छुपने की जगह ढूंढ लेते हैं लेकिन दृश्य कभी झूठ नहीं बोलते। लोगों की आम धारणा ये होती है कि आंखों देखा कभी झूठ नहीं होता, पर इसी सोच का फायदा उठाकर 2015 में गोवा के विजय सालगांवकर ने दृश्यम का एक ऐसा खेल रचा कि सारी पुलिस और सिस्टम के सच धराशायी हो गए। ऑडियंस भी इस चौथी फिल्म के जबरा फैन हो गए। अब दृश्यम के उसी चक्रव्यूह के साथ विजय आखिरी बार पर्दे पर उतरा है, इसलिए लोगों का उत्साह जो वो चरम पर है। और सच कहें तो थोड़ा गिरते पड़ते बाल बाल बचते आखिर में इस बार भी उसने बाजी मार ली। कहानी 2022 में आई दृश्यम 2 के सिरे को पकड़कर आगे बढ़ती है, इसलिए दृश्यम 3 देखने से पहले पिछली 2 फिल्में देखना जरूरी है वरना ये आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। ये फिल्म अपने बेटे समीर को खोने वाली पूर्व आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू की निराशा में खुद की जान लेने की कोशिश से शुरू होती है। पत्नी को इस हालत में देखकर उसके पति महेश देशमुख यानी रजत कपूर केस रीओपन करने की गुजारिश करते हैं और फिर शुरू होती है क्राइम ब्रांच के SP राजवीर सिंह तोमर यानी जयदीप अहलावत की एंट्री। खुद को शनि करार देने वाले राजवीर की टेढ़ी नजरें विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन और उसके परिवार पर पड़ती हैं। वो फिर से पुलिस केस कोर्ट के चक्कर में फंस जाते हैं। पुलिस के पास विजय के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए इस बार नए सबूत हैं, गवाह हैं और कोई केस न हारने वाला वकील इंद्रजीत शिट्टी यानी प्रकाश राज भी है। ऐसे में 2 अक्टूबर को क्या हुआ था उसके बाद अब ये सवाल है कि 23 जुलाई को क्या हुआ था, और ये जानने के लिए तो आपको भैया फिल्म देखनी पड़ेगी। दोस्तों सिनेमा लवर्स जानते हैं कि दृश्यम मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म फ्रेंचाइजी की रीमेक है, पर हिंदी में इस बार कहानी को इससे अलग रखा गया है। को राइटर और डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने इसे नए सिरे से लिखा है। वैसे केस को बिल्ड करने में काफी वक्त लिया है उन्होंने। एक वक्त पर पटकथा एक ही ढर्रे में घूमती सी लगती है और यहाँ राहत का काम इंस्पेक्टर गायक तोंडे यानी कमलेश सावंत की कॉमेडी और अमील कीतन खान के सीटी मार डायलॉग्स करते हैं। हाँ, क्या होगा ये वाला भी टेंशन बना रहता है, पर असल में रोमांच इंटरवल के बाद कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होने के बाद शुरू होता है। लेकिन यहाँ भी लिखाई सुविधाजनक हो गई है। विजय के शब्दों में फिल्म सच्ची होनी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ जिस केस को आसानी से उसके पक्ष में होता हुआ दिखाया गया है उस पर तो भरोसा नहीं होता। दोस्तों बहुत सारी बात अगर एक्टिंग की जाए तो अजय देवगन ने हमेशा की तरह बड़ा अच्छा अभिनय किया है। बिना बोले अपने एंटरटेन्स अंदाज को बोलती आंखों से जबरदस्त अदाकारी करके दिखा दिया, विजय को अमर कर दिया। जयदीप अहलावत भी SP राजवीर के रूप में असरदार हैं। प्रकाश राज भी अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। विजय की पत्नी नंदिनी के रूप में श्रिया शरण के हिस्से में एक दमदार सीन आया, उन्होंने बड़े अच्छे से अदा किया उस सीन को। तब्बू रजत कपूर ठीक ठाक हैं। इशिता दत्त के हिस्से बमुश्किल कोई डायलॉग आए हैं। बाकी सुधीर चौधरी की सिनेमेटोग्राफी, अमर मोहिले का बैकग्राउंड स्कोर और संदीप फ्रांसिस की एडिटिंग फिल्म को मजबूती प्रदान करती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे हो क्यों देखे फिल्म, तो वैसे तो थारी अपनी अपनी मर्जी, देखो या ना देखो हमारा काम फ्राई करना था वो हमने कर दिया। लेकिन अगर आप दृश्यम फ्रेंचाइजी के फैन हैं यानी 2 दृश्यम देख चुके हैं तो देख सकते हैं अजय देवगन की दमदार एक्टिंग के लिए, और दृश्यम

0: ठीक हो भैया, आप चाहें तो देखो, वैसे आपकी अपनी मर्जी, देखो ना देखो, हमारा काम फ्राई करना था वो हमने कर दिया। अच्छा, फिल्म फ्राई हो चुकी है और सवाल की बारी है। सवाल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भैया जवाब जल्दी भेजने हैं आपको और हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है। तो आपको बताना है आज के इस कार्यक्रम में हमने अपनी ओर से जो डायलॉग बोला वो किस फिल्म का है। फिल्म का नाम आपको बताना है। हमने एक डायलॉग बोला था, वो किस फिल्म का डायलॉग है? फिल्म का नाम बताइए, जल्दी से अपना जवाब भेजिए। आपको करना क्या है, फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर आइए, मैसेंजर के थ्रू टाइप कीजिए अपना जवाब। सबसे पहले लिखिए BLYFM स्पेस देकर जवाब, नाम पता और अपना मोबाइल नंबर, और इसे भेज दीजिए फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे पर मैसेंजर के थ्रू। आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब हमें मिल जाने चाहिए। एक बार सवाल सुन लीजिए, आज के इस कार्यक्रम में हमने एक डायलॉग अपनी ओर से बोला है, वो किस फिल्म का डायलॉग है? फिल्म का नाम आपको बताना है, सिर्फ फिल्म का नाम। फिलहाल हम चलते हैं आज के फिल्मी फ्राइडे को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले हफ्ते ढेरों फिल्मी बातें लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड फिल्मी भाव।
1: Me Friday. Cut one. Take one. 5, 6, 7, 8. So baby. Lights, camera, action. Action. Action.
2: Ladies and gentlemen, hold your heart. Hold your breath.
1: We will meet again.
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz, न्यूज ऑन EIRF तथा वेब OTT प्लेटफॉर्म पर। आइए सुनते हैं अब लोकगीत। बालकृष्ण भारती और साथियों की आवाजों में ये ब्रजगीत आप सुन

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: किशन चंदानी जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आज जरीन दारूवाला यानी जरीन शर्मा का दिवस है, इन्हें हम याद कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन जरीन दारूवाला का जन्म हुआ था। आज के दिन इनका नाम इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि ये सरोद जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान वाद्य पर महारत हासिल करने वाली शुरुआती महिला कलाकारों में से एक है। यह बहुत सुंदर सरोद वादन किया करती थी। इन्होंने मैहर और ग्वालियर घराने से तालीम ली। वादन में गायकी, अंग और द्रुत तंत्रकारी का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया। सिनेमा में अगर इनके योगदान को याद किया जाए तो मदन मोहन, नौशाद और खयाम जैसे संगीतकारों के साथ पाकीज़ा सहित कई सारी फिल्मों में पार्श्व संगीत में सरोद वादन का कार्य इन्होंने किया। इसके साथ ही ये अपने पति सितार वादक पंडित अशोक शर्मा जी के साथ में देश विदेश में कई सारी प्रस्तुतियां भी इन्होंने दी। 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी यह सम्मानित रही हैं। याद करते हैं उन्हें और सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत बर्फी फिल्म से। श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज ने इसे गाया, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा और प्रीतम ने संगीत दिया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। किसी ने सही कहा है कि चिंता करने से क्या फायदा, अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर बस मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना वह तोहफा है जो बिना खर्च किए दिया जा सकता है और पाने वाले की पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो फिर हमारे पास दिन की शुरुआत करने के लिए केवल एक चीज बचती है, वह है मुस्कुराना। तो मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत कीजिए और आधी सफलता तो यही मिल जाएगी।

हम सुन रहे थे रॉकस्टार फिल्म से यह गीत मोहित चौहान एआर रहमान की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे बोल दिए और एआर रहमान के संगीत के साथ सुना हमने यह गीत। आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में हम सुनते हैं नए गीतों को और उसके साथ याद करते हैं कुछ विशेष लोगों को। आज का दिन एक बार और विशेष हो जाता है क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास का। ये उड़ीसा के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। उन्हें उड़ीसा का रत्न यानी उत्कल मणि कहा जाता है। इन्होंने 1909 में साखी गोपाल में गुरुकुल शैली की प्रसिद्ध सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की, जहां पर चरित्र निर्माण और राष्ट्रप्रेम की शिक्षा दी जाती थी। 1919 में उन्होंने द समाज समाचार पत्र की शुरुआत की, जो जन जागरण का प्रमुख माध्यम बना और आज भी उड़ीसा का प्रतिष्ठित दैनिक है। इसके साथ ही वे उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जेल भी गए थे। बाढ़, सूखे, महामारी के समय उन्होंने पीड़ितों की निस्वार्थ सेवा की। वे लाला लाजपत राय की संस्था सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने बंदिर आत्मकथा, कारा कविता और धर्मपद जैसी प्रमुख कृतियां भी लिखी। उनका पूरा जीवन त्याग, लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा और 50 वर्ष की आयु में 1928 में आपका निधन हो गया। हम आपके जन्मदिवस पर आपको हमारी स्वतंत्रता के लिए, आपके किए गए कार्यों के लिए याद करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म सिंघम से सुखविंदर सिंह की आवाज में, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, अजय अतुल ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए।

0: डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए चलते हैं चित्रलोक के अंतिम गीत की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, और नृत्य से अच्छा व्यायाम क्या हो सकता है। तो मन करे तो सुनिए ये गीत और साथ में ताल से ताल मिला लीजिए।

हम सुन रहे थे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का यज्ञ, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और निताली की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल और अमित त्रिवेदी ने इसे संगीतबद्ध किया। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चित्रलोक कार्यक्रम में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक के रहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

भारतीय फिल्म संगीत के सुरीले और प्रतिभाशाली संगीतकारों में शुमार होता है संगीतकार और गायक रविंद्र जैन का।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों में रंग है भारतीयता का। वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हम उसका भरपूर आनंद

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुईं। उस दौर की ये मशहूर फिल्में हैं चोर मचाए शोर।

0: खाने वाले हक न पराया कभी खाएंगे ससुर जी
1: जाएंगे, जाएंगे,
0: ले जाएंगे
1: ले जाएंगे ले जाएंगे।
2: गीत गाता चल।

जैन की प्रतिभा इस मायने में दूसरे संगीतकारों से अलग है क्योंकि रविंद्र जैन फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ गीत भी लिखते रहे और उन्होंने कई गीत गाए भी।

रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसीलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

0: आशियां।
1: रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ओछापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

व्याकरण की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में, सस्ती तुकबंदियों में करहाते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।

रविंद्र जैन ने एक ओर जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार की

0: इससे पहले
1: संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और रामायण।

कुछ प्रसिद्ध बैले कृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्यमालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।

एक टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन।

रविंद्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविंद्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविंद्र जैन सदैव याद किए जाएंगे अपने मधुर संगीत के लिए, मीठे गीतों के।

0: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन पर केंद्रित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं
2: करना। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
0: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

से हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज ऑन एआईआर ऐप तथा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 10 अक्टूबर सन 2026 को 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 9 अक्टूबर सन 2026 को 4:30 से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 9 अक्टूबर सन 2026 को 4:30 से, यानी आज शाम 4:00 से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना

श्रोताओ, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIRF तथा वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर। आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। हम हाजिर हो चुके हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ। अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आपको अपने पेज पर आकाशवाणी बरेली पेज सर्च करना है और उस पेज पर यानी आकाशवाणी बरेली की पेज पर आपकी पसंद कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपना कमेंट कर दीजिए। आप सभी सुधी और सम्मानित श्रोताओं से निवेदन है, कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही शामिल किए जाएंगे, यानी जो कमेंट आप टेक्स्ट के साथ करेंगे वही शामिल होंगे। किसी भी तरह का कोई भी पिक्चर मैसेज अटैच न करें। दूसरी बात, सिर्फ एक बार कमेंट करना है, बार बार कमेंट न करें और यह गारंटी है प्रत्येक श्रोता का एक कमेंट जरूर शामिल किया जाएगा। पुनः आपको बता दें, कोई भी पिक्चर फोटो खींचकर अगर आप कमेंट के साथ भेजेंगे हम शामिल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप टाइप कीजिए कमेंट, यकीनन 100% आपका कमेंट शामिल किया जाएगा और गीत बस चुनिंदा कमेंट्स पर प्रसारित किए जाएंगे। तो देर किस बात की, 100, 200, 300, 400, 500 कमेंट भेज दीजिए। फिलहाल आज के आपकी पसंद कार्यक्रम का आगाज करते हैं 117 यानी 118 कमेंट के साथ, 119 हो गए, 29 लाइक के साथ, 1 शेयर, 1 शेयर और 120 कमेंट हो चुके हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आप सबकी नजर करते हैं आपकी पसंद आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना।

जी हाँ बिल्कुल, आप भी आ जाइए हमारे साथ। फिल्म का नाम लव स्टोरी, अमित कुमार आशा भोसले की आवाजों में, बोल आनंद बख्शी ने लिखे, धुन बनाई है राहुल देव वर्मन ने और गीत को पसंद किया है। इस गीत को जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो। अब बारी है आप सबको साथ लेने की। आप हैं मजनू कटेला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी।

से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। शनि बाजार कस्बा उगहती बदायूं से हमारे ये साथी हैं प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव गुप्ता, प्रियल, कायरव गुप्ता और गौरी गुप्ता। और ये कमेंट हमें मिला है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी वर्मा और साथ में कौन कौन है, आप हैं रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवासी, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप। और कमेंट हमें करते हैं आप कौन साथी हैं। जी बिल्कुल, आप हैं जिला खरगोन वाले तो सभी साथी साथ शामिल हो गए, लेकिन मिस्किन परिवार के सभी साथी आए हैं, विष्णु मिस्किन, रितिका, आरव, वाणी और इनका पूरा परिवार दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल डिम्बल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कमेंट किए हैं। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज कमेंट करते हैं। पद्मा टाकेश नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगला वीन शाह और राजेंद्र जी शाह। और ये कमेंट हमें मिला है सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। और हमारे ये साथी हैं चनोरा, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवा, मंजुलता कुशवा, राम श्याम, रवि आर्यन और इनके सभी साथी, वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर, मनोज भ्याण हैं जेवरा हिसार से और गंज डंडवारा से, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनबर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी हैं। और ये कमेंट हमें भेजा है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु खोरवाल ने उत्तम नगर दिल्ली से। और कौन कौन साथी हैं, सरोज चौक से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, हादिया खान, आफिया और मुस्तफा खान, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सुफियान, अनस, आयजा और इनके सभी साथी हैं, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से ही रमणी वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा कमेंट किए हैं। कमेंट करते हैं केसरी सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और इनका पूरा परिवार, बोड़ागाशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। ये कमेंट हमें मिला है आपका नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, डॉक्टर अफजल मालिक, संदीप और रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी सहनी और इनके तमाम हम नवा हैं, मौला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रसी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी हैं, नौकौसर हैं और दीपक, मयंक मूढ़त, चेतन नाटा, विनोद मूढ़त, नेहा जैन हमें कमेंट करते हैं बोरखेड़ा, पित्रामलु जैन मध्य प्रदेश से और सैयद मसरूफ, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम गांव कुमार, रेडिया सहारनपुर से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का कमेंट है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक का मैसेज है। और गोंदुर रोल धूड़िया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता कमेंट करते हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबे रही मेरा जहां, आजाद नगर, अक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से हैं, इंदिरा ज्ञानी, अंकुश ज्ञानी, सिद्धू वाला सूरतगढ़ राजस्थान से, उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नचानी, विनीत मिथिला नचानी और गोपाल तंबोली का कमेंट मिला है। कोटवा नारायणपुर बाबूपट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया निबादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय कमेंट करते हैं। सौगा धमथरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हंस कुमार चंदन भी कमेंट किए हैं। मुंडा टोला डोंडी लोहारा से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश और माहिर नेताम का कमेंट मिला है। और आप है सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अवंतिका येले और इनका पूरा परिवार, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का कमेंट है। और आप हैं शाजीनगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से, आप हैं संतोष भाकरे, सुनेना सुकन्या और सविता भाकरे। और यह कमेंट वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान का कमेंट है। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत और इनका पूरा परिवार। और यवतमाल से पंजाब राम ठेके हैं, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा का कमेंट मिला है। नाच रेडियो क्लब करेली से आप हैं निसार अहमद अंसारी, महजवी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी और वसीम भाई, पप्पू भाई अंसारी और उनके तमाम साथी। हितेंद्र दास आसाम से कमेंट करते हैं। स्वर्ण सिंह जी हमें गांव दौले वाला जिला मोगा पंजाब से कमेंट किए हैं। खोखरा वाली श्री गंगानगर से आप हैं विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। और कस्बा उगहती बदायूं से सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा सिद्दीकी, साद समद और सादिक सिद्दीकी कमेंट करते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनका पूरा ढींगिया परिवार। गांव बांडी वाली फजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और गरिमा बगड़िया का कमेंट है। और कटरा चांद खा मौर्य मंदिर गैडा पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल मौर्य, बेदराम, कैलाश, सुनील
खुशबू आरोही स्वाति मौर्य का कमेंट है, शिवा गो प्रेम गो कपिल शिव

पांचम गीता लिपि और दीपाली गोप कमेंट करते हैं पश्चिम सिंह भूमि चाईबासा झारखंड से। हमें आपका भी कमेंट मिला है और आप हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा खेल बाजार पानीपत से और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, गुड्डुगू भाविक सिक्का और इनका पूरा परिवार। राजूकर बाजार अररिया बिहार से शरीफ आरजू गुड्डू रंगीला हैं और टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर देवे, रमाताई दीक्षा, रीमा डोंगर देवे, राहुल डोंगर देवे और इनका पूरा परिवार। मदरसा गेट भाऊपुर मलियाहूं जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, रायपुर अनेरी जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन और आप हैं लसूड़िया नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली, मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, पुष्पा गौरव मौर्य, चंद्र प्रकाश, मनु भाई और इनके सभी साथी हैं। गांव गढ़ी कोटा पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन अक्सा, आयशा, उमर अंसारी और समीरा अंसारी का कमेंट है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, आशीष राजा और इनके सभी साथी और दादा बाबू रोड गेड़ी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू हद, मिफरा नवाज, बेबी चाह, सादिया और इनका पूरा परिवार। धोतर जोड़ा आष्टी से आप हैं दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते और राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद उनुस, सैयद नोमन, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाऊ तांदले और इनके तमाम हमनवा हैं। और ये कमेंट हमें मिला है गांव बिटूड भोयर तहसील मंगरूल पीर जिला पश्चिमी वाशिम विदर्भ से योगी राज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती बल्हार, कविता मोहन, विशाल कुशल, गोपाल गोविंद मस्के और इनके सभी साथी। और चंद्रपुर जिला सूर्यपुर छत्तीसगढ़ से विनय कुमार दुबे, कलावती, अनुष्का और अश्वनी दुबे हैं। ग्राम करेली बरेली से आप हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, समीम अंसारी, माही नूर, नसरीन और समा अंसारी। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनका पूरा परिवार है। और आप कौन कौन साथी हैं चलिए तो आप सबके नाम करते हैं। फिल्म लव स्टोरी का ये ट्रेक और बाकी जितने भी दोस्त कमेंट करें सिर्फ एक बार ही कमेंट करें, बार बार कमेंट करके डिस्टर्ब न करें वरना कुछ दोस्तों के कमेंट छूट जाते हैं। फिलहाल लव स्टोरी का ये ट्रेक आप सबके नाम करते हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: फ्रिज का

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, इस समय आपकी पसंद सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से। हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी है 100.4 FM। इसके अलावा हमारी स्ट्रीमिंग के माध्यम से वर्ल्ड वाइड आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। ये प्रसार भारती के अधिकृत ऐप हैं। इसके अतिरिक्त भी कई सारे ऑडियो सर्वर के माध्यम से भी आप हमें सुन पा रहे होंगे। चलिए कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गाना आपको सुनवाते हैं, पलकों की छाओं में फिल्म से। और पलकों की छाओं में फिल्म से ये जो गीत

दोस्तों ने पसंद किया है, वो कौन कौन है? तैयार हो जाइए अपने नाम सुनने के लिए, और वो दोस्त भी तैयार हो जाएं जो इस समय ट्यून किए हुए हैं। आपसे निवेदन है, कमेंट सिर्फ एक बार करें, बार बार नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये जो गीत है वो कौन कौन साथियों के नाम होने वाला है? अभी अभी आपका मैसेज ओपन होने वाला है, बस कुछ ही देर में हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं क्रमानुसार सबसे लेटेस्ट मैसेज को। तो इस क्रम में जो मैसेज हमें कमेंट में शो हो रहे हैं वो कौन कौन है? चलिए, हमारे ये जो साथी हैं इस गीत के ख्वाहिशमंद, वैसे और भी दोस्तों ने इस गीत की फरमाइश की थी, लेकिन चूंकि ये जो घड़ी है वो यहीं पर आकर रुकी है, तो चलिए करते हैं शुरू। भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, आप सुनना चाहते हैं पलकों की छाओं में फिल्म से ये गाना, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। इसी गीत में शामिल करते हैं आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, साइना शर्मा और निवान शर्मा। गांवहंडी खेड़ा सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा, सार्थक शर्मा और इनका पूरा परिवार। कमेंट करते हैं हमें डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, वेमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, पूनम, चालिया, कहां से है, गांव अरायन, श्रीगंगानगर, राजस्थान से। प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी, भागलपुर वस्तु से हैं, और कृष्णा पाक दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना गुरुवंश सिंह जोड़ा जी हैं। आप हैं राय सिंह पाल, एनपी सिंह, धर्मवीर भारती, जोगेंद्र यादव, रविन्द्र प्रेमपाल, दिवाकर, महेंद्र पाल, अनुज पाल, पूजा और काजल पाल, मोहल्ला सनैया धन सिंह बरेली से। और बार बार कमेंट क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्त, आपका कमेंट शामिल हो चुका है। शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी, असद बाबू और इनके तमाम साथी। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु और हिमांशु पाल, उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफार खत्री, गोगावा खरगोन मध्य प्रदेश से कमेंट किए हैं, और कमेंट करते हैं अडार नंदगढ़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा और इनका पूरा परिवार। नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज और पीहूदिया चौरसिया, और बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता, सुमित और बीर अबीर चौरसिया हैं। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा चौरानी चौरसिया और शिवानी चौरसिया। अररिया बिहार से सोमिया नजमीन, रुकैया आफरीन, रेहाना प्रवीण, माही आरजू, इनके सभी साथी। बुदकछार छत्तीसगढ़ से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम का भी कमेंट मिला है। गांधीनगर महेश्वर से श्याम यादव, सोना यादव हैं, और आप हैं नवा गांव मुड़िया पार, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहनलाल साहू, रुक्मणी, तेजेश्वरी, कुशल साहू और इनका पूरा परिवार। गांव कबरेल हिसार हरियाणा से सुरजीत सिंह इंदौरा, विशाल कुमार इंदौरा और इनके सभी साथी। जाखूद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और इनका पूरा परिवार। जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी मौर्य, कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल और मनीष शर्मा का कमेंट है। राजेश भारती, बेवारानी, आदित्य राज, प्रिया भारती, विवेक रमण, अक्षित रमण, परिधि रमण, विनीता, राजेश रमण, कैंडी बाबू और साक्षी, प्रिंस आशीष, संजीव, लक्ष्मी, मीठी, रश्मि, आयुष और सोना का कमेंट हमें मिला है। कहां से आप हैं? भारती नगर, मुश्किलपुर, गोगरी, जमालपुर से, और इनके साथी भी हैं कोलीपाड़ा, कटिहार से। यादव मोहल्ला सनावत से आप हैं दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मुस्कान, जितेंद्र मालाकार और इनका पूरा परिवार। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष का कमेंट है। मुरादाबाद, दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून कमेंट करते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा, विविधा वंडलकर और इनका पूरा परिवार। अनुरोध किया है हमें मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रजनी, तुषार खांडे और समीर खांडे ने, और आप हैं वीरेश प्रजापति, दिव्यांश राजपाल प्रजापति और सुधीर सागर, राजकुमार प्रजापति, गदगांव बदायूं उत्तर प्रदेश से। हमें कमेंट करते हैं ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईसदुल अंसारी और इनके तमाम साथी। बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई और इनके तमाम हमनवा। अंबागढ़ चौकी से छत्तीसगढ़ के साथी हैं रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान। लाल कुर्ती रुड़की खंड से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिक, दीपाली वर्मा, युवान और आरके राजा। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। पूर्णा देगांव से सदाशिव थोरात, कविता श्रेया और बंटी थोरात का कमेंट है। और असालार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मीराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन और इनके सभी साथी।
और आप हैं जगमोहन सिंह, प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामानंद कश्यप, लोहडडा बागपत से, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ।

प्रजापति सुमन देवी और इनके पूरा परिवार। सलका चंद्रपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से विवेक, अंकित और श्रुति शुक्ला का ये कमेंट मिला है। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा हैं और ये हैं हमारे साथी। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद जुबैर अंसारी, तनवीर आलम अंसारी। चांदमल अली मस्जिद मुरादाबाद से मेराज और वसीम अंसारी हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया देवशानी और निमित आहूजा हैं। और अकोट अकोला महाराष्ट्र से रामराव नितोने, शारदा सानिका और रिया का कमेंट है। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा कमेंट करते हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर का कमेंट है। बहेड़ी से है इश्तियाक अहमद इदरीसी और इनके सभी साथी। और आप हैं कहां से? महाराजा दरवाज़ इटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवीद हसन, सोहेल हसन, यानम अब्बासी, यशफ अब्बासी और इनके सभी साथी। गिदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुब्बैर अली खान और इनके तमाम हमनवा। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। और आप हैं अहमदनगर मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अख्तर, जासमीन, शकीला, सना, समा, हिना, रजिया, सुल्ताना, सुराज अंसारी और इनके परिवारजन। और हमारे ये साथी हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव कमेंट करते हैं। ओखला बिहार संगम बिहार दिल्ली, ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम सुंदरम गुप्ता और इनका पूरा कमलापुरी वैश्य परिवार। और ये जो कमेंट मिला है लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास रानी मानिकपुरी और इनका पूरा मानिकपुरी परिवार। मोहल्ला ख्वाजा नगर कुंदरकी से जाकिर खान, नाजिम खान, सोएब खान, अरीब खान, जिक्रा नूर, सादिया फातिमा और इनका पूरा परिवार। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, सबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लोबना, अलिजबा, अयान मंसूरी, यश मंसूरी और नुमैर मंसूरी। हमें आपने भी कमेंट किया है। आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता, लक्ष्मी, ध्रुव, वीरेंद्र अग्रवाल, रानू अग्रवाल, बेबी बैदेही जोशी, हंसिका जोशी, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू और इनका पूरा परिवार। और आप कौन साथी हैं? जनकपुरी नई दिल्ली से आप हैं प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा और इनके सभी साथी। नदायल बड़ाऊन फेरोज से नदायल जिला बड़ाऊन चलो ठीक है। फिरोज खान, नूरी फिरोज, अरबाज खान, शहबाज खान और इनके सभी साथी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबिये, राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये का कमेंट है। और आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला विशाल नावकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष महिरकर और इनका पूरा परिवार। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार भाई और इनके तमाम साथी। और ग्राम दुदली नैनीताल उत्तराखंड से आप हैं हरीश शर्मा जी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टपूर, पीबी कुलथे। और आप हैं रमेश कुमार खत्री, मास्टर कृष्णा लाल खत्री, मोहम्मद अमीन जफर, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, बरानी वाले कहां से, जगह का नाम और भी है कोई। चलिए दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी है। और ये कमेंट हमें मिला है कस्बा बराना अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके तमाम हमनव। गुरमीत सिंह मीता जी हैं नई दिल्ली से। और राजमाता नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार नरवाड़े कमेंट करते हैं। रामपुर रोड किला छावनी से कौन कौन साथी हैं? आप हैं प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी, रिंकी, प्रीखो, राधा, गौरी, गरीब भाई, श्री राम राठौर और इनके परिवार के सभी साथी। फाजिलका पंजाब से आप हैं भूषण खेड़ा, विशु, विशाल लाड़ी, शालिनी तिवंशी, वाणी खेड़ा और इनका पूरा परिवार। और श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित और कुकरानी का कमेंट है। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, इस्लामुद्दीन, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन और इनके तमाम हमनवा हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा हैं। कमेंट करते हैं नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैराव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और इनके तमाम साथी। खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमलपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश हैं। सिवहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी का कमेंट मिला है। मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान कहां से हैं? ईदगाह जनूबी जिला भक्खड़ पंजाब से। और आप सबके नाम करते हैं फिल्म पलकों की छांव में से ये ट्रैक, लीजिए सुनिए।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बरेली एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद, ये जो गाना है फिल्म किस्मत से है। आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजें हैं। एस एस बिहारी के बोलों को संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने और पसंद किया है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित कुमार, पीयूष कुमार और इनके तमाम साथी। इसी गीत में शामिल करते हैं आप सबको दत्ता घोंट के आष्टी जालना महाराष्ट्र से हमें कमेंट किए हैं और कमेंट करते हैं हाजीपुर खजुरिया फरीदपुर बरेली से पंकज गंगवार, शिखर पटेल, अनुप्रिया और इनका पूरा परिवार, राजेश छोलकर, मीनाक्षी छोलकर, आप प्रपल कीमती नगर इटारसी जंक्शन से हैं। तो और भी साथी हैं, हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा जी हैं, शंकरपुर उसावर बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद यादव, सनोज अमन, सोनी अंकिता यादव, विनीता अनीता सुनीता सूरज यादव और सफीदों सिटी से आप हैं नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव कुश खन्ना और इनका पूरा खन्ना परिवार। उन्हें उज्जैन मध्य प्रदेश से आप हैं फेरूलाल बख्तरिया, धाकड़ भोला बख्तरिया, प्रवीण रियांश बख्तरिया और प्रतीक बख्तरिया, मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा बरेली से मोहम्मद हसन अंसारी, अजरुद्दीन अंसारी, तरन्नू अंसारी, तराना अंसारी, मोहम्मद शमी अंसारी और इनके तमाम समनवा, पटेल नगर मलूर से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जजौरिया और गुड्डू का कमेंट है। गंज डंडवारा से आप हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु अदनान और फैजान खान, विनेश कुमार श्रीवास्तव, राग्नी श्रीवास्तव और मुस्कान बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से हैं और आप हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू वर्मा, राजू ताम्रकार, रंजन रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यस शम्या और इनके मम्मी पापा। और कौन साथी हैं आप, ये हमारे साथी हैं संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर, भारत मकर, धर्मवीर और पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से, रावर कल्याण से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ काली और इनके तमाम साथी, सेबड़ी छतरपुर से आप हैं बारेलाल प्रजापति, धनी राम, नरेश कल्लू, रविंद्र और वृंद्रावन प्रजापति। आप भी कमेंट करते हैं नांदेड़ या ताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, शिवाजी चौक से आपका मैसेज तो शामिल हो चुका है ना, मेरठखंड से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं, आप हैं मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष शिवन्या और अन्नू गोस्वामी, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से और मौलागढ़ नई

बस्ती बरेली से तरन्नुम तराना, नाजिस अंसारी, तबस्सुम अंसारी, रिदा अंसारी, अजहरुद्दीन मोहम्मद हसन और इनका पूरा परिवार है, और कृष्णलाल सलूजा, राधा सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से हैं। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आप हैं दिलसाद हुसैन और इनके तमाम साथी। हररपुर मटकली जिला बरेली से अशारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और इनके साथी। अलकनाथ मंदिर के सामने बरेली से आप हैं बेचलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेन्द्र देव, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव और महावीर कश्यप, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमारी मौर्य, बाबू भाई, रमेश चंद्र सैनी, गौतम राम, पारस वेदराम और राज कश्यप। और ये कमेंट है रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का, और हमारे ये साथी हैं जमनी मोहल्ला इस्लामनगर बदायूं से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान, इंशा खान और हदिया खान। और आप भी कमेंट किए हैं चक 15 PS श्री गंगानगर राजस्थान से, सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन और वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जोसन और इनके तमाम साथी। आकोट से विनायक बिंडे, मंगला बिंडे, विजय शोभम बिंडे, पवन जरिए के, संजीव डावरे राव का कमेंट है। और कमेंट करते हैं चथुपुर कुंदरकी मुरादाबाद से एम मुनाजर खान, फिरासत फारूकी मुअज्जम, मुस्तफा गौसिया भी और इनका पूरा परिवार। बगबुड़बा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम और इनका पूरा परिवार है। तो आइए सुनते हैं आप सबके नाम फिल्म किस्मत से ये ट्रैक।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी बरेली है, FM 100.4 MHz, न्यूज ऑन AIR ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर आप हमारा आपकी पसंद कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगला गाना आपको सुनवाने वाले हैं, फिल्म का नाम है गर्ल प्राइड ओनर, और ये जो गाना है वो गाया है, कौन कौन गाए हैं, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गाना आप सबने पसंद किया है। आप हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश इसी गाने में शामिल करते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सोहान, अरदान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी साथी। नई बस्ती गंज डंडवारा से आप हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद औसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और इनके तमाम साथी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरश अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमदास सुगरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आरवी जंगेल और अंजलि जंगेल। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का कमेंट है। और आप हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान, रामपुर से भाई रफत साहब, सईद मंसूरी, राशिद असद, फिरोजा मुस्कान, नकमनाज मंसूरी और कोई साथी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से आप हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। तो आप सबके नाम करते हैं गर्व द प्राइड फिल्म से ये ट्रैक। और बस यहां तक कितने कमेंट हो गए देखते हैं, 187 कमेंट ओनली, बस 200 भी पूरे ना आज तो। चलिए हम तो आपसे यही कह सकते हैं कि भाई अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, लेकिन प्रत्येक श्रोता एक बार ही कमेंट करें। फिलहाल गर्व प्राइड ऑनर का ये गाना आपकी नजर करते हैं।

दोस्तों, ये आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली है, एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आपकी पसंद कार्यक्रम सुन रहे हैं। 197 कमेंट आ चुके हैं। चलिए तो अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सुनैना से। केजे यशुदास की आवाज में ये गीत आप सबने पसंद किया है। कौन कौन साथी हैं तो चलिए आप सबको शामिल करते हैं। सुनैना फिल्म का यह गाना आपने सुनना चाहा है। ग्राम टोडरपुर भूड़ बिसौली बदायूं।

उत्तर प्रदेश से पीएस यादव, अजनबी अजयपाल सिंह यादव, पवन कुमार यादव, मयंक प्रभात कुमार, मुन्नी देवी, नीतू सिंह यादव, प्रतिभा प्रतिज्ञा और नेमपाल सिंह यादव। और हमारे ये साथी हैं जिला बदायूं ग्राम गनगोला से इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान सैफ और ईशान खान। मैसेज आपने भी भेजा है, ये मैसेज तो शामिल हो गया भक्कर पंजाब वाले दोस्तों का, दोबारा से आपने मैसेज कर दिया। खैर, एक बार ही मैसेज आप कमेंट किया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश का मैसेज है। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू कमेंट करते हैं। परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और इनके तमाम साथी, मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयमीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या गौतम और इनके सभी साथी। ग्राम पंचायत बाकरगंज, तहसील फरीदपुर, पानी की टंकी के पास से। ग्राम पोस्ट गोठा खंडुआ से राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी प्रदीप, सविता सत्यम मिश्रा और शीतल, राधा सलोनी और शिवम मिश्रा का कमेंट है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू और शिप्रा गौतमी साहू का भी कमेंट मिला है। रजौनी महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयंत पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनका पूरा परिवार है। और आप हैं अजीत कसाना, माया देवी और ऋतिक आदित्य कसाना, ग्राम पोस्ट लदावली से। 199 के चक्कर में हैं हम। चलिए, 199 कमेंट आपने किए हैं, धन्यवाद आपका। और भी दोस्त जो अभी तक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं, अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट के साथ ही कमेंट भेजें, बड़ी मेहरबानी होगी। फिलहाल सुनैना फिल्म से ये ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आपके पसंद आप आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज से सुन रहे हैं और अब प्रोग्राम के आखिर में आ चुके हैं। 203 यानी 203 कमेंट आ चुके हैं। तो अगला गाना जुनून फिल्म से आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और बिपिन सचदेवा ने। गीत पसंद करते हैं चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई और राजू भाई। इसी गीत में शामिल करते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, रितु सिंह, संकल्प और वेदा सिंह। आप हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पुनाराम कृष्णा देवांगन और इनका पूरा देवांगन परिवार, और कस्बा तिगड़ी शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम, अरहम बाबू और किश्वा नू। आज के आपकी पसंद की ये आखिरी पेशकश है।

जी हाँ दोस्तों, तो अब हमें भी चलना पड़ेगा और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी कमेंट मिले सभी कमेंट शामिल हुए। 204 कमेंट अभी आखिर में आए। हमारी उलझनों को किसी ने पहचाना, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ऐसे तो नहीं उलझते हैं हम और ना ही उलझनों में पड़ते हैं। हाँ, इतनी कोशिश जरूर रहती है कि हर उलझन को सुलझा लिया जाए। खैर, प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपने वैल्यूएबल फीडबैक आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए 9457395859 पर, या फिर ईमेल कीजिए आपका पत्र मिला @bareilly@gmail.com पर। फिलहाल आप सबके सुख की कामना है, प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। हमें दीजिए इजाजत, नमस्ते।

आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz, न्यूज ऑन AIR ऐप तथा वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं और कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ रहे हैं। आइए, अब वक्त हो चला है विविध गीत और संगीत की परंपराओं से और विविध गीत और संगीत से सजा हुआ वो कार्यक्रम जिसका नाम है सबरंग। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जया किशोरी, भूपेंद्र बब्बल और साथियों के मिले जुले स्वरों में इस प्रस्तुति के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली FM 104.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर इस समय आप सब रंग सुन रहे हैं। तुलसी कुमार के स्वर में सुनते हैं ये भक्ति रचना।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz तथा न्यूज ऑन AIR ऐप एवं वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर इस समय आप सुन रहे हैं सबरंग। सबरंग में आइए अब सुनते हैं हेमा सरदेसाई की आवाज में ये

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सब रंग। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुआ चाहते हैं। आइए अब सुनते हैं FM रेनबो के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ।

0: और वैसे कुछ भुलाने की जरूरत नहीं है, और 100.7 FM की फ्रीक्वेंसी भूलेंगे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये दरख्वास्त है मेरी आप सबसे।
1: तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे।
0: ओके सो भूलिएगा मत ये बात। हमारा इस समय प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, और इस प्रोग्राम में आपके साथ आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला है, और आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और पढ़ रही हूँ, बल्कि ऑफ एयर मैंने बहुत सारे मैसेजेस अभी देखे हैं। तो वारिस अली खान जी का मैसेज आया है, लिखते हैं रोली जी आप शो, अच्छा ठीक है इन्होंने एक अच्छी सी बात लिखी है, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं कि संदेश है आपकी कर्म से आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं, और हमें कर्म हमेशा ऐसे करने चाहिए जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो, और अगर किसी के किए हुए कर्म से हमें तकलीफ है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। क्या कहते हैं आप?

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
1: LIC जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस।
2: LIC हर पल आपके साथ।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
2: LIC हर पल आपके साथ।

टुक टुक जी, जी हाँ, इनका नाम है टुक टुक जी, दीवा अदीबा टुक टुक जी उन्नाव से लिखती है, हेलो डियर रोली मैम, दीबा जैनी अंसारी, मेरा संदेश है कि किचन का काम करते करते जब बात आती है खाना बनाने की, तो कुछ यूँ होता है कि चूल्हे पे कुकर रखने से पहले अपने चूल्हे के बर्नल पे ध्यान नहीं देते, काफ़ी बार उस बर्नल में बहुत तेज़ आग पकड़ने पर खतरा बढ़ जाता है, प्लीज़ या फिर उस गैस की वापसी को अच्छे उस गैस को वापस से अच्छे से साफ़ कर लें। बिल्कुल सही बात है, अगर ये सारी चीज़ें प्रिकॉशंस हम रखें तो ऑब्वियसली हमारे किचन में सफाई भी रहेगी और हमारा काम भी अच्छा रहेगा। और ये लिखती हैं कि रोली जी, आप वही रोली शुक्ला मैम हैं जो कुछ साल पहले ये आवाज़ में सुनती थी, सच में आपको बहुत ईमेल करती थी, याद है ना? याद है मुझे, याद है, और थैंक यू सो मच कि आप मेल करती थी, और देखिए आज भी तो आपने मेल किया है, तो आज भी वो खुशी दोगुनी हो गई है। ऐसे ही मेल करते रहेगा और प्यार करते रहेगा, और आपका प्यार वाकई में ज़िंदगी को बहुत खुशियाँ दे देता है। और ये लिखती है कि मैं वही दीबा जैनी अंसारी हूँ, थैंक यू सो मच। हमारे पास वकील अहमद का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग रोली मैम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। संदेश ये कि मोटरसाइकिल वाले हेलमेट ज़रूर लगाएं, कुछ लोग हाथ में टांग लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपको हम सब की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है। सुनते रहिए संदेश आपके गीत हमारे, और ऐसे अच्छे अच्छे मैसेजेस हमें भेजते रहिए। मैं तो बस पढ़कर एंजॉय कर रही हूँ, और साथ ही साथ ऑन एयर भी तो आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ। और फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, बहुत देर से।

0: अमृत बाल ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में जोड़ होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। NRC, हर पल आपके साथ।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

बाबू अंसारी का मैसेज आया, लिखते हैं गुड मॉर्निंग रोली मैम जी, कैसे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं, मेरा संदेश ये है कि बिजली है अनमोल खजाना, इसे व्यर्थ ना हमें गवाना, जब जरूरत हो तभी जलाएं, काम हो जाए तो बंद कर जाए, पंखे लाइट और उपकरणों का सही इस्तेमाल करें, बिजली बचा कर न केवल

और अपना पैसा बचाएं बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में भी अपना योगदान करें। बिल्कुल सही बात है बाबू अंसारी जी। और हमारे पास रॉयल अमित यादव की मेल से फिर से एक मैसेज आया, मैम प्लीज कॉल रिसीव कर लो। देखिए कॉल्स भी रिसीव करते हैं और मैसेजेस भी पढ़ते हैं, और ये लिखती हैं या लिखते हैं पता नहीं कौन है ये। पहले तो किसी फीमेल ने मैसेज किया था इनके आईडी से, और ये लिखती है कि उफ तेरी प्यारी स्माइल, मिठी तेरी वॉइस, जल जाती है दुनिया सारी देख के मेरी चॉइस। वाह क्या बात है। और इनका जो संदेश है वो मैं पढ़ती हूँ, फिलहाल ये ट्रैक एंजॉय करते हैं।

किसी को अपना बनाओ तो चेहरे पर मुस्कान लाना, उसके हर छोटे बड़े ख्वाब को अपना बनाना। रिश्ते तो बहुत मिल जाते हैं इस दुनिया में, बस किसी का बनकर उसका साथ निभाना। कभी हंसी में, कभी शरारत में, कभी छोटी सी प्यारी सी शिकायत में, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है जनाब जब कोई अपना मिल जाता है हर बात में। और भाई अब चलने का समय हो गया है। रोली शुक्ला आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला आपसे कहती है टाटा बाय। मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी दिन किसी और शो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अब से कुछ घंटों के लिए आपके साथ रहने वाली है हमारी आरजे फातिमा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे म्यूजिकल।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले मार्जिन पर सीमा तय कर दी है, जो अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जहां अनुसूचित सूची में शामिल आवश्यक कैंसर दवाओं पर पहले से ही सरकार द्वारा निर्धारित सख्त अधिकतम मूल्य सीमाएं लागू हैं। वहीं ये नया निर्णय मार्जिन सीमित करके गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। भारत में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जो हर 1 लाख की जनसंख्या पर लगभग 60 लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। कैंसर का उपचार रोगियों और उनके परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी, रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज टेरिटोरियल आर्मी सेना के स्थापना दिवस पर इसके सभी रैंक के जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि टेरिटोरियल आर्मी नागरिक भी सैनिक भी की भावना का बेहतरीन उदाहरण है। यह आम नागरिकों के देश की सेवा करने के असाधारण संकल्प को दिखाती है। इसने सीमाओं की सुरक्षा से लेकर आपदा राहत और राष्ट्र निर्माण तक साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा की बेहतरीन परंपराओं को कायम रखा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है। चित्रकूट के करवी नगर में पितृ विसर्जनी अमावस्या पर्व को देखते हुए भारी और मध्यम माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज सुबह 5:30 बजे से 10 अक्टूबर मध्यरात्रि तक नगर में नो एंट्री रहेगी। इसके बाद 11 अक्टूबर से अगले 30 दिनों तक राजापुर, प्रयागराज, मानिकपुर, सतना और बांदा मार्ग पर निर्धारित समय में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन और आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छूट दी गई है। श्रावस्ती में 2 श्रीलंकाई पर्यटकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों श्रीलंकाई नागरिक घायल हो गए हैं। दोनों विदेशी सैलानी प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन करने भारत आए थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत इकोना CHC में भर्ती कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

नमस्कार आदाब, 100.7 एफएम रेनबो पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। आपकी होस्ट फातिमा, और आगाज हो गया है प्रोग्राम स्वयं सिद्धा का। जी हाँ, स्वयं सिद्धा का आगाज

आज हो गया है 12 से 1। आज हम वर्किंग वीमेन से रिलेटेड कौन सा वो एस्पेक्ट है जो कवर करेंगे, सब कुछ साझा करूंगी आपके साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉजिटिव नोट, एक छोटा सा पॉजिटिव डोज जिस पर आगाज करेंगे प्रोग्राम का। और वो डोज ये है कि भाई कई बार हम सब की, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह पे कुछ काम रैंडम आते हैं, कुछ काम प्लान्ड आते हैं। दोनों ही केसेस में जब आपको काम सबमिशन का टाइम होता है, जब फाइनल रिजल्ट का टाइम होता है, तो उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर होता ही है। थोड़ा सा आपके जहन में रहता है कि काम जल्दी से वाइंड अप हो जाए, अच्छे से वाइंड अप हो जाए। तो इस प्रेशर को बेशक अपने साथ रखिए, लेकिन इसको अपने जहन पे हावी मत होने दीजिए कि उसके चक्कर में आप मेंटल इम्बैलेंस फेस करने लगे, या फिर थोड़ा सा किसी भी तरीके का आप कोई फिजिकल एलिमेंट में मुब्तला हो जाए। बिल्कुल ऐसा मत करिए। रिलैक्स्ड माइंड से काम को प्लान तरीके से करिए। लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उसे बर्दाश्त करने का, उसे डील करने का हम सब के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, और होती है हम सब के अंदर मैच्योरिटी। बस कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो कह दे कि ऑल इज़ वेल, और ऑल इज़ वेल रहेगा भी। तो बस इसी नोट पर आगाज़ करेंगे आज के इस प्रोग्राम का। रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ऑलराइट, 12:13 का वक्त हो गया है और प्रोग्राम स्वयं सिद्धा एंजॉय कर रहे हैं आज आप अपनी होस्ट फातिमा के साथ। तो फ्रेंड्स, भाई जब बचपन में डॉक्टर, टीचर या नर्स का नाम सुनते थे हम, तो दिमाग में अक्सर एक महिला की छवि बनती थी। लेकिन जब बात आती थी फाइटर पायलट, लोको पायलट, मरीन इंजीनियर्स या फिर स्पेस साइंटिस्ट की, तो सोसाइटी मान लेती थी कि ये काम सिर्फ पुरुषों के बस का है। लेकिन आज जी, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो आज तस्वीर बदल चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं उन जाबाज महिलाओं की जिन्होंने उन पेशों में कदम रखा जहां कभी उन्हें आम, मतलब आप कह सकते हैं, कमतर समझा जाता था। आमतौर पे वो उस प्रोफेशंस में, उन शोबों में नहीं जाती थी। बात चाहे आसमान की ऊंचाइयों को छूने की हो या जमीन पर ट्रेन की पटरियों पर दौड़ने की, भारत की बेटियों ने हर जगह अपना परचम लहराया है। 1936 में अगर हम बात करें सरला ठकराल जी की, तो 1936 में उन्होंने जब महिलाएं घर से निकलने में हिचकिचाती थी, तब सरला जी 7 साल की उम्र में साड़ी पहन

शालिदा धामी जी, ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये एक नई सोच की शुरुआत है। इन्होंने उन बंदिशों को तोड़ा जिन्हें करियर नहीं बनाती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते आसान करती है। जी, इन्होंने उन बंदिशों को तोड़ा जिन्हें समाज ने सालों से बना रखा था। कुछ बैरियर्स, कुछ लिमिटेशन सेट किए हुए थे, उनको तोड़ा। इन्होंने दिखाया कि जब कोई महिला किसी भी क्षेत्र में कदम रखती है तो वो सिर्फ अपना करियर नहीं बनाती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ते आसान करती है। जी हाँ, तो भाई इस इन दो महान जो हमारी महिला जाबाज है, इनसे जुड़ी गुफ्तगू करने के बाद आपको बता दें कि अपने शहर लखनऊ से कनेक्टेड जाबाज एक महिला की कहानी है जो हम आपके साथ साझा करेंगे उनके ही अल्फाजों में, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: एलआईसी जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस।
1: एलआईसी, हर पल आपके साथ।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: ऑलराइट, 12:33 का वक्त हो गया है। प्रोग्राम स्वयं सिद्धा एंजॉय कर रहे हैं आज आप अपनी होस्ट फातिमा के साथ। और आपको बता दूं, आज हमारे प्रोग्राम पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हमारे शहर की पहचान और मजबूती का प्रतीक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर निशि पांडे जी की, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग की प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस और पूरे उत्तर प्रदेश में आयरन लेडी के नाम से मशहूर डॉक्टर पांडे ने अपने 40 इयर्स के शानदार सेवा काल में विश्वविद्यालय के 100 सालों के इतिहास को नया मोड़ दिया। वे कैंपस की पहली महिला चीफ प्रॉक्टर, अधिष्ठाता छात्र कल्याण जी DSW और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की निदेशक बनी। 2006 में अपनी बेबाक निडरता और कड़े फैसलों से कैंपस में अनुशासन और कानून व्यवस्था बहाल करने वाली डॉक्टर पांडे आज अनगिनत युवाओं और महिलाओं के लिए एक बेमिसाल रोल मॉडल हैं। सरस्वती सम्मान, रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार और फुल ब्राइट व ऑक्सफोर्ड जैसी 25 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप से सम्मानित डॉक्टर निशि पांडे मैम का हमारे आज प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, मैम अपने एकेडमिक असाइनमेंट्स और बैठकों में काफी व्यस्त थी, लेकिन 100.7 FM रेनबो के श्रोताओं के लिए उन्होंने अपनी इसी व्यस्त दिनचर्या के बीच कुछ खास पल निकालकर हमारे सवालों के रिकॉर्डेड जवाब भेजे हैं। तो पहले मैं सवाल पुटअप करूंगी, उसके बाद निशि मैम के आपको जवाब भी सुनवाऊंगी ऑन एयर। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल से भी लंबे इतिहास में चीफ प्रॉक्टर का पद एक ऐसा किला माना जाता था जहां हमेशा मेल्स का ही दबदबा रहा। जब 2015 में पहली बार किसी महिला ने इस पद पर कदम रखा तो हर तरफ हलचल मच गई। हमने प्रोफेसर निशि पांडे जी से अपनी व्यस्तता के बीच सवाल यही पूछा कि भाई मैम, जिस क्षेत्र पर 100 सालों से पुरुषों का एकाधिकार समझा जाता था, उसमें आपकी एंट्री कैसे हुई? क्या मन में कोई झिझक थी? तो आइए सुनते हैं मैम का रिकॉर्डेड जवाब।
1: हेलो फातिमा, FM रेनबो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। फातिमा, अभी अभी एक मीटिंग खत्म हुई है ऑनलाइन, अगली क्लास ऑनलाइन लेनी है, इसी के बीच में आपके साथ मैं ये बातचीत कर रही हूँ और मुझे ये मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब 2015 में मुझे विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर की जिम्मेदारी दी गई तो कैंपस के 100 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी महिला को इस पद पर लाया गया था। उस वक्त कई सवाल खड़े किए गए, क्या एक महिला प्रोफेसर सुरक्षा और छात्र राजनीति के उस कड़े माहौल को संभाल पाएगी? लेकिन मेरा मानना था कि प्रशासनिक दक्षता या साहस का संबंध जेंडर से नहीं होता। विश्व साहित्य को पढ़ने और पढ़ाने में मैंने जो हमेशा यही बात सीखी

0: कि नेतृत्व आपकी नियत और फैसलों से तय होती है। झिझक का तो कोई सवाल ही नहीं था, बस मुझे काम से जवाब देना था, क्योंकि मेरे अनुभव ने मुझको यह सिखाया था कि एक पितृसत्तात्मक समाज में महिला सिर्फ जवाब अपने काम से ही दे सकती है, और हमने वही किया। मैं सच कहूं फातिमा, तो मैंने कभी यह सोचकर इस पद को नहीं लिया कि मुझे 100 साल का कोई इतिहास बदलना है। मैं एक शिक्षक थी, साहित्य पढ़ाती थी, छात्रों के बीच रहती थी, लेकिन जब विश्वविद्यालय के नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया तो मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो परंपरा और डर के आगे हिचकिचाना, या फिर इस चुनौती को एक अवसर में बदलना। 100 साल का जो मिथक था कि अनुशासन सिर्फ कड़े पुरुष अधिकारियों से ही कायम हो सकता है, उसे तोड़ने के लिए सिर्फ मेरी इच्छा शक्ति काफी नहीं थी। फैसले लेने की कड़ाके की हिम्मत चाहिए, और जो साहस, व्यक्तिगत साहस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैंने चार्ज लिया तो कई लोगों की निगाहें इस बात पर थी कि देखते हैं एक महिला प्रोफेसर इस तनावपूर्ण माहौल को कैसे संभालती है। मैंने किसी भी बहस में पढ़ने के बजाय प्रशासनिक काम पर ध्यान दिया। देर रात तक कैंपस की मॉनिटरिंग की, सुरक्षा व्यवस्था को बदला, नियमों का समझौता कभी नहीं किया, और तब समझ में आया कि रास्ते पहले से नहीं बने होते। जब आप किसी बंद दरवाजे को पहली बार धक्का देते हैं तो वो सबके लिए खुल जाता है।
1: ऑलराइट, क्या बात कही मैम ने। जब आप किसी बंद दरवाजे को धक्का देते हैं तो वो सबके लिए खुल जाता है। कितनी गहरी और बड़ी बात कही मैम ने। 100 साल की रूढ़िवादी सोच को उन्होंने एक झटके में बदल दिया। इसी तरीके से कुछ और कंसर्न्स थे, कुछ और आप कह सकते हैं इनसाइट्स हैं जो मैम ने बड़ी ही बखूबी, मतलब बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हम तक साझा किए हैं हमारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए स्पेशली, जहां वो बहुत सारे इनपुट्स दिया करती हैं फीमेल्स के लिए, तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: ऑलराइट, 12:45 का वक्त हो गया है और म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपके साथ साझा की थी एक रिकॉर्डेड बातचीत जो हमने की थी प्रोफेसर निशी पांडे जी से, और एक टॉपिक जिस पर हमने डिस्कशन कर लिया था तो उसके जवाब में जो उस जवाब का जो क्रक्स निकला था, क्या मतलब आप किसी बंद दरवाजे को धक्का देते हैं तो वो सबके लिए खुल जाता है, इस बात से मतलब बहुत सारी महिलाएं इस वक्त होंगी जो मोटिवेटेड जरूर फील करेंगी। ऑलराइट, इस बातचीत को जब हमने जारी रखा और उनसे अपनी जो गुफ्तगू थी वो कंटिन्यू की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आया। हमने जो दूसरा सवाल उनसे पुटअप किया था वो ये था कि मैम, एक तरफ अनुशासन की कड़ाई और दूसरी तरफ एक मेंटोर और शिक्षक की संवेदनशीलता, आप इन दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन कैसे बनाती थी? तो इस सवाल के जवाब में मैम ने जो कहा वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ।
1: यू नो फातिमा, जब आप DSW प्रोवोस्ट या चीफ प्रॉक्टर या चीफ प्रोवोस्ट जैसे पदों पर एक साथ काम करते हैं तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं और आपका आमना सामना छात्रों से ज्यादा होता है। हॉस्टलों के व्यवस्था को देखना, छात्रों के वेलफेयर को देखना, उनके प्रोजेक्ट्स

को रिव्यू करना, उनके लिए नए आयाम क्या हो सकते हैं उनको खोलना, इसमें सबने एक बात याद रखनी होती है और वो है अनुशासन। और मैं हमेशा मानती हूँ कि एज टीचर्स हमें डिसिप्लिन करना बच्चों को चाहिए, न कि उनको दंडित करना चाहिए। वी आर नॉट देयर टू पनिश, वी आर देयर टू डिसिप्लिन। घर के माहौल में भी हम बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, तो डिसिप्लिन करने के समय आपको बच्चों से वार्ता करना, उनसे कनेक्ट करना, उनसे उनकी बातों को सुनना, समझना और सुलझाना, यह बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब किसी को डराना या दबाना कभी नहीं होता। अनुशासन का असली अर्थ होता है एक सुरक्षित और निडर माहौल बनाना, जिसमें बच्चा अपनी बात को कह सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखनी होती है, दूर दराज से आई हुई बेटियां कैंपस में बेखौफ होकर पढ़ सकें, नियम अगर तोड़े गए हैं वहां कड़ाई जरूरी होती है। लेकिन जहां छात्रों को मार्गदर्शन देना चाहिए, वहां मैंने हमेशा एक शिक्षक और मेंटर की तरह बात की और बच्चों के संग संवाद किया, क्योंकि संवाद से हर समस्या का हल हो सकता है। यहाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूंगी कि मेरे कार्यकाल में एक भी FIR किसी भी लड़के के खिलाफ एज प्रॉक्टर नहीं की गई। मैंने हमेशा वार्ता करके बात को सुलझाया और समझाया उनको, और वो इसलिए मैं सफल भी रही।

0: 12:49 का वक्त। वेल सेड मैम। अनुशासन का असली अर्थ है एक सुरक्षित माहौल देना। मैम का ये नजरिया हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसी वजह से उन्हें रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हुए हमने मैम से एक बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण बात पूछी। वर्क प्लेस हो या पर्सनल लाइफ, महिलाओं से अक्सर हर जगह समझौता करने की उम्मीद की जाती है। हमने पूछा, मैम करियर में आगे बढ़ने या अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए महिलाओं को अपने लिए नेगोशिएशन बाउंड्रीज यानी अपनी सीमाएं तय करना कितना जरूरी है। तो इस प्रश्न पर निशी मैम ने जो जवाब दिया वो हम सब मिलकर सुनते हैं।
1: यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है फातिमा जो आपने पूछा है। एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें एक अप्रूवल मिलना चाहिए, चाहे वो पिता से हो, चाहे वो भाई से हो, चाहे वो पति से हो, वो परिवार से हो, या जहां वो काम कर रही है। तो दे आर ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन, और अक्सर उनको लगता है कि वो हर बात पर अगर हाँ कहेंगी या समझौता करेंगी तभी वे एक अच्छी लीडर, अच्छी सहकर्मी या अच्छी गृहिणी कहलाएंगी। मेरा ये मानना है कि आपको एसर्टिव होना चाहिए, आपको अपनी बात को कहना चाहिए, आपको अपनी बात को समझाना चाहिए, माने कोई या ना माने, एसर्टिव होना जरूरी है। लेकिन अक्सर एसर्टिव वुमेन को समाज में लोग अग्रेसिव कहते हैं कि वो बहुत अग्रेसिव है। इससे डरना नहीं चाहिए, आपको एसर्टिव होना चाहिए, अपनी बात को कहना चाहिए, समझाना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए। क्योंकि आप जब अपने प्रोफेशनल वर्क स्पेस पे जाएंगे और अपने पर्सनल वर्क स्पेस में भी आप देखेंगे कि आपको हर वक्त नेगोशिएट करना पड़ेगा फॉर स्पेस फॉर योरसेल्फ, अपने लिए एक जगह बनानी पड़ेगी। उस नेगोशिएशन को करने के लिए आप अगर असर्टिव नहीं है तो आप कैसे नेगोशिएट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। किस बात पर फ्लेक्सिबल रहेंगी या आप डिसाइड करेंगी, आप अपने आत्मसम्मान, अपने समय, अपने काम की गुणवत्ता, अपनी प्राथमिकताएं, इनको लेकर स्पष्ट बाउंड्रीज बनाना चाहिए आपको, खास तौर से वर्क स्पेस में। तो शुरुआत में लोग आपको सख्त कह सकते हैं जैसे मुझे कहते हैं, लेकिन लंबे समय में यही बाउंड्रीज आपको और आपके काम को सम्मान दिलाती हैं। अगर आप खुद अपनी शर्तों और सीमाओं की कदर नहीं करेंगी तो कोई दूसरा

0: क्यों करेगा, वो भी नहीं करेगा। इसलिए अपनी सीमाओं को तय करिए, निडर होकर ना कहना सीखिए, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है, मेरा मानना यह है कि पैसे से सशक्त नहीं होती नारी, नारी वो सशक्त है जो अपने निर्णय स्वयं ले सके।
1: ऑल राइट, अगर आप खुद अपनी सीमाओं की कदर नहीं करेंगी तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। कितनी व्यवहारिक और सटीक सलाह दी है निशी मैम ने। वर्क प्लेस हो या घर, अपनी प्राथमिकताएं और सीमाएं तय करना ही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। अब इस मोमेंट पर लेंगे हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जरूर वापस आएंगे ताकि हम वाइंड अप कर सके इस बात को एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।
2: चुनिए LIC की जीवन लाभ, एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान जिसमें आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC, हर पल आपके साथ।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: ऑलराइट, 12:54 का वक्त हो गया है ऑलमोस्ट, प्रोग्राम स्वयं सिद्धा को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। लेकिन भाई चलते चलते आज जब हमारी बेटियां हर उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं जहां कभी उन्हें कमतर समझा जाता था, तो प्रोफेसर निशी पांडे जी का ये सफर एक मिसाल है। अपने अगले असाइनमेंट्स के लिए रवाना होने से ठीक पहले हमने उनसे आखिरी सवाल पूछा और मैम FM रेनबो के युवा श्रोताओं और खास तौर पर हमारी बेटियों के लिए आपका क्या संदेश है, तो उस पर मैम ने जो जवाब दिया वो सुनना बेहद जरूरी है। ऑलराइट,
1: FM 100.7 के माध्यम से मैं देश की युवा पीढ़ी और बेटियों को बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कभी भी समाज के तय किए हुए पैमाने से अपनी क्षमताओं को मत नापो। जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में कदम रखेंगी जहां महिलाओं की उपस्थिति कम है तो चुनौतियां आएंगी। आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए 500 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सामने स्ट्रगल होगा, आपके सामने आपकी नेगोशिएशन की स्किल्स, आपके सामने बहुत सारी ऐसे पहाड़ जैसे प्रॉब्लम्स दिखेंगी आपको, लेकिन योर स्ट्रगल प्रिपेयर्स यू फॉर योर स्ट्रेंथ। जब आप अपने इरादों से एक रास्ता बनाती हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं चलती बल्कि अपने पीछे आने वाली सैकड़ों लड़कियों के लिए दरवाजे खोल देती हैं। मैंने अपने जीवन में यही प्रयास किया और आज मैं आपको बहुत खुशी से इस बात को बता सकती हूँ कि मेरे कार्यकाल के खत्म होने के बाद आज लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन में वर्चुअली 50% महिला शिक्षिकाएं जो हैं वो उन पदों पर हैं जिन पर कभी वो बैठ नहीं सकती थी। तो इसलिए खुद पे भरोसा रखो, दूसरों के बातों से विचलित मत हो, अपना आकलन स्वयं करो, अपने सारे निर्णय स्वयं लो, अपने पर भरोसा रखो, निडर रहो, साहसी रहो और आगे बढ़ो। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द प्रोग्राम।
0: ऑलराइट, इतने पॉजिटिव नोट पर जब मैम ने प्रोग्राम वाइंड अप किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई हम प्रोफेसर निशी पांडे जी का शाल

धामी और हमने डिस्कस किया था अवनी जी के बारे में। तो इन सब के जो स्टोरीज हमने आज प्रोग्राम में डिस्कस की हैं, उम्मीद है हमारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए ये प्रेरणा स्रोत बनेंगी और कहीं ना कहीं आप अंदर से, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसको आप निखारने का पूरा प्रयत्न करेंगी, पूरा प्रयास करेंगी और कभी भी डरेंगी नहीं। हाँ, अपनी बात को रखने का जो तरीका है वो जरूर बेहतरीन से बेहतरीन करेंगी। और बस इसी नोट पर हम वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को, इस वादे के साथ कि एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एफएम रेनबो लखनऊ से कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 एफएम पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप सब मध्याह्न एक बजे से हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके अनुरोध भरे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। न्यूज ऑन EIR ऐप, वेब्स OTT प्लेटफॉर्म तथा रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं अनुरोध गीत। अनुरोध गीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हो चुके हैं आपके ढेरों पत्र लेकर, और इनमें आपने अपनी पसंद के फिल्मी गाने हमें लिख भेजे हैं। वैसे आपको बता दें, अगर आपका दिल भी करे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना, तो इसके लिए आपको करना

क्या है आपको भेजना है पत्र, और हमारा पता है कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। फिलहाल आज के अनुरोध गीत का आगाज करते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाई, रविंद्र जैन और साथियों की आवाजें, गीत और संगीत भी रविंद्र जैन का है। और आज का ये जो पहला गाना है आप सबने सुनना चाहा है, रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, भ्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। अब इस गाने में आप सबको भी साथ लेके चलेंगे। आप हैं कुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। पटेल नगर मलूट पंजाब से हमें पत्र भेजा है डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने। आपके नाम करते हैं ये खूबसूरत नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली से आप इस समय सुन रहे हैं अनुरोध गीत कार्यक्रम। अगला गीत फिल्म दूल्हे राजा से आप सब दोस्तों ने सुनना चाहा है। हमारे ये जो साथी हैं वो कौन हैं? आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा, प्रेमलागंज, आलोट, रतलाम, मध्य प्रदेश से। इसी गाने में शामिल करते हैं आप सब दोस्तों को। आप हैं अलीगंज रोड ग्राम महेलिया से हशरत खां, हशमत खां, अजमत खां, रईस बानो और इनके तमाम साथी। और ये पत्र हमें आप सब दोस्तों का मिला है। ये कौन है? आप स्पष्ट रूप से तो दिखाई ना पड़ रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस पत्र को शामिल किया जाए। और फिलहाल दूल्हे राजा फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और साथियों की मिली जुली आवाजों में है। हाँ, ये जो पत्र है वो असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी ने भेजा है। तो लीजिए सुनिए फिल्म दूल्हे राजा से ये ट्रैक।

जी हाँ दोस्तों, धुआंधाड़ आपके अनुरोध भरे गीत आपको सुनवाए जा रहे हैं आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz न्यूज ऑन एयर तथा वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर। अगला गाना साजन चले ससुराल, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। इस गीत को पसंद करने वाले आप सभी दोस्त हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनका पूरा परिवार शामिल करते हैं आपको। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेराज जहां और इनका पूरा परिवार आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। कोटवा नारायणपुर, बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय।

आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस समय प्रोग्राम जारी है अनुरोध गीत। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं हीरो नंबर वन से पूर्णिमा और उदित नारायण की आवाजों में सजा हुआ ये गाना आप सबने सुनना चाहा है। यादव मोहला सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार और इनका पूरा मालाकार परिवार।

परिवार कासगन से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सफी और इनके तमाम हमनवा, आफरीन खान और जमीर खान मीरा सराय बदायूं से हैं। मौला अलबैयान शेरकोट बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर।

अनुरोध गीत जारी है आकाशवाणी बरेली से, कुली नंबर वन से ये गाना चंद्रना दीक्षित और अभिजीत की आवाजों में। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरोला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा शोएब खान, सालिया मुस्ताफा खान, आफिया खान, रूप भाई और शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से हमें पत्र भेजा है रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। इसी गाने में आपको भी शामिल करते हैं सब रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके तमाम साथी।

चार। लेकिन किताबें पढ़ने के बारे में बाजीगर फिल्म का ये गाना सुनिएगा। आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजों में ये गाना आप सबने सुना चाहा है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अब इसी गाने में शामिल कर लेते हैं आपको। आप हैं छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से, राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय और इनके सभी साथी। बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, अमान भारद्वाज, अमन होगा यहाँ पे, वीरेश चौहान, सोनू, शिप्रा, प्रदीपाल, नमन और इनके सभी साथी।

0: जी हाँ, इस समय धुआंधार गाने सुन रहे हैं आप आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम चल रहा है कौन सा? हाँ, प्रोग्राम चल रहा है अनुरोध घी, आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रेफाकत, शमरीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर, दिल तो पागल है फिल्म का ये गाना है, लता जी और उदित नारायण की आवाजों में। इस गाने में आपको भी साथ लेते हैं। आपने कहा है कि श्रीमान जी अनुरोध गीत में एक गीत सुनवा दें, अब कौन सा गीत सुनवा दें ये लिखा ही ना है आपने, तो फिर इस गीत में ही आपको शामिल कर लेते हैं।
1: अब तो कुछ है बोल।
0: बिल्कुल बोलेंगे, आपके नाम बोलेंगे और आपका पता बोलेंगे। आप हैं जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, अमित, आदित्य, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा, और कोई साथी है? बिल्कुल है, आप हैं ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, कर्मवीर गोडवाल, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव और दीपक और इनके तमाम साथी। तो ऐसा है फिर चुप क्यों बैठे हैं, है ना? बोलते रहते हैं, गाने सुनवाते रहते हैं आपको, सुनिए
2: कुछ तो।

जी हाँ, ये गाना ना मिलेगा सुनने को आपको, राजा बाबू का ये वाला गाना सुनने को मिलेगा। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गीत है, आप सब सुनना चाहते हैं तो जरा गौर से सुनिएगा। कौन कौन साथी हैं? आप हैं चौकड़ा धाम कॉलोनी सनावत से कृष्णपाल सिंह चौहान, दारा देवी, नवदित, वैभव पाल, ध्रुवी, प्रद्युम्न सिंह चौहान और इनका पूरा परिवार। नागरकोरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्य साहू।

दोस्तों अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म खलनायक से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और मदन मनहर उदास ने। गीत को सुनना चाहते हैं कोल सिटी बरकाना बरका काना झारखंड से अफजाल ताल, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी सानी और अफजल मलिक। और इसी गीत में शामिल करते हैं बिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगिल।

अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष, नंदिनी और इनका पूरा जंघेल परिवार। सुकरी कला धमता से आप हैं अमित, शकुन, अर्षि, उषिका, आरबी जंघेल और अंजलि जंघेल। इसे सुनिए फिल्म खलनायक से ये गीत मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत गजेंद्र के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे रस रंग। रस रंग में पहली प्रस्तुति है कैसर आजाद बदायूनी और साथियों के स्वर में ये कव्वाली।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कार्यक्रम में अगली गजल है जगजीत सिंह के

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कार्यक्रम में अगली कव्वाली है कैसर आजाद बदायूनी और उनके साथियों के स्वर में।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को सायं 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 9 अक्टूबर 2026 को सायं 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार और सुन लें। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 9 अक्टूबर 2026 को सायं 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। सूचना समाप्त हुई। रसरंग में अगली प्रस्तुति है जगजीत सिंह के स्वर में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे रस रंग, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। फिल्म थी वो कौन थी और संगीतकार थे मदन मोहन। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे फागुन फिल्म का गाना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलालाबादी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
5: यह ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
4: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नागिन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रेम धवन का लिखा गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में। फिल्म थी सावन।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।

0: अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुमराह फिल्म का गाना था महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये महुआ फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज।

महुआ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी के बोल थे सोनिक ओमी का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी दोस्त मंजरी वर्मा का कीजिए नमस्कार स्वीकार। हम सभी के जीवन में बचपन की प्यारी यादें जैसे दादी बाबा माता पिता के साथ बिताया वक्त यादों में जुड़ा होता है, और दादी बाबा से सुनी कहानियां या सीख, वही माँ के हाथ का बना खास व्यंजन जो आज तक आपको याद है, आपकी माँ को क्या पसंद है और पिताजी को क्या पसंद है, उस दौर के गलियारों में चलते हैं जहाँ अपनों की यादें आज भी दिल में बसी हैं, जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या नम आंखें हो जाती हैं। अब फोन की घंटी बज उठी है, लेते हैं पहली कॉल और देखते हैं किस सखी से होंगी बातें। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद सातुई से बोल रही है रेखा मुखर्जी।
0: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पहली कॉल लगी है। तो बताइए आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए कि बचपन की जो

0: यादें होती हैं प्यारी प्यारी से, दादी बाबा के संग, माता पिता के संग, वो गुजरा हुआ जो दौर होता है, तो उसकी कुछ यादें आप ताजा कीजिए
1: हाँ,
0: हमारे।
1: याद आती तो है, लेकिन सब तो गुजर गया। दादा
0: जी
1: दादी, मामी पापा, सास ससुर जी, सब गुजर गया।
0: तो ये बताइए कि आपको अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ कुछ खाना याद है? वो क्या अच्छा बनाती थी?
1: हाँ, जैसा पीछा का टाइम, पीछा बनाता था, सब्जी
0: जी
1: बनाता था,
0: जी
1: ये सभी माँ का याद आता है।
0: आप बनाती भी होंगी फिर उनका सिखाया
1: हाँ
0: हुआ।
1: हाँ माँ माँ का पास, मेरा सासू माँ का पास, हम बहुत तरह तरह का खाना बनाने सीखे, और
0: अच्छा
1: हमको नया नया खाना बनाने बहुत अच्छा लगती है। जितना अपने से खा के खुश नहीं मिलता है, हम
0: जी,
1: दूसरे को खिला के हमको खुशी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जिनको खाना बनाने का शौक होता है तो वो मन से बनाती हैं और सामने वाले को भी बहुत अच्छे से दिल से खिलाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ अपने पापा के बारे में बता सकती हैं, कुछ यादें उनकी?
1: पापा हमको बहुत कुछ समझाता था,
0: जी
1: कोई चीज का काम तुम करोगी तो
0: जी
1: 10 बार तुमको सोचना होगा, और एक बार कोई काम तुम कर लेगी तो वह दोबारा नहीं घूमेगा।
0: सही बात है। और ये बताइए, हमारा विविध भारती जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ के प्रोग्राम आप कितने सारे सुनती हैं?
1: हाँ, सुनते हैं जी, क्या बोलेंगे, 2 महीना हो जाता है तो मेरा पूरा मन छटपटाने लगती है। और
0: जी
1: जो रात को जो विविध भारती का गाना होता है ना,
0: जी
1: वो भी
0: जी
1: हम सुनते हैं। शुक्रवार को जो गीत होता है, वो भी सुनते हैं हम।
0: अच्छा क्या बात है, यानी आप बहुत पुरानी श्रोता हैं विविध भारती की।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए, आज आप फिर क्या सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम तेरी मेहरबानियां,
0: जी
1: और गाना वैसे ही भी है, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां। मेरे एक वो कुत्ता था,
0: जी
1: ये वही कुत्ता जब चल गया ना,
0: जी
1: एक हफ्ता हम लोग कुछ नहीं खाए,
0: हाँ,
1: और ये गाना मेरा दिल में बैठ गया।
0: ओहो सही बात है।
1: मेरा बच्ची भी अभी तक कुत्ता का बारे में रोती है, हमको बोलती है कि माँ, जब आप विविध भारती में आप फोन लगाइएगा तो
0: जी
1: माँ ये गाना को भी जरूर दीजिएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो हमारा उनसे बहुत जुड़ाव हो जाता है,
1: जी
0: उसकी यादें तो दिल
1: जी
0: से
1: हाँ
0: कभी जा नहीं सकती हैं। तो हम आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं रेखा जी, और फोन कॉल करने के लिए आपको हेलो सहेली में बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर इचलकरंजी से जयश्री पाटिल बोल रही हूँ।
0: जयश्री जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी जो बचपन की यादें होती हैं, जो आपने दादी बाबा के संग गुजारी हैं या मम्मी पापा के संग गुजारी हैं, उन यादों को हम चाहते हैं कि आप आज हमसे साझा करें।
1: दादी तो नहीं थे हमारे बचपन में, हमारे दादी गुजर गई, लेकिन
0: जी
1: बाबा के साथ एक याद है कि सुबह हमारे बाबा कभी हमें उठाते नहीं थे। सुबह 5:30 बजे आकाशवाणी सांगली केंद्र लगता था ना, तब
0: जी
1: वो रेडियो ऑन करते तो हम सब जाग जाते थे।
0: अच्छा
1: और तब से लेकर आज तक रेडियो इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
0: क्या बात है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि आप रेडियो कितने प्यार से सुनती हैं और कितने समय तक सुनती हैं। ये बहुत अच्छी सी बात आपने बताई। और आप अपनी पसंद के बारे में बताइए कुछ, या आप क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं तो इतना कहूंगी कि आपका वो गीतों भरी कहानी है ना, वो मुझे बहुत भाती है।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपने
1: इतना अच्छा लगता है वो कि आप बीच बीच में जो बोल लेते हो ना, वो मेरे मन को इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मुझे आज इतना आनंद हुआ है कि पूरे 6 महीने हो गए मैं इतना लगातार कोशिश कर रही हूँ, आज जाके मेरा कॉल लगा है अभी।
0: देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग गई और आपकी मेरे से बात भी हो रही है।
1: और आपके लिए मुझे एक कहना है कि जब भी ऑन करोगे रेडियो तब कुछ भी नया ही पाओगे, ऐसा विविध भारती का है। और संगीत जो रहता है ना,
0: जी
1: सबके दिलों की धड़कन विविध भारती, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिन भर रेडियो के सिवा मेरा कोई सखा नहीं रहता, इसलिए सखी भी वही है और सखा भी मेरा रेडियो है। इसलिए
0: क्या बात है
1: मैं
0: जी,
1: दिल से यही कहूंगी, जब तक सूरज चांद रहे ना तब तक विविध भारती रेडियो हमेशा बजता रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी सी बात कही है। और बताइए, और क्या आपके शौक हैं या क्या आप करना पसंद करती हैं?
1: मैं तो गेहूं और नाचनी का बिस्किट बना के देती हूँ, घर में छोटा सा उद्योग खोल रखा है मैंने।
0: क्या बात है, मतलब घर के लिए बनाती हैं या आप बिजनेस भी करती हैं इसका कुछ?
1: बिजनेस भी करती हूँ मैं, दूसरों को बना के देती हूँ।
0: हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
1: दिल
0: जी
1: खोल के आपके लिए धन्यवाद।
0: लेकिन ये बताइए कि आज आप हेलो सैली में कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम 16 साल में पहुंच गए, है ना?
1: ओके
0: जी तो चलिए जयश्री जी, आपको आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या खास बात है?
1: जी, शहर मेरा बहुत अच्छा है मैडम, साफ सफाई बिल्कुल रहती है वहाँ पे।
0: जी
1: वैसे मैं गांव से हूँ।
0: अच्छा,
1: वैसे जिला तो मतलब मेरा हिसार है, गांव में रहते हैं मैडम। वैसे हम
0: गांव तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हरे भरे खेत होते हैं, है ना?
1: जी मैडम,
0: तो आपके यहाँ क्या होता है काम?
1: हमारे यहाँ पे मैडम फसल में धान वगैरह होते हैं और मैडम नरमा की कपास होती है,
0: अच्छा,
1: गेहूँ भी होती है मैडम। जी
0: जी दाल गेहूं वगैरह होता है।
1: मैडम,
0: और सोनिका जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दादी बाबा या मम्मी पापा की यादों को ताजा करने वाले हैं। आपने जो वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ में, तो कुछ उनकी यादें, किस्से, कहानियां, कुछ सीख, वो अगर आपको याद है तो आप हमें बताइए।
1: जी दादा दादी तो मैडम मैंने देखे नहीं,
0: जी
1: ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। पापा
0: जी
1: भी एक्सपायर हो चुके और मम्मी है भी फिलहाल। तो खाना
0: तो मम्मी से आपने क्या क्या चीजें सीखी?
1: बनाने में जो डिश होती है मैडम वो
0: जी
1: सीखी मैडम, जैसे आलू के परांठे है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम, उसी से मैंने सीखा मैडम। मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम आलू के परांठे।
0: क्या बात है। और सोनिका जी, ये बताइए कि आपको भी कुछ कढ़ाई कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती हैं क्या आप?
1: नहीं मैडम, मैं ये नहीं करती। जैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम, हरियाणा में जैसे एक स्कीम है नागालैंड की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं हम।
0: जी
1: और उस समूह में जैसे लेडीज को बचत करना सिखाते हैं, जैसे हर महीने वो 100 रुपए जमा करे या 200 रुपए जमा करे, उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं मैडम किसी नाम के, तो उसका अकाउंट खुलवा देते हैं। और बैंक से अगर लेडीजों को जरूरत होती है पैसों की तो उनका मतलब लोन वगैरह भी करवा देते हैं मैडम।
0: क्या
1: मैं ये
0: बात
1: काम करती मैडम,
0: जी
1: कढ़ाई बुनाई का नहीं करती।
0: जी सोनिका जी, जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर

0: जागरूकता पैदा करती है।
1: मैडम हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में अमेठी जिले में।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैं मैडम सुबह से सुनती हूँ सखी सहेली और हेलो सहेली, तो मैडम फोन कार्यक्रम तो सुनती हूँ, और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना,
0: जी जी जी
1: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ।
0: क्या
1: और
0: बात,
1: कमेंट भी करती हूँ मैडम।
0: अच्छा बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करती है। और सोनिका जी, आपको कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
1: जी गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
0: तो आज जो आप मुझे गाना बताएंगी कि हेलो सहेली में आप ये गाना सुनना चाहती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मजा आ जाएगा।
1: एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी, यही गीत सुना दीजिए।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना सोनिका जी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ मैम, मैं मरका खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: जी, आपका क्या नाम है?
1: वो मिंद्रा नोनार।
0: तो अमिंद्रा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम ग्राम सालेकसा तहसील में रहते हैं।
0: जी
1: सालेकसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है
0: जी
1: और
0: और
1: हम खेती किसानी का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत में क्या बोया है इस समय?
1: हमने खेत में धान बोया है मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
1: हाँ मैम, कुछ यानी आधी फसल बेचने के लिए रहती है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
0: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में सास है, दो बेटे हैं और हम पति पत्नी दो जन हैं।
0: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की, या आपकी सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
1: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती किसान का काम सीखे है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
1: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं,
0: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
1: एक फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
0: अच्छा, तो बताइए आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैम मेरे को हर लो फरमाए सबसे अच्छा लगता है, और हेलो सहेली, सखी सहेली,

0: जी क्या बात है।
1: मनचाहे गीत
0: अच्छा
1: और
0: तो
1: सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो सहेली और हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, यानी कि आज आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है ना।
1: हाँ मैम,
0: तो बताइए आज आप क्या गाना सुनना चाहती हैं।
1: मुकद्दर का सिकद्दर का वो साथी रे तेरे बिना बिचे जीना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? प्रिया
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। तो बताइए अपने बारे में कुछ समय।
1: बस अपनी ऐसे ही प्राइवेट जॉब है, कपड़ों
0: अच्छा, तो किस तरह की आप जॉब करती हैं?
1: की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना।
0: जी जी
1: तो
0: जी यानी कि आप शॉप पे काम करती हैं, तो बहुत अच्छी
1: हाँ जी,
0: बात
1: हाँ जी, हाँ जी। विविध भारती के
0: जी।
1: सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं
0: एक
1: मुझे,
0: मिनट।
1: इतना पसंद है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
1: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही, लगभग रेडियो चलता ही रहता है।
0: क्या बात है। तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई की आपने कितनी करी?
1: पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड सब कुछ किया हुआ है
0: बीए और बीएड भी कर रखा है।
1: जी।
0: तो बीएड करने के बाद आपने नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
1: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए।
0: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रही हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात
1: जी बिल्कुल।
0: है ना? बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में लेते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांश, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
3: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताज़ा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ मांझी के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़े बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्य

0: कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
0: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
0: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए

0: का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
0: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
1: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
0: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
1: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
0: जी बिल्कुल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
1: विमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है।
0: जी।
1: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं।
0: जी, यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
0: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
1: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
0: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
1: जी जरूर। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
0: जी, तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
1: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
0: जी,
1: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
0: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
1: श्रोताओं, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
0: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
1: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
0: जी,
1: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
0: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओं, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
0: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
1: जी हाँ बिल्कुल। तो आइए श्रोताओं, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
0: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

0: यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
0: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
1: सीखो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
1: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने

0: में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
0: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
0: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोल देना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहार।
5: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
7: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह

0: आपको हमारा शत शत नमन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
2: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
3: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
2: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
4: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
5: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
5: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: उमंग, अभी आपने सुना ये एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पे आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बम्पर एंटरटेनमेंट। आपकी फोन कॉल, सोशल मीडिया कमेंट्स और पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। आज का विषय है, आप अपनी माँ से ज्यादा प्रभावित हैं या पिता से। कार्यक्रम के आज के ज्ञानवर्धक सुरीले और कड़पे सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। देखते हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं भोपाल से आरिफ खान मंसूरी बात कर रहा था। सर
0: आरिफ खान मंसूरी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो भोपाल में कैसा मौसम हो रहा है?
1: सर भोपाल में अच्छा मौसम है। दिन में जो है 10-11 बजे से लेकर 4 बजे तक गर्मी रहती है सर।
0: अच्छा,
1: और 4 बजे से और सुबह 10 बजे तक सर गुलाबी ठंड बोलते हैं, वो लगी रहती है सर।
0: तो अच्छी बात है। आज का विषय हमारे कार्यक्रम का है कि आप अपनी माँ से ज्यादा प्रभावित हैं या पिता से, तो इस विषय में आपके क्या विचार हैं?
1: सर प्रभावित तो दोनों से होते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा प्रभावित जो है वो सर पिता से होते हैं सर।
0: जी, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: सर ये आपसे पहली बार जुड़ा हुआ हूँ बरेली में, पहली बार मैंने कॉल किया है मैंने, और पहली बार जुड़ा हूँ तो अच्छा लग रहा है सर मुझे। और मेरे बरेली में कुछ मित्र बन गए हैं, तो उन्होंने मुझे द्वारा आपकी जानकारी मिली थी।
0: जी जी जी,
1: तो मैंने ट्राई कर रहा था कि बरेली से जुड़ जाए आपसे। सुना आपके बारे में सर, हमारे मित्र बहुत तारीफ करते हैं बरेली के भी आरजे हैं।
0: जी,
1: तो मैंने कहा आपसे हम भी बात कर ली जाए।
0: बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके हमको भी अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि इसी प्रकार आप जुड़े रहें। तो गाना कौन सुनेंगे आज?
1: सर आप तुम बिन का संवाद दीजिए।
0: तो ठीक है, सुनते हैं तुम बिन फिल्म का ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं अमित बोल रहा हूँ
0: अमित भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप?
1: जी। मैं रहने वाला तो शाहजहानपुर का हूँ,
0: जी
1: लेकिन अभी सर बरेली में रहता
0: तो बरेली में कहाँ रहते हैं?
1: हूँ। बरेली में मैं वीर सावरकर नगर।
0: वीर सावरकर नगर, बरेली से हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं। तो अमित जी, आज जो हमारा विषय है, उस विषय पे आपके क्या विचार हैं? आप अपनी माँ से ज्यादा प्रभावित हैं या पिता से?
1: जी, माता जी से अपील।
0: माता जी से। तो क्या बातें उनकी प्रभावित करती हैं आपको?
1: जी, उनका हमारे प्रति जो प्यार है और जो दुलार है और जो हमें संभाल के रखती हैं, जिस हिसाब से हम बचपन में माँ के साथ रहे हैं, तो वो चीजें हमें याद आती हैं।
0: माँ के समर्पण की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता अमित भाई, है
1: जी,
0: ना? तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: पर आपको एक अच्छा सा गीत सुना दीजिए हमें, पिताजी के ऊपर हमारे, क्योंकि माता जी से तो प्यार बहुत सारा मिला है, पिताजी से सर्विस में रहने के कारण कम मिल पाए, तो इसलिए उनके नाम पे कोई बढ़िया गाना।
0: ठीक है, सुनते हैं ये गीत, आप और हम सारे श्रोता।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं आपकी नियमित श्रोता दीक्षा पाठक बात कर रही हूँ, जिला शाहजहानपुर।
0: तो दीक्षा जी कैसी हैं आप?
1: सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं सर?
0: सब बढ़िया है हम लोग। और आज का विषय आपको पता है कि आप अपनी माँ से ज्यादा प्रभावित हैं या पिता से?
1: जी सर, हम किसी से भी नहीं, हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, पिता से भी अपने बहुत प्यार करते हैं।
0: और क्या कहना चाहेंगी, क्या बातें उनसे प्रभावित करती हैं आपको?
1: सर हमें सर उनकी सर बताएं, हमें उनकी कोई बात ऐसे नहीं लग रही है सर।
0: अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप? तो
1: सर मुझे आप कोई सा भी गीत सुनवा दीजिए।
0: ठीक है, सुनते हैं ये गीत आप और हम।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

दोस्तों, कल आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय रहेगा, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है। कार्यक्रम के प्रेजेंटर रहेंगे मोहम्मद परवेज और प्रोड्यूसर रहेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव।

दोस्तों, कल के आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय है, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है। कार्यक्रम के प्रेजेंटर होंगे मोहम्मद परवेज और प्रोड्यूसर होंगे मिथिलेश श्रीवास्तव। रिकॉर्डिंग का समय होगा दोपहर 2 बजे और प्रसारण समय 4 बजे। आप अपने सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं।

0: हेलो।
1: ओ रावत जी, राम राम।
0: राम राम, कौन बोल रहे हैं?
1: जय हीरा मन बाबा रेडियो सोता संग, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ सर।
0: विनोद नारायण कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईसागढ़ मध्य प्रदेश से। तो विनोद जी, कैसे लग रहे हैं हमारे यहाँ के कार्यक्रम आपको?
1: आपके कार्यक्रम एक से बढ़कर एक लाजवाब होते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे कि किसानों का कार्यक्रम हो, किसान वाणी या फोन इन प्रोग्राम हो, फरमाइशी हो, व्हाट्सएप फरमाइशी वगैरह, कोई सा भी प्रोग्राम हो।
0: व्हाट्सएप फरमाइश हमारे यहाँ चलता नहीं है, अब आप दूसरे केंद्रों पे चलता है। हमारे यहाँ तो फोन कॉल के द्वारा ही फरमाइशी प्रोग्राम किया जाता
1: सर
0: है।
1: क्या वो हम अन्य केंद्रों से सुनते हैं ना, तो सर वो
0: अच्छा अच्छा
1: प्राइवेट हो
0: अच्छा
1: जाता
0: चलिए कोई बात नहीं। तो विनोद भाई, आज जो हमारा विषय है उस विषय पे आपके क्या विचार हैं?
1: है। सर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि माता जी हो या पिताजी हो, एक दूसरे के बिना अपना काम नहीं चलता है।
0: जी जी जी
1: अगर हमसे कोई बोले कि आप खाना खाओगे या पानी आप पियोगे, या तो वो बोले कि खाना खा लो या बोले पानी पी लो, तो सर जैसे खाना दे दिया तो सर पानी भी अर्जेंट चाहिए पीने के लिए।
0: यानी
1: और
0: कि
1: अगर
0: दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना?
1: जी सर, जी सर,
0: उनके बिना आपका कार्य नहीं चल सकता। तो गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: सर फिल्म का नाम है पलकों की छांव में। आज हम डाक दिवस मना रहे हैं ना, तो सर वही गाना सुनना चाहूंगा, डाक या डाक लाया।
0: तो सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, चनेटा बरेली से। बढ़िया
0: चनेटा बरेली से सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुनील भाई, कैसे हैं आप?
1: है सर, आप लोग कैसे हैं?
0: बस सब बढ़िया है, आपके आशीर्वाद है, प्यार है। तो सुनील जी, आज जो हमारा विषय है वो ये है कि आप अपनी माँ से ज्यादा

0: हैं या पिता से, क्या कहेंगे?
1: सर हम तो माँ से ज्यादा प्रभावित हैं और पिता से भी है, मतलब माँ से जाने 10% ज्यादा है।
0: हाँ, होता है कि अक्सर जो लड़के होते हैं अपनी माता जी से ज्यादा प्रभावित रहते हैं और लड़कियां जो होती हैं अपने पिता से, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
0: वैसे मेरा मानना यह है कि दोनों ही पूरक हैं एक दूसरे के, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो कुछ
1: बिल्कुल
0: ना
1: बिल्कुल
0: कुछ अंश माताजी और पिताजी के हम लोगों के ऊपर आते हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि भगवान तो आता नहीं है, माँ बाप ही होते हैं जो हमारी दुख सुख में शामिल होती हैं। बिल्कुल
0: साक्षात भगवान वही होते हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सुनील जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मेरे प्यार की तमन्ना।
0: तो सुनते हैं तवायफ फिल्म का ये प्यारा सा गीत महेंद्र कपूर की आवाज में, आप और हम।

कल शनिवार 10 अक्टूबर 2026 को आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय रहेगा, ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है। प्रेजेंटर रहेंगे मोहम्मद परवेज और प्रोड्यूसर रहेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव। आप हमें दोपहर 2 बजे कॉल कर सकते हैं, जिसका प्रसारण होगा शाम के 4 बजे, और सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी भेज सकते हैं।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: डॉक्टर पवन कुमार सिंह, रोहिलखंड विश्वविद्यालय से प्रोफेसर हूँ।
0: तो प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार सिंह एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पवन जी, किस विषय के प्रोफेसर हैं आप?
1: इतिहास विषय के
0: बहुत ही कठिन है हमारे लिए इतिहास। हम लोगों को डर लगता था इतिहास से, लेकिन हाँ, इतिहास की, अपने पूर्वजों की और अपने जो शासक रहे हैं उन लोगों की कथाएं सुनते हैं उसमें, तो कैसे कैसे उन उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं तब जाके आजादी मिली है ना।
1: जी। इतिहास एक आईना भी है जिसके द्वारा हम अपने अतीत में झांक के अपना भविष्य सुंदर बनाने की एक रूपरेखा रख सकते हैं इतिहास के अंदर।
0: बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो डॉक्टर साहब, मैं आज हमारा जो विषय है वो ये है कि आप अपनी माँ से ज्यादा प्रभावित हैं या पिता से, तो क्या विचार हैं आपके?
1: हमारा तो है कि माँ से हम ज्यादा प्रभावित हैं।
0: तो किस प्रकार से माँ ने आपको प्रभावित किया?
1: माँ ने यही दिखाया रास्ता कि जो है कि आप आगे बढ़ते जाइए, समाज और तमाम जो नेगेटिव थॉट्स आते रहे उनको इग्नोर करिए और आप अपने मंजिल को हमेशा पा जाएंगे, और हमने प्राप्त भी किया।
0: तो बहुत अच्छे गुण उन्होंने आपके अंदर विकसित करे, क्योंकि देखिए जो निगेटिविटी होती है समाज में वो तो हर जगह प्राप्त होती है ना। तो हम लोगों को उन चीजों से अवॉइड होते हुए अपने लक्ष्यों पे ध्यान देना चाहिए है। तो अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: माँ के ही जो मतलब है, माँ के संदर्भ में, माँ से बड़ा कोई नहीं, माँ से प्यारा माँ है
0: तो ठीक है,
1: माँ।
0: सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

इसी विषय पे हमें कुछ कमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं। आप हैं दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, विष्णु मिस्किन, रितिका आरव, वाणी और मिस्किन परिवार के सभी सदस्य। आप कहते हैं कि मां से मैंने प्रेम, ममता, त्याग और दूसरों के दर्द को समझना सीखा है, तो पिता से मैंने जिम्मेदारी, मेहनत, संघर्ष और जीवन की कठिन परिस्थितियों में मजबूती से खड़े रहना सीखा है। मां वो हैं जो मेरी आंखों में आंसू आने से पहले मेरा दर्द समझ लेती हैं, और पिता वो हैं जो अपनी परेशानियों को छिपाकर मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। अगर मां घर की ममता और आत्मा हैं, तो पिता उस घर की हिम्मत और मजबूत आधार हैं। मां अपनी दुआओं से जीवन संवारती हैं, तो पिता अपने संघर्ष से हमारा भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे लिए मां और पिता में से किसी एक को चुनना मुश्किल है। मां ने मुझे जीना सिखाया है और पिता ने जीवन में आगे बढ़ना। मैं दोनों से समान रूप से प्रभावित हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मां के संस्कार और पिता की मेहनत दोनों का योगदान है। मेरे लिए मां पिता केवल रिश्ते नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार हैं। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह ज्योति सिंह कहते हैं, जितना हम अपनी मां से प्रभावित हैं, पिता से थोड़े कम। इसलिए कि मां दिन भर घर के काम से लेकर हम सब की देखभाल करती हैं। मां तो मां होती हैं।

ग्रामवा पोस्ट गोठा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, शीतल मिश्रा, राधा मिश्रा, सलोनी मिश्रा, शिवा मिश्रा कहते हैं। प्रश्न तो सही है लेकिन बड़ी उलझन से भरा हुआ है। मां बाप व अभिभावक एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, इनमें किसी को ऊंचा या नीचा नहीं कह सकते। हमारी परवरिश तीन लोगों ने की, माता पिता व ताऊजी ने लगाव सबसे बराबर रहा है। हाँ, ताऊजी के कोई संतान नहीं थी तो हमारा लगाव सबसे ज्यादा हमारे ताऊजी से था, क्योंकि वो अपने मन में ये एहसास नहीं करें कि छोटे भाई के बच्चों ने हमारा सम्मान नहीं किया है। हमारी माँ ने भी हमारे ताऊजी की बहुत सेवा की, उनको कभी परायापन महसूस नहीं होने दिया। इसलिए हम तो माता पिता व ताऊजी को बराबर ही मानते हैं। अगर किसी को ऊंच या नीच कहें तो हमको भगवान भी माफ नहीं करेगा और उनकी आत्मा भी हमको दुत्कारेगी। अंत में हमको भी ना जाने क्या सजा मिले, इसलिए हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। प्रभु उन सभी की आत्माओं को शांति प्रदान करें। कटरा चाँद खां पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य कहते हैं, माता और पिता हमारी आंखें हैं, पहलू हैं। माता पिता नहीं होते तो हम लोग कहां से होते। दोनों का प्यार हमें मिलता है, वैसे हमारे बच्चे उनकी बहुत प्यार से सेवा करते हैं। हमारा परिवार सुखी

परिवार है। मां का प्यार इंसान को मिलता है। आज के समय में सबसे ज्यादा मां टीचर होती है। उसके बाद पिता तो ईश्वर है। हमें उसने बनाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया और अपने पैरों पे खड़ा करा।

कार्यक्रम में अगला कमेंट है शार्दुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ का। आप कहते हैं कि आज का विषय बहुत ही प्रेरणादायक है, लेकिन सवाल का जवाब बहुत कठिन, क्योंकि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। मां और बाप दोनों ही परमात्मा का रूप हैं। परमात्मा और आत्मा दोनों का जब संगम होता है तो पवित्रता की कोई सीमा नहीं रहती। मां और बाप दोनों ही हमारे जीवन

माँ और बाप की बदौलत ही इंसान इंसान बनता है, मनुष्य बनता है। माँ बाप के दिए हुए सच्चे संस्कारों की बदौलत इंसान माँ बाप का नाम रोशन करता है और समाज में अपनी प्रतिष्ठा पाता है। हमारे लिए तो हम माँ बाप दोनों को ही परमात्मा का रूप मानते हैं। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से रेडियो दोस्त अरुण कुमार मालवीय दर्द लिखते हैं, मेरे लिए माता पिता एक समान हैं और मैं हमेशा इनसे प्रभावित रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। थाने के सामने नगर पंचायत आलागंज जनपद शाहपुर से डॉक्टर आरवी सिंह कहते हैं, मैं तो अपनी माताजी से ज्यादा प्रभावित हुआ, हालांकि पिताजी से भी प्रभावित हुआ, लेकिन मां के स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता। कटर चांद का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य किरण मौर्य कहते हैं, हमारी माता पिता वो चीज है जिन्हें ईश्वर का स्थान दिया जाता है। हमारे लिए दोनों माता पिता दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। माँ वो चीज है कि अगर हमें कुछ परेशानी हो तो शीतल बनकर हमारी परेशानियों को हर लेती हैं। अब पिताजी वो चीज हैं जो हमें काम में बुलंदी के लिए हमें तैयार करते हैं। इसलिए हमारे लिए दोनों माता पिता एक समान हैं, वो हमारी जान है। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल कहते हैं, मां मेरी दुनिया, मेरा पिता तो है नहीं पर मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरी मां में मुझे पिता का प्यार भी मिल जाता है और मां का आंचल भी। जब भी उन्हें कोई दुख तकलीफ होती है तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि जिसने मुझे चलना सिखाया आज उसे गिरने नहीं दे सकता। मां की सेवा ही मेरी पूजा है, उनकी मुस्कान ही मेरा सुकून है और उनका आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग पूछते हैं घर में मर्द कौन है, मैं कहता हूं मेरी मां के बेटे में हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मातृ देवो भवा, मां की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। प्रभु मेरी मां को हमेशा स्वस्थ और खुश रखें। प्रवीण चौहान जी कहते हैं कि हम सभी अपने माता पिता से प्रभावित होते हैं, हमारे अंदर अपने माता पिता के ही गुण होते हैं, हमारा पूर्व अस्तित्व ही हमारे माता पिता के कारण है। माता पिता ही होते हैं जिनका निस्वार्थ प्यार हमें जीवन भर मिलता रहता है। माता पिता से ही हमें दुनिया का वास्तविक ज्ञान सबसे पहले मिलता है। मुझे मेरे घर में सबसे ज्यादा प्यार माँ से ही मिलता है और सबसे ज्यादा सुरक्षा मेरे पिताजी से। वैसे हम सभी अपने माता पिता के जीवन भर ऋणी रहते हैं। सुरेश राठौर गांधीनगर गुजरात से कहते हैं, हम तो दोनों से प्रभावित हैं। इस दुनिया में हम इतने पढ़े लिखे हुए और इतनी सारी तरक्की की, आज हम माँ और बाप के हिसाब से हैं, उनके हिसाब से हमें दुनिया में पहचान मिली है।

आप हैं हमारे पुराने श्रोता खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी। आप कहते हैं जिंदगी में माँ एवं पिता का रोल तो भगवान से भी ज्यादा है। माँ जरा भावुक होती हैं, कोई भी बात कहती हैं तो जरा प्यार से कहती हैं, समझाती हैं। पिता दिल का जरा कठोर होता है, वो खुलकर कहता

वैसे दोनों का स्थान बराबर ही है। हमारी भलाई के लिए वो सब कुछ करते हैं। हमारा तो कहना है कि जीवन भर माताजी पिताजी का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। उनके ना रहने पे भी वो हमारे आसपास रहते हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं।

दोस्तों, कल 10 अक्टूबर शनिवार 2026 को आपकी बात आकाशवाणी का विषय रहेगा। ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है। कार्यक्रम के प्रेजेंटर रहेंगे मोहम्मद परवेज और प्रोड्यूसर रहेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा दोपहर 2 बजे और प्रसारण समय रहेगा शाम 4 बजे। आप अपने कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0581251720।

अभी आपने सुना कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय था, आप अपनी माँ से ज्यादा प्रभावित हैं या पिता से। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रमों को सुनेंगे रात 8 बजे और 10 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुनेगा मुंबई केंद्र से रात 9 बजे। अब से थोड़ी देर में सुनेगा भजन संध्या में कुछ भजन। साप्ताहिक कार्यक्रम लकी 3 का समय रहेगा 5:30। कलाम शायर में आरिफ और फहीम से सुनेंगे कुछ कलाम। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी सुनेगा आबिदा फातिमा के साथ शाम 6 बजे। प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना की। इसमें कुछ खास है, आज में भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस और विश्व डाक दिवस के विषय में जानकारी दी जाएगी। साथ में ही होगा नजराना ए शाम। ग्राम जगत सुनेंगे किशन पाल भैया के साथ शाम 7 बजे। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। इसमें आप चर्चा सुनेगा, विषय रहेगा शारदीय नवरात्रों की तैयारी। साथ ही होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में, जिसका विषय रहेगा गांव के प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ती का दायित्व। आशा कार्यकात्री खेमलता से कन्हैया की बातचीत। साथ में होंगे लोकगीत। IVRI इज्जत नगर बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि पाठशाला का समय रहेगा 7 बजे। इसमें आज का विषय रहेगा जैविक डेयरी फार्म से उद्यमिता के प्रमुख अवसर। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर अनूप चौहान। आपसे बातचीत करेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव। अनुरोध गीत सुनिएगा शाम 7:31 पे।

हमारी हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:50 पे। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम रिले किए जाएंगे 5:50 पे, 11:30 पे, रात 8 बजे और 10 बजे। समाचार प्रभात सुनिएगा सुबह 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को सुनेगा मुंबई केंद्र से सुबह 9 बजे 9:45 पे, दोपहर 2:30 पे और रात 9 बजे। नमस्ते बरेली सुनेंगे शीशपाल राजपूत के साथ सुबह 8:15 पे। लोकगीत का समय रहेगा 8:45, आपकी पसंद 10 बजे, सब रंग 11 बजे। अनुरोध गीत का समय रहेगा दोपहर 1 बजे। जनमंच में विशेष

रहेगा पारिवारिक सामंजस्य में माता पिता की भूमिका। प्रतिभागी रहेंगे किरण कुमारी और अर्जुन सैनी। समय रहेगा 2 बजे। हेलो बरेली सुनिएगा 5:30 पे। मोहम्मद परवेज के साथ सुनिएगा शाम 4 बजे आपकी बात आकाशवाणी के साथ, जिसका विषय रहेगा ऐसा कोई रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत दूर होकर भी दिल के बहुत करीब है। भजन संध्या सुनिएगा कुछ भजन शाम 5:05 पे। युवाणी सुनेगा वैभव मिश्रा के साथ शाम 6 बजे, प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना की। किसान वाणी सुनेंगे बहन पूनम और भैया सुरेंद्र पाल के साथ 6:30 पे, प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। IVRI जतनगर बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि पाठशाला का समय रहेगा 7 बजे। रेडियो हेल्पलाइन सुनिएगा 7:31 पे, विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। कार्यक्रम में पहला भजन है ये, आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं भजन संध्या में कुछ भजन। कार्यक्रम का पहला भजन है अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: कार्यक्रम का अगला भजन है अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: कार्यक्रम में अंतिम भजन है हरिओम शरण और साथियों के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या में कुछ भजन। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों

0: के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम लकी 3। कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज जो पहला कमेंट हमने शामिल करा है वो है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान और उनकी छोटी बहन शहनाज खान का। आप कहते हैं, खुदा तूने लाखों की तकदीर सवारी है, खुदा तूने लाखों की तकदीर सवारी है, मुझे दिलासा तो दे कि अब तेरी बारी है। मैं सलमान खान की फिल्में बहुत देखता हूं, वो हमारे फेवरेट एक्टर हैं। आपसे गुजारिश है कि गर मूवी का ट्रैक हम तुमको निगाहों से सुना दीजिए। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये ट्रैक।

इंदिरा कॉटेज, तलीटाल, नैनीताल से मोहन सिंह रावत जी लिखते हैं। रिश्ते हमेशा जन्मजात नहीं होते, कई बार हम अनजान अपरिचित लोगों से भी ऐसे रिश्ते बना लेते हैं जिसकी नींव सिर्फ आपसी प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। रिश्तों में यदि पवित्रता और ईमानदारी हो तो ये रिश्ते खून के रिश्ते से कहीं अधिक गहरे और प्रगाढ़ होते हैं। जिंदगी में इस अनजान सफर में एक ऐसे हमसफर की तलाश हर किसी को रहती है जो जिंदगी के टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों में साथ निभा सके। इस अनजानी राह में कितनी ही मुश्किलें सामने क्यों ना आए, यदि किसी का साथ है तो मुश्किल राह भी आसान सी लगने लगती है। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, उसी तरह इंसानी फितरत भी है। आप किसी पे यकीन करें और वो सरेराह दगाते जाए, जिसके साथ जिंदगी भर का साथ निभाने की कस्में खाई हो, जिसके साथ जिंदगी में रंग भरने के लिए अनेक ख्वाब देखे हों, वही उन्हीं ख्वाबों को चकनाचूर कर वही मझधार में साथ छोड़ दे। वफा का सिला बेवफाई से मिले तब शायद दुनिया के हर रिश्ते से विश्वास सा उठ जाता है। इन्हीं एहसासों को समेटे 1970 में प्रदर्शित फिल्म पूरब और पश्चिम का मुकेश जी द्वारा गाया गीत जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मुझे बेहद पसंद है। गीत को शब्द दिए हैं इंदीवर ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी कहते हैं, फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माएं। इस गाने की खासियत है कि इस गाने में रेडियो स्टेशन दिखाया गया है और ये दर्शाया गया है कि अगर हमें अपने दिल की आवाज किसी के कानों तक पहुंचानी हो तो रेडियो से बेहतर कोई साधन नहीं है। वही इस गाने में दिखाया गया है, इसलिए हमें ये गीत बहुत पसंद है।

0: लकी थ्री। अभी आपने सुना ये साप्ताहिक कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं कलाम ए शायर में आरिफ और फहीम से कुछ कमाल कलाम।
1: दोस्तों पेश खिदमत है आज कलाम ए शायर और इसमें मैं फहीम दानिश बरेली से और मेरे साथ हैं भाई आरिफ आजाद साहब शीशगढ़ से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उदास चेहरे पे ये जो हंसी सजाली है, उदास चेहरे पे ये जो हंसी सजाली है, पहाड़ काट के समझो नदी निकाली है।
2: वाह वाह वाह।
1: उदास चेहरे पे ये जो हंसी सजाली है, पहाड़ काट के समझो नदी निकाली है। बता रही थी ये उसकी भरी भरी आंखें, बता रही थी ये उसकी भरी भरी आंखें, मेरे बगैर वो अंदर से कितना खाली है। और मैं दोस्ती को फकत दोस्ती समझता हूँ, मैं दोस्ती को फकत दोस्ती समझता हूँ, वो दोस्ती को मोहब्बत समझने वाली है। और ये शेर देखें कि तुम्हें तो हाथ से बस हाथ छोड़ देना है, तुम्हें तो हाथ से बस हाथ छोड़ देना है, हमारे हाथ से दुनिया फिसलने वाली है।
2: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा शेर।
1: और ये भी देखें कि हमारे वास्ते कुछ भी नहीं मिला उसमें, हमारे वास्ते कुछ भी नहीं मिला उसमें, सुकून की जेब बड़ी देर तक खंगाली है।
2: बहुत अच्छा है, बहुत
1: शुक्रिया। और ये गजल और देखें कि मुझको दुनिया के साथ चलना है, मुझको दुनिया के साथ चलना है, इसलिए खुद से बच निकलना है।
2: आए, आए, आए।
1: और एक मतलब ये देखें कि अपने साये के साथ चलना है,
2: अपने साये के साथ
1: चलना, अपने साये के साथ चलना है, खुद ही गिरना है, खुद संभलना है।
2: आए, आए, आए। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा।
1: हर किसी से उसी की बनती है,
2: हर किसी से उसी की बनती है,
1: हर किसी से उसी की बनती है, जिसकी फितरत में रंग बदलना है।
2: इसकी फितरत में रंग बदल।
1: और शेर देखें कि अपनी किस्मत में इश्क है ही नहीं, अपनी किस्मत में इश्क है ही नहीं, अपनी किस्मत में हाथ मलना है। शेर देखें कि रोज सूरज ये सोचता होगा,
2: रोज सूरज ये सोचता,
1: रोज सूरज ये सोचता होगा, रात से कैसे बच निकलना है।
2: वाह वाह।
1: और एक शेर देखें कि उसने नंबर बदल लिया अपना, उसने नंबर बदल लिया अपना, अब हमें करवटे बदलना है। गजल और देखें कि अगर चाहते हो लहजे से खुशबू निकल पड़े, अगर चाहते हो लहजे से खुशबू निकल पड़े, लाजिम है फिर जबान से उर्दू निकल पड़े। और पूछा है माने फोन पे कैसे हो मेरे लाल,
2: पूछा है माने फोन पर कैसे हो मेरे,
1: पूछा है माने फोन पे कैसे हो मेरे लाल, इतनी जरा सी बात पे आंसू निकल पड़े।
2: वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: पूछा है माने फोन पे कैसे हो मेरे लाल,
2: वाह वाह,
1: इतनी जरा सी बात पे आंसू निकल पड़े। और तस्वीर उसकी सीने पे रख कर मैं सो गया,
2: तस्वीर उसकी सीने पे,
1: तस्वीर उसकी सीने पे रख कर मैं सो गया, तस्वीर से लगा मुझे बाजू निकल पड़े। और वीरान करके रात को महताब चल दिया,
2: वीरान करके रात को महताब चल,
1: वीरान करके रात को महताब चल दिया, फिर तीरगी मिटाने को जुगनू निकल पड़े।
2: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत उम्दा।
1: और तन्हाइयों के बाद भी तन्हा नहीं थे हम,
2: तन्हाइयों के बाद भी,
1: तन्हाइयों के बाद भी तन्हा नहीं थे हम, एक दर्द साथ साथ था जिस्सू निकल पड़े।
2: वाह वाह वाह।
1: और हाथों से घिस रहा हूँ मैं माथे की हर लकीर, हाथों से घिस रहा हूँ मैं माथे की हर लकीर, ऐ काश इस चराग से जादू निकल पड़े।
2: है, क्या मिसरा है, जादू निकल पड़े।
1: उस गुलपरी के हाथ लगाने की देर है,
2: उस
1: गुलपरी के हाथ लगाने की देर है, कागज के सूखे फूल से खुशबू निकल पड़े।
2: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा।
1: और एक गजल ये भी देखें कि सारी दुनिया से किया ऐसे किनारा हमने,
2: क्या गजल छड़ी, वाह वाह।
1: सारी दुनिया से किया ऐसे किनारा हमने, अपना टूटा हुआ हर ख्वाब सवारा हमने।
2: वाह वाह।
1: और एक मतलब ये भी देखें कि रह के तन्हा भी किसी को ना पुकारा हमने, रह के तन्हा भी किसी को ना पुकारा हमने।

0: अपने हर दर्द को कागज पे उतारा हमने।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और हमको आया ही नहीं चेहरे बदलने का हुनर।
1: हमको आया ही नहीं
0: वा, हमको वा, आया ही नहीं चेहरे बदलने का हुनर। एक चेहरे पे किया बरसों गुजारा हमने।
1: वाह वाह वाह वा, क्या शेर है। वाह वाह बहुत।
0: हमको आया ही नहीं चेहरे बदलने का हुनर।
1: हमको आया ही नहीं
0: एक चेहरे पे किया बरसों गुजारा हमने। और
1: बहुत अच्छा शेर।
0: एक दीवार से हर बार ही टकराते रहे। एक दीवार से हर बार ही टकराते रहे। एक ही शख्स को हर बार पुकारा हमने।
1: वाह वाह वाह।
0: और देखें घर की इस नींव को रखने में है शामिल दोनों। घर की इस नींव को रखने में है शामिल दोनों। तुमने घर ईंट लगाई है तो गारा हमने।
1: वाह वाह वाह।
0: घर की इस नींव को रखने में है शामिल दोनों। तुमने घर ईंट लगाई है तो गारा हमने। और ये शेर देखें अरे भाई की। अब उसी शख्स ने आंखों को दिए हैं आंसू। अब उसी शख्स ने आंखों को दिए हैं आंसू। जिसको समझा था कभी आंख का तारा हमने।
1: वाह वाह वाह बहुत उम्दा।
0: और देखें कि एक तो इश्क किया और किया एक तरफा।
1: आए,
0: आए। एक तो इश्क किया और किया एक तरफा। अपने पांवों को कुल्हाड़ी पे है मारा हमने।
1: वाह वाह वाह बहुत उम्दा।
0: और
1: बहुत
0: ऐसे रखा है मोहब्बत की मोहब्बत का भरम।
1: ऐसे रखा है मोहब्बत की मोहब्बत।
0: ऐसे रखा है मोहब्बत की मोहब्बत का भरम। खेल मैदान में खुद जान के हारा हमने।
1: वाह वाह वाह।
0: गजल देखें कि वो सांवली सी लड़की जो पर्दा नशीन है।
1: बहुत
0: वो सांवली सी लड़की जो पर्दा नशीन है। इन बेहया हसीनों से ज्यादा हसीन है। और हम जैसे बदतमीज से करती है आप जी। कमजर्फ नहीं यार वो लड़की जहीन है। और अपने नसीब में है कहाँ ऐन शीन काफ। अपने नसीब में है कहाँ ऐन शीन काफ। अपना नसीब काफ अलिफ और शीन है। और हम जैसे मुफलिसों को मोहब्बत है इस तरह।
1: हम जैसे मुफलिसों को मोहब्बत है इस तरह।
0: हम कम नजर हैं और वो लिखा महीन है।
1: अच्छा
0: हम कम नजर हैं और वो लिखा महीन है। और एक बाप है जो कहता है बेटा बिगड़ गया। एक बाप है जो कहता है बेटा बिगड़ गया। एक माँ को अपने लाल पर फिर भी यकीन है।
1: बहुत अच्छा
0: शेर देखें कि एक तो हसीन और फिर गुस्सा गुरूर भी। एक तो हसीन और फिर गुस्सा गुरूर भी। दिल तोड़ने की यार वो उम्दा मशीन है।
1: बहुत उम्दा बहुत अच्छा बहुत फहीम भाई बहुत अच्छा कलाम आपने पेश किया। मैं आरिफ आजाद। शेर देखें कि जिंदगी तेरे सवालात से लड़ते लड़ते। जिंदगी तेरे सवालात से लड़ते लड़ते। तंग में आ गया हालात से लड़ते लड़ते।
0: क्या बात।
1: जिंदगी तेरे सवालात से लड़ते लड़ते। तंग में आ गया हालात से लड़ते लड़ते। बेगुनाहों को भी जेलों से निकालो वरना।
0: गुनाहों को भी जेलों से निकालो वरना।
1: न जाने क्या से क्या ये दुनिया वाले छीन लेते हैं।
0: न जाने क्या से क्या
1: ये दुनिया वाले छीन लेते हैं। कभी रोटी कभी मुंह से निवाले छीन लेते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: अंधेरों से निकलने ही नहीं देते कभी बाहर। यहाँ वो लोग भी हैं जो उजाले छीन लेते हैं।
0: क्या बात है।
1: बहुत शुक्रिया के। और देखें मतलब एक शेर के। करती नहीं है आजकल ये प्यार लड़कियाँ। करती नहीं है आजकल ये प्यार लड़कियाँ। दौलत के बस नशे में हैं बीमार लड़कियाँ।
0: वाह वाह।
1: सदका उतारें जान का शुक्रे खुदा करें। सदका उतारें जान का शुक्रे खुदा करें। जिस जिसको मिल गई हैं वफादार लड़कियाँ।
0: क्या बात है।
1: जिस जिसको मिल गई हैं वफादार लड़कियाँ। एक मतलब दो तीन शेर देखें कि रंग बदलें बदलने वाले लोग। रंग बदलें बदलने वाले लोग। साथ सच के नहीं हैं चलने वाले लोग। रंग बदलें बदलने वाले लोग। साथ सच के नहीं हैं चलने वाले लोग। खुद ही गुमनामियों में डूब गए। खुद ही गुमनामियों में डूब गए। मेरी शोहरत से जलने वाले लोग।
0: क्या बात है। वाह वाह वाह।
1: मेरी शोहरत से जलने वाले लोग। और आंखें आंखें सूरज को वो दिखाते हैं जो हैं मिट्टी पे चलने वाले लोग।
0: वाह वाह। क्या बात।
1: आंखें सूरज को वो दिखाते हैं जो हैं मिट्टी पे चलने वाले लोग। और एक दिन डसके मानेंगे आरिफ। एक दिन डसके मानेंगे आरिफ। आस्तीनों में पलने वाले लोग।
0: क्या बात है। वाह।
1: एक दिन डसके मानेंगे आरिफ। आस्तीनों में पलने वाले लोग। शेर देखें के एक मतलब दो शेर के। जिंदगी की ये बताओ क्यों तरफदारी करें। जिंदगी की ये बताओ क्यों तरफदारी करें। जिंदगी जिंदगी है बेवफा और हम वफादारी करें।
0: वाह,
1: जिंदगी की ये बताओ क्यों तरफदारी करें। जिंदगी है बेवफा और हम वफादारी करें। जिंदगी से इश्क करके कुछ नहीं मिल पाएगा, मौत को महबूबा मान।

0: ने मौत
1: मौत
0: से
1: से
0: यारी
1: यारी करें।
0: करें। क्या बात है, वाह यार,
1: बेहतर शेर।
0: मौत को महबूबा माने, मौत से यारी करें। और ये शेर बतौर खास देखें फहीम भाई के, सिर्फ दुनिया
1: बड़े
0: ही कमाने में यहाँ उलझे हैं लोग,
1: सिर्फ दुनिया ही
0: सिर्फ
1: कमाने में
0: दुनिया ही कमाने में यहाँ उलझे
1: उलझे हैं
0: हैं
1: लोग,
0: लोग, इनसे कह दो आखिरत की कुछ
1: कुछ
0: तो
1: तो तैयारी
0: तैयारी
1: करें।
0: करें।
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
0: बहुत
1: उम्दा।
0: नवाजिश। एक मतलब दो तीन शेर देखें कि हवस के तुम पुजारी हो गए हो,
1: क्या बात है,
0: हवस
1: हवस
0: के
1: के तुम
0: तुम
1: पुजारी हो गए
0: पुजारी
1: हो,
0: हो गए हो, मगर दिल से भिखारी हो गए हो।
1: है क्या बात है।
0: हवस के तुम पुजारी हो गए हो, मगर दिल से भिखारी हो गए हो। सितम हम पर तुम्हारे इसलिए हैं, सितम हम पर तुम्हारे इसलिए हैं, जरूरत तुम हमारी हो गए हो,
1: है क्या बात है।
0: जरूरत तुम हमारी हो गए हो। सुकूने दिल हुआ करते थे पहले, मगर
1: सुकूने
0: अब
1: दिल,
0: बेकरारी हो गए हो।
1: वाह
0: सुकूने दिल हुआ करते थे पहले, मगर अब बेकरारी हो गए हो। और ये शेर बतौर खास देखें कि मिलोगे कब कहाँ किस भेष में तुम,
1: मिलोगे कब कहाँ किस भेष में तुम,
0: मिलोगे कब कहाँ किस भेष में तुम। सुना है इच्छाधारी हो गए हो,
1: वाह वाह वाह
0: सुना
1: वाह
0: है इच्छाधारी हो गए हो। लगा दी दाव पर इज्जत गवा दी, लगा दी दाव पर इज्जत
1: इज्जत।
0: गवा दी, बहुत उम्दा जुआरी हो गए हो, बहुत उम्दा जुआरी हो गए हो। और एक गजल का मतलब और दो तीन शेर और देखें अगर इजाजत हो तो।

0: के लिए। बहुत शुक्रिया।
1: अभी आपने सुने कलामे शायर में आरिफ और फहीम से कुछ कलाम। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 6 बजे हैं। अब आप सुनिएगा युवा साथियों का पसंदीदा प्रोग्राम।

हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हमसफर आबिदा फातिमा, लेकर आ चुकी हूँ आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। और जैसा कि साथियों आपको मालूम है कि आज हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट नजाना शाम भी होता है, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं खूबसूरत खूबसूरत सी गजलें। तो ये सेगमेंट भी हमारा होगा और हम आपसे बहुत सारी और भी बातें करने वाले हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और साथियों, आपके कानों में जोश और दिल में देशभक्ति का करंट दौड़ाने आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त आबिदा फातिमा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं देश के उन जाबाजों की जिनका रुतबा ही अलग लेवल का है। आज तारीख 9 अक्टूबर और आज पूरा देश गर्व से मना रहा है टेरिटोरियल आर्मी डे, यानी कि प्रादेशिक सेना दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिवस कौन सा होता है, तो आइए हम आपको बताते हैं। सदियों ये दिवस हमारी रेगुलर आर्मी के पीछे की वो चट्टान जैसी ताकत है जिसे कहते हैं सिटीजन्स आर्मी, यानी कि नागरिक सेना। इसका मतलब समझते हैं, आप दिन में डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वकील होते हैं, यहाँ तक कि क्रिकेटर भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही देश को आपकी जरूरत पड़ी आप वर्दी पहनकर सरहद पर बंदूक तान सकते हैं। जी हाँ, और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 9 अक्टूबर 1949 को भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया था। तब से लेकर आज तक हर साल 9 अक्टूबर को टीए का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इसका मनाने का जो मोटो है, जो मकसद है साथियों, वो सावधानी व शूरता है। और जानते हैं आप, सेलिब्रिटी कनेक्शन भी है। जी हाँ साथियों, इस दिवस से हमारे कैप्टन कूल एमएस धोनी, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा और कई ऐसे ही बड़े नाम इसी टेरिटोरियल आर्मी में मानद अफसर की वर्दी शान से पहनते हैं। और इनका असली काम क्या है? इनका असली काम है युद्ध के वक्त, अगर युद्ध का वक्त है, बॉर्डर की सुरक्षा हो या फिर बाढ़ तूफान जैसी आपदाएं हो, जब जब जरूरत पड़ती है ये जाबाज अपने नॉर्मल काम धंधे छोड़कर देश के लिए सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन दिल पर हाथ रखिए और टेरिटोरियल आर्मी के इन सुपर हीरोज को एक जोरदार सैल्यूट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, मुस्कुराते रहिए और गर्व से कहिए जय हिंद।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें।
1: ओ।
0: बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में, और आप बने अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ। और साथियों, लाल रंग का वो गोल डिब्बा और डाकिया बाबू की घंटी, याद है ना वो चिट्ठियों वाला जमाना? जी हाँ, आज वही यादें आइए ताजा करने का दिन है, तो ताजा करते हैं क्योंकि आज है विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे। हर साल 9 अक्टूबर को पूरी दुनिया में डाक सेवाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथियों, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो 9 अक्टूबर 1974 को स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1969 में टोक्यो में आयोजित UPU कांग्रेस में इस दिन को आधिकारिक तौर पर विश्व डाक दिवस घोषित किया गया। ईमेल और व्हाट्सएप के इस दौर में भी डाक सेवा सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दूर दराज के गांवों तक पार्सल, जरूरी सरकारी दस्तावेज, बैंकिंग सेवाएं और दवाइयां पहुंचाने में भी पोस्टल नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। भारत का पोस्टल सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर जैसलमेर के रेगिस्तान तक हर कोने को जोड़ता है। इस दिन के लिए आइए हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार का सदाबहार गाना, डाकिया डाक लाया।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और साथियों, वक्त है हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट नजराना शाम का, तो आइए नजराना शाम की सुनते हैं ये पहली प्यारी पेशकश।

और साथियों प्रोग्राम में अब वक्त है आज के सवाल का। और सवाल हमने आपसे पूछा है कि 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में होंगे। लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका। और सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, गंगा सिंह रावत, बीआई धाकड़, जॉन डी कैस्ट्रो, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, वेदराम कैलाश, पिंकी लाल, मोहम्मद अंसारी, नुजहत फातिमा और हमारे अन्य सभी साथी।

हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली। हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए अपने दोस्त आबिदा को इजाजत इस उम्मीद के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

युववाणी। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम आबिदा फातिमा के साथ। प्रस्तुति थी गौरव सक्सेना की। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं ग्राम जगत किशन पाल भाई के साथ। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके भैया कन्हैया की ओर से राम राम। श्रोताओं, आज हम आपको मनपसंद कार्यक्रम लेकर के आपके रेडियो सेट के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे शरदकालीन नवरात्रों की तैयारी और साथ ही मनोरंजन कराएंगे एक लोकगीत के माध्यम से और चलेंगे एक गाँव की ओर अपने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में। श्रोताओं, ये जो अश्विन मास है इसमें हम शरदकालीन नवरात्रि जो आते हैं उनकी अपने घर की साफ़ सफाई बहुत सारे कामकाज करते हैं और साथ ही साथ में अगर बात करें तो बहुत सारे त्यौहार इस माह में अंग्रेजी वर्ष अक्टूबर की बात करी जाए तो आने वाले हैं, उनको देखत हुए हमें अपनी घर की जो है और आसपास की साफ़ सफाई करनी चाहिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में प्रारंभ होकर के 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र शारदीय नवरात्र कहे जाते हैं। 9 को मतलब होता है साप्ताहिक, अगर बात करें तो 9 यानी नव में होते हैं 9। और इसके अतिरिक्त अगर बात करी जाए तो जो शरदकालीन नवरात्रि हैं उनमें दिन जो है हमारे वे छोटे होने लगते हैं और मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। प्रकृति सर्दी की चादर ओढ़ करके हमें सुकड़न को एहसास कराती है। ऋतुओं के परिवर्तन को जो प्रभाव अगर जानो जाए तो हमारे शरीर पर पड़नो इन्हें नवरात्रिन से शुरू हो जाता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही इन दिनों को जो 9 दिन उपवास के होते हैं उनको विधि विधान से मनाया जाता है। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की आराधना करी जाती है और माता के इन 9 रूपों की बात करें तो हम जो देवियों के अनेक रूप हैं उनकी उपासना करके उनके तीर्थ स्थलन की हमें याद आती है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि रखे जाते हैं और चैत मास के में जो शुक्ल पक्ष होता है बामे 9 दिन नवमी तक नवरात्रि मनाए जाते हैं और उसी तरीका से ठीक शरदकालीन में भी ये नवरात्रि 9 दिन के मनाए जाते हैं। तो कोई बात ना, कल के बाद अगलो दिन जो आवे वो बामे हम नवरात्रि की स्वागत करेंगे और अपने जो श्रोता हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि त्यौहार चाहे कोई भी आए लेकिन उसके आगमन से पहले जरूरी है कि हम अपने घर की अपने आसपास की साफ सुथराई करें जिससे कि पता लगता है कि भैया हाँ यहाँ पर कुछ होने वालों है। जी हाँ, यही तो प्रतीक हैं हमारे जो त्यौहार हमारे घर की और हमारे आसपास की सुंदरता बढ़ाने के। बातचीत आपसे चलिए रही है नवरात्रि पर, तो भैया जहाँ नवरात्रि आनो शुरू हो गए हैं तो अब हम स्वागत कर लें इस लोकगीत के माध्यम से आने वाले नवरात्रि।

0: लग गए होंगे माता रानी के स्वागत के लिए, सब लोग तैयार होंगे। और अब बात करें जो अपने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम है, तो अब देर न करते हुए चलते हैं काऊ गांव की ओर और बात करते हैं।
1: आज के क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं एक गांव में, और आप जानते हैं कि गांव में पहुंच करके हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ नई जानकारी जुटा करके लाएं। तो एक मंदिर के पास में हम इस गांव में पहुंचे हैं। यहां पर एक मैडम एक रजिस्टर इनके हाथ में दिख रहा है लेकर के, घूमती हमें गलियों में दिखाई दी। तो आज के क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में आज हम किस गाँव में हैं ये जान लेते हैं इन्हीं की जुबानी, और ये इनका रजिस्टर क्या है, ये कौन है, तो खुद इनसे ही जानते हैं इनका परिचय। मैडम आज हम आए हैं तो ये गांव कौन सा है?
2: ये ग्राम खजुआई है।
1: आपका नाम क्या है?
2: खेमलता।
1: आप ये जो रजिस्टर लेकर के घूम रही हैं, इसमें कुछ हम देख रहे हैं लिखा हुआ है भारत स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर, तो आप कौन है?
2: आशा कार्यकर्ती हूँ।
1: अच्छा, तो आप इस गांव की आशा कार्यकर्ती हैं। अपने श्रोताओं के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि गांव में जो आशा कार्यकर्ती रखी गई हैं, उनका काम मुख्य क्या है?
2: आशा कार्यकर्ती का यही काम है 1000 की आबादी पे देखना, मेन काम गर्भवती पे देखना
1: जी,
2: गर्भ का पता लगते ही उसके टीडी का टीका लगवाना
1: जी,
2: और बच्चों की देखभाल करना, बच्चों के टीका पूरे 16 महीने तक पूरे टीका लगवाना
1: जी जी जी,
2: 16 से बाद फिर 5 साल पे लगवाना
1: जी
2: टीडी वाला, और फिर 11 साल पे लगवाना।
1: टीकाकरण की पूरी जो देखरेख है वो आपके हिसाब से होती है। आपने कहा था गर्भवती महिलाओं की देखरेख भी आपके द्वारा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम जानकारी के अभाव में बहुत सारी समस्याएं महिलाओं में पैदा होती हैं, क्योंकि साफ सफाई से लेकर के और उनके स्वास्थ्य के प्रति जो जिम्मेदारियाँ चाहिए होती हैं, कहीं ना कहीं वो जानकारी के अभाव में या सुविधा के अभाव में वंचित रहती हैं। आप आशा कार्यकर्ती हैं, आपकी जिम्मेवारी है, चूंकि आप इस गांव के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति आपका काम है, तो यहां पर हम अपने सुनने वालों के लिए आपकी जुबानी जानना चाहेंगे कि अगर आशा कार्यकर्ती गांव में होती हैं तो जो गांव की गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी देखरेख किस तरीके से करती हैं और क्या क्या उनके दायित्व होते हैं?
2: शुरुआत में पहले तो नई नई बहू आती है उसके पास जाके अपनी पहचान कराते हैं
1: जी,
2: कि मैं आशा कार्यकर्ती हूँ, फिर उससे बताते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, जैसे नई नई शादी होती है कुछ तो शुरू से ही गर्भ ठहर जाता है तो उनसे पता लगाते हैं, इधर उधर की बातें करके डायरेक्ट नहीं बताती हैं तो उधर उधर की बातें करके उनसे पूछते हैं
1: जी,
2: फिर उनके गर्भ के पता लगते ही, अगर वो बताती हैं तो गर्भ के पता लगते ही उनके टीडी का टीका लगवाते हैं।
1: ठीक, वहीं पर आज भी गांव में लोगों की ये सोच रहती है, शर्मिंदगी रहती है, कोई समस्या होती है तो उसको बताने की जगह छुपाते हैं, ऐसे भी आपके सामने कभी आया है कि लोग जब आप गई हैं तो बताने से इतराई हैं या फिर बताना ना चाहा हो?
2: हाँ, कुछ महिलाएं शर्माती हैं
1: जी,
2: नहीं बताना चाहती हैं तो अगल बगल में एक दूसरे से पता लगाती हैं, वो सास नंद घर में होती हैं तो भी बताती हैं
1: जी,
2: उनसे पता लगता है, बहुत सी नई नई बहू होती नहीं बताना चाहती हैं
1: जी। जब आपको पता लगता है तो आप उनको कहीं डांटती तो नहीं है?
2: नहीं डांटते, प्यार से बात करते हैं उनसे, प्यार से पता लगाते हैं, उनकी LMP पता लगाते हैं
1: जी। फिर जब आपकी बातचीत उनसे होने लगती है तब आप जब घर में जाती हैं कोई जानकारी के लिए तो फिर तो नहीं शर्माती हैं वो?
2: नहीं शर्माती हैं, जब अगल बगल में पता चल जाती है कि ये गर्भवती हैं तो उनसे हम डायरेक्ट बोलते हैं
1: जी,
2: फिर भी बताती हैं अपने बारे में
1: जी। लोग आपकी बातचीत को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, जो लोग अपनी चाहे कोई बीमारी हो या रोग हो उसको छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, कोई समस्या दिक्कत होती है उसको भी नहीं बताना चाहते हैं, छुपाते हैं,
2: नहीं होता,
1: तो जो लोग छुपाते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के माध्यम से?
2: उनको सुझाव देते हैं कि ज़्यादा अगर अभी तो कम मान लो बीमारी के बारे में तुम छुपाओगे तो ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी तो तुम्हें को खतरा है, अगर हल्के में तुम हल्की थोड़ी बीमारी में इलाज पा लोगे तो सही, इसी में संभव अच्छा है
1: जी। आपने कहा कि गर्भवती की देखरेख के अलावा और कोई काम होता है आपका?
2: हाँ, बच्चों के टीके लगवाते हैं।
1: अच्छा, ये जो बच्चों के टीके लगवाते हैं गांव में खास करके किस किस दिन लगते हैं?
2: महीने पहले बुध को टीकाकरण होता है सेंटर पे
1: जी, महीने के पहले बुधवार को टीकाकरण होता है। गांव में लोगों को कैसे पता लगता है कि आज टीकाकरण हो रहा है, इस तारीख में होगा, कैसे जानकारी होती है?
2: जाते हैं गाँव में, घर घर जाते हैं बच्चों को बुलाने, गर्भवती हाँ मैं जाती हूँ, घर घर जाते हैं, जिन बच्चों के टीका लगते हैं उनकी ड्यू लिस्ट बनाती हूँ, जो गर्भवती के टीका लगने होते हैं वो रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, उसी हिसाब से उनके घर जाते हैं, बुलाते हैं गर्भवती को।

मैया पूजन चली हरसाए रसीली मालिनिया, जाए अपने स्वर सजाए है इस लोकगीत के लिए इंदु शर्मा ने। और हमें उम्मीद है आपको जो लोकगीत पसंद आओ होगा, क्योंकि हम और आप सभी लोग कोई भी त्यौहार हो बाकी आन से पहले ही बड़ी उम्मीद और आशा के साथ घर में तैयारी शुरू कर देते हैं। तो भैया हमारे लिए तो कल को ही दिन बीच में बचो है, तो हम आशा करते हैं सभी लोग आने वाले नवरात्रि की तैयारी में

0: बच्चों के।
1: जी, तो जब टीकाकरण की शुरुआत हो जाती है, क्या बच्चे का जन्म हो उससे पहले कहाँ तक देख रेख होती है आपकी?
0: शुरू से 9 माह तक गर्भवती पे ध्यान देते हैं, उसको समझाते हैं
1: जी
0: कि जहाँ तक है तहाँ तुम संस्थागत डिलीवरी कराओ, घर पे बच्चा होना नहीं चाहिए। घर पे बच्चे की डिलीवरी होने से बीमारियाँ बहुत पैदा होती हैं, क्योंकि घर में कोई सुविधा नहीं है।
1: जी
0: अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं, वहाँ बच्चे को सब कुछ सुविधा मिलती है। अगर
1: जी
0: बच्चे में ज़्यादा धड़कन कम है तो वहाँ सही करती हैं,
1: जी
0: सही तरह से देखती हैं स्टाफ,
1: जी
0: और वहाँ पे जो BCG है तुरंत लग जाती है, और
1: जी
0: जीरो डोज है हेपेटाइटिस वो भी तुरंत 24 घंटे में लगती है। घर पे बच्चा होगा तो वो नहीं लग पाएगी।
1: जी
0: पेंटाफर्स्ट तो लगता ही 1.5 महीने बाद लगता है।
1: बिल्कुल। आपने जब टीकाकरण की बात करी तो आपने कहा कि हम घर घर से ला करके बच्चों के भी लगवाते हैं, गर्भवती महिलाओं के भी लगवाते हैं। तो ये जो टीकाकरण इतना उपयोगी है, लोग इसको लगाने से कतराते भी हैं। टीकाकरण लगवाने से हम अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे फायदा क्या होता है?
0: टीका लगने से बच्चे में बहुत बीमारी, जो टीका की वायल है जो बच्चे में अंदर पहुंचती है, वो बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत हो जाती है बच्चे की।
1: अच्छा
0: गला घोटू, TB जैसे और सारी बीमारियां, उनसे बच्चा बचा रहता है।
1: जी, यानी कि जो भविष्य में होने वाली बीमारियां हैं तो टीकाकरण से रोकी जा सकती
0: रोकी
1: है।
0: रोक
1: चूंकि गांव में लोग रहते हैं और आबादी ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को उम्मीद रहती है कि हमारी आशा बहन जी आएंगी और हमें बताएंगी कि टीकाकरण आज हो रहा है। तो हर किसी के घर पे जाना है। आपने कहा था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको टीकाकरण नियमित रूप से आप कराती हैं, तो जिस माह में जिस दिन लगता है उस दिन के लिए आप इतने लोगों को कैसे ध्यान रखती हैं कि हम उस घर पे जाएंगे, वहाँ छोटा बच्चा है, वहाँ गर्भवती महिलाएं हैं, ये कैसे ध्यान रख पाती हैं आप?
0: जो हमारा रजिस्टर होता है, ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर है, उसमें
1: जी
0: डू लिस्ट पेज होते हैं, उसमें डू लिस्ट
1: अच्छा
0: बनाते हैं, और डू लिस्ट में बच्चों को दर्ज करते हैं,
1: जी
0: गर्भवती बच्चे दर्ज करते हैं,
1: जी
0: और जो बुलाने से आ गए उनके लग गए पेंटा फर्स्ट में, और जो रह गए तो वो अगले महीने बुलाते हैं पेंटा
1: जी
0: फर्स्ट। अगले 1 महीने लगे, दूसरे महीने पेंटा सेकंड में बुलानी है उन्हें,
1: ठीक
0: फिर 2 महीने बाद फिर उन्हें 3:30 पे बुलानी है, पेंटा थर्ड लगवानी है।
1: ठीक
0: जो बाहर हैं वो रह गए, जो मिल गए उन्हें बुला लेते हैं, रजिस्टर के हिसाब से, डू लिस्ट के हिसाब से ही आगे डू लिस्ट बनाते हैं, उसी हिसाब से बुलाते हैं,
1: जी, यानी कि पूरा माहवार इसमें आप दर्ज करके रखती
0: दर्ज
1: हैं।
0: करते हैं, पूरी 1,000 की आबादी आबादी इसमें दर्ज है सब कुछ।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बड़े अच्छे तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। आज हमारी आपकी बातचीत इस गांव खजवाई में हुई और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आपका गांव है बिल्कुल गंगा के किनारे पे बसा हुआ गांव है। तो यहाँ पर हमारी आपकी बातचीत हुई तो कुछ लोग और इकट्ठे भी हो गए। ये दो बेटियाँ भी हमारी आपकी बातचीत को सुनकर यहाँ आ गई हैं, तो हम अब इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। आपको नाम कहाँ है?
2: शाली,
1: आप इसी गांव में रहती हैं?
2: हाँ,
1: ये किस ब्लॉक का गांव है?
2: 11 ब्लॉक।
1: हमारी बातचीत हो रही थी तब आप यहाँ पर आई थी। ये जो गांव है बसा हुआ, बिल्कुल गंगा की तलहटी में बसा हुआ गांव है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे, जो हमारी आकाशवाणी है उसको आप सुनती हैं?
2: हाँ सुनते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है उससे। हाँ
1: अच्छा, कार्यक्रम बढ़िया लगते हैं।
2: बहुत।
1: आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी?
2: इंटर तक।
1: आप क्या कर रही हैं?
2: अभी तो कुछ नहीं किया है, मगर सोच रहे हैं पढ़ाई करने के बारे में आगे।
1: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई जीवन के हर मोर्चे पर काम आती है। और इंटर तक आप इस गांव में पढ़ी बढ़ी हैं, तो ये बिल्कुल लोग कहते हैं कि खादर में चले जाओ तो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कम होती है। और ये जो गांव आपका हम देख रहे हैं, बिल्कुल गंगा जी की तलहटी पर बसा हुआ गांव है, और आपने इंटर करने के बाद भी आगे सोच बना कर रखी है कि हम आगे भी पढ़ेंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो और आप ही की तरह बेटियां हैं, वो संसाधन होते हुए भी, आसपास में आजकल आप देख रहे हैं स्कूल खुल गए हैं, तो संसाधन होते हुए भी पढ़ाई लिखाई की तरफ से मुंह मोड़ लेती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे?
2: ऐसा नहीं करना चाहिए और समझाना चाहिए, मतलब पढ़ाई हमारी ज़िंदगी में आजकल बहुत महत्व है पढ़ाई का, पढ़ाई
1: जी
2: के सिवा आजकल कुछ भी नहीं है।
1: बहुत अच्छे विचार आपके हैं। और एक जो बेटी और भी हैं हमारे पास में, ये भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हैं, तो आपका भी नाम जान लेते, क्या नाम आपका?
2: पूजा।
1: आप भी इसी गांव में रहती हैं?
2: हाँ
1: हम आपसे जानेंगे कि पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक करी?
2: इंटर कर रहे हैं।
1: आज संसाधनों की उपलब्धता सही है या जब तुमने पढ़ाई शुरू करी थी उस समय सही थी?
2: पहले बेकार थी लेकिन अब काफी सुधार है।
1: अच्छा, गांव क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ है पढ़ाई लिखाई की बात करें तो?
2: स्कूल पहले दूर दूर थे लेकिन अब थोड़े पास हो गए हैं।
1: यानी जो

0: जो सुलभता है वो कहीं ना कहीं बड़ी है।
1: हाँ
0: आपका गांव बिल्कुल गंगा की तलहटी में, यूं कहें गंगा जी के किनार पे बसा हुआ गांव है। आपको आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई पढ़ाई लिखाई के लिए?
1: होती
0: अच्छा,
1: थी।
0: अब सुलभता हो गई है।
1: हाँ
0: जो खासकर बेटियां हैं बात करते हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ से मुंह मोड़ लेती हैं, संसाधन होते हुए भी। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनको आप इंटर कर रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से?
1: हम कहना चाहते हैं कि वो जो लड़कियां पढ़ाई नहीं कर रही वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें या पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई का बहुत महत्व हो रहा है भावी जीवन में।
0: जी, वहीं पर खासकर अगर बेटियों की शिक्षा की बात करें तो वो आज के दौर में कितना जरूरी होता चला जा रहा है आपकी नज़र में?
1: शिक्षा लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि लड़कियां हर विभाग में आगे बढ़ रही हैं,
0: अच्छा
1: क्योंकि उन्हें बराबर का स्तर मिल रहा है।
0: जी, आज आपके कहने का मतलब है कि आज के अगर दौर को देखा जाए तो लड़कों से लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं
1: नहीं
0: है। आपने अपने विचार आज हमारे कार्यक्रम ग्राम जगत के बीच में रखे, और जो पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए कितनी ज़रूरी है ये हमारे श्रोताओं को बताया, और हम बात चलते चलते आपसे और भी जानना चाहेंगे। जो गांव क्षेत्र की खासकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का भी ये सोच रहती है कि बेटी है पराया धन है, ज़्यादा पढ़ा लिखा करके क्या करना है, इसको दूसरे के घर जाना है। वो जो माँ बाप हैं ये सोच रखते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप?
1: हम कहना चाहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और आप पढ़ाएं भी, क्योंकि लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं, उन्हें बराबर का स्तर मिलना चाहिए, और जो काम लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं।
0: जी, आपने अपने अमूल विचार आज के कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं के बीच रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने हमारा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम सुनो, और आज हम पहुँचे थे गांव खजुआई विकासखंड कियारा को, जो गाँव हो। यहाँ पर हमने आशा कार्यकर्त्री गांव में स्वास्थ्य के प्रति आशा कार्यकर्त्री का दायित्व तो इस विषय में बात करी, साथ ही जो गांव में हमारी बेटियां हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के संबंध में उनसे जानकारी ली। तो अब बात करते हैं जो हमारी शरद नवरात्रि हैं उन पर हमें क्यों मनानी चाहिए, क्योंकि ये जो शरद नवरात्रि है ये हमें अच्छाई से प्रकाश जो होता है उस पर बात करते हैं। तो अंधकार पर प्रकाश की विजय को जो प्रतीत है, और जो हमारी मातृशक्ति है उसको सम्मान करने की जो नवरात्रि त्यौहार है वो हमें प्रेरणा देते हैं। और अब बातचीत करें वास्ते पहले आपको और मनोरंजन कराए देते हैं इस लोकगीत के माध्यम से, या स्वर दे हैं समूह स्वर में।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम ग्राम जगत को समय हम अब इजाजत न दे रहे हैं कि और कोई बातचीत या चर्चा अपने इस कार्यक्रम में करी जाए। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए यहीं पर अपने भैया कन्हैया को आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए हमारी। राम राम।
1: सूरज केर कहिए जो आनंद है, सूरज केर कहिए जो आनंद है।

अभी आपने सुना ग्राम जगत किशन पाल भाई उर्फ कन्हैया भैया के साथ। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं IVRI इज्जतनगर बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि पाठशाला। विषय है

0: जैविक डेयरी फॉर्म में उद्यमिता के प्रमुख अवसर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनूप चौहान और आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और जैसा कि आपको पता है इस कार्यक्रम में हम हर बार कोई न कोई नया विषय लेकर आते हैं जिससे आप कुछ सीख सकें। जैसे स्कूल में क्लास में सिखाया जाता है वैसे इस पाठशाला में हमारे बीच एक वैज्ञानिक आते हैं और वो आपको खेती किसानी से संबंधित कुछ जानकारी देते हैं, कुछ नए विषय पे कुछ सिखाते हैं आपको। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे आप कुछ अच्छा सीखेंगे, यही उम्मीद है। तो आपको विषय बता देते हैं जल्दी से। विषय है जैविक डेयरी फार्मिंग में उद्यमिता के प्रमुख अवसर। जी हाँ, जैविक डेयरी फार्मिंग करके किस तरह से बिजनेस करेंगे आप लोग और उससे किस तरह ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, इसी पे हम जानकारी लेंगे। और जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनुज चौहान जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
2: जी,
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें आप प्रधान वैज्ञानिक हैं आईवीआर बरेली में और एलपीएम सेक्शन में आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे जो हमारा आज का विषय है कि ये जो ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग ये है क्या चीज।
2: ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग यानी जैविक डेयरी फार्मिंग पशुपालन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें रसायन, एंटीबायोटिक्स और सिंथेटिक हार्मोन का उपयोग पूरी तरह वर्जित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो उपभोक्ता हैं उन्हें 100% शुद्ध और रसायन मुक्त दूध व डेयरी उत्पाद प्रदान करना है। अगर हम देखें कि ये पारंपरिक डेयरी फार्मिंग से कैसे अलग है,
1: जी जी,
2: तो उसके मुख्य पहलू हैं। पहला पहलू है 100% जैविक आहार का उपयोग, यानी पशुओं को जो आहार खिलाया जाना है, जो चारा, जो साइलेज और दाना, वो पूरी तरह प्राकृतिक होना चाहिए। चारा उगाने में किसी तरह के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
1: जी जी।
2: दूसरा मुख्य पहलू है प्राकृतिक चिकित्सा, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं और हार्मोन हैं उनका इस्तेमाल नहीं होना है। बीमारियों के उपचार के लिए एलोपैथी या एंटीबायोटिक्स की बजाय आयुर्वेद, हर्बल और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि कोई पशु अगर गंभीर है तो उसे एंटीबायोटिक दी जा सकती है, लेकिन कुछ समय तक उसका दूध जैविक नहीं कहलाएगा। इसके साथ साथ एक है मुक्त आवास प्रणाली।
1: अच्छा।
2: यानी फ्री रेंज हाउसिंग, जिसमें पशुओं को 24 घंटे खूंटे से बांधकर नहीं रखा जाता, उन्हें चरने, धूप लेने और आजाद रूप से घूमने के लिए हवादार वातावरण दिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें बेहतर रहता है कि जो हमारी देसी नस्लें हैं जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर या जो अन्य देसी नस्लें हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है।
1: जी, और जैसा कि जो हमारी पारंपरिक खेती है उसमें भी हमारे कई सारे किसान भाई कुछ इस तरह का काम करते भी हैं, मुक्त आवास जैसा कि इसमें है, तो वो बहुत जरूरी भी होता है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर जैविक डेयरी शुरू कर दे कोई और इसमें बिजनेस करना चाहे तो उसमें बिजनेस आइडिया क्या क्या है, कौन कौन से अवसर है जिससे हमारे किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं।
2: अभी लोगों में जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है वो बहुत बढ़ गई है। वो चाहते हैं कि उन्हें रसायन मुक्त या किसी भी तरह के कृत्रिम चीजों से मुक्त ही खाद्य पदार्थ मिले। तो ऐसे में कई सारे बिजनेस के पहलू हैं, आइडिया हैं जो इसमें लागू किए जा सकते हैं। इसमें पहला तो है जैविक दूध का उत्पादन और फार्मिंग, यानी आप देसी गायों को पालें और उनसे जैविक दूध उत्पन्न करें और सीधा जैविक दूध मार्केट में आप उसको बेचें, जिसमें आजकल A2 जैविक दूध की बहुत डिमांड है।
1: बहुत।
2: दूसरा है मूल्य वर्धित उत्पाद यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जिसमें सिर्फ कच्चा दूध ही नहीं बल्कि उस दूध से जैविक घी बनाएं, जिसमें भी खासकर वैदिक बिलोना पद्धति का घी आजकल बाजार में बहुत उच्च दाम में बिक रहा है।
1: बिल्कुल।
2: इसके साथ साथ पनीर है, मक्खन है और चीज है, उनको खासकर जो शहरी क्षेत्र हैं या जो रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े कैफे हैं, उसमें डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ प्रोबायोटिक ऑर्गेनिक दही और फ्लेवर्ड दही, इस तरह के प्रोडक्ट भी सिर्फ दूध के अलावा आप कुछ अधिक मूल्य दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू है पशु का आहार, क्योंकि जैविक डेयरी फार्मिंग के लिए आहार भी जैविक चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: तो इसमें ऑर्गेनिक डेयरी के लिए फॉडर फार्मिंग भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, यानी बिना रासायनिक खाद के ही बरसीम, नेपियर या मक्का आपको उगानी है, सीधा डेयरी फार्म को बेचना है, ये भी एक अच्छा है किसानों के लिए। साथ साथ जो अनाज है जैसे खल है या दाना है, वो भी बिना किसी रसायन के उगाकर उसको भी ऑर्गेनिक सर्टिफाई में बेचा जा सकता है।
1: जी, अब जहां तक इसकी बात है जैविक डेयरी फार्मिंग,

0: तो क्या इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, सरकारी जो सर्टिफिकेशन है?
1: जी बिल्कुल, जैविक प्रमाणीकरण यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है जो आपका डेयरी फार्म और उत्पाद यानी दूध घी पनीर पूरी तरह से रसायन मुक्त और प्राकृतिक होना चाहिए। तो यदि आपको अपने डेयरी उत्पादों को पैकेट या बोतल पर ऑर्गेनिक या जैविक लिखकर अच्छे दाम पर बेचना चाहते हैं तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार एनपीओपी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है।
0: अच्छा, एनपीओपी, ये
1: जी
0: किसान भाई बहन नोट कर लें।
1: जी और इसके तहत उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो यूपी सोका है, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान जो लखनऊ में स्थित है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, या अपेडा द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य जो निजी प्रमाणिक संस्था है उनमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के साथ साथ आपको अपना जो फार्म है उसका नक्शा देना होगा, भूमि के दस्तावेज और जो भी आप पशु पाल रहे हैं उनका विवरण देना भी जरूरी है।
0: तो इसकी कोई वेबसाइट होगी, उस पे
1: जी
0: जाके
1: जी
0: देख सकते हैं,
1: जी
0: है ना?
1: यूपी सोका की वेबसाइट भी है और एपेडा की वेबसाइट।
0: एपेडा की, अगर आप खुद नहीं देख पाएंगे तो वो जो जनसेवा केंद्र, वहां जाके आप फॉर्म भी भरवा सकते हैं।
1: जी जी
0: और अब ये देखने में आता है कि बहुत सारे लोग तो होंगे जो नए सिरे से शुरू करेंगे, कुछ लोग ऑलरेडी पहले से ही अपना चला रहे हैं सामान्य डेयरी फार्म, तो अगर वो खोलना चाहें ऑर्गेनिक डेयरी का, अपने फार्म को बदलना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं?
1: जी अगर कोई पशुपालक भाई सामान्य डेयरी फार्म को जैविक डेयरी फार्म में बदलना चाहता है तो उसके लिए नियम है, उसके लिए कन्वर्जन पीरियड है जो 2-3 वर्ष का होता है। उसमें क्या है कि कम से कम 2-3 वर्ष तक जिस खेत से चारा आ रहा है उस खेत में कोई रासायनिक खाद या कीटनाशक ना डाला गया हो तो उस खेत को भी हम जैविक खेत की तरह उसके उत्पादों को हम मान लेंगे। उसके साथ पशुओं को भी कि डेयरी पशुओं को 6 से 12 महीने तक अगर आप 100% जैविक चारा खिलाएंगे, जैविक दाना खिलाएंगे तो उन पशुओं को भी जैविक प्रणाली के तहत मान लिया जाएगा। तो ये अगर दो आप बातें पूरी करते हैं तो उसके बाद प्रमाणीकरण संस्था उसके इंस्पेक्टर जो ऑर्गेनिक इंस्पेक्टर कहलाते हैं वो साल में 1 या 2 बार आपने जो फार्म भर दिया है तो वो एक बार उसको आपका दौरा करने आएंगे। वो चारे मिट्टी पानी और दूध के नमूने लेंगे, उनकी जांच करेंगे और देखेंगे कोई केमिकल कोई एंटीबायोटिक कोई रसायन तो उपयोग नहीं हो रहा है। तो फिर उसका अगर वो सही रहा तो आपका जो सामान्य डेयरी फार्म है उसके बाद आप अपने ब्रांड पर भारत सरकार का इंडिया ऑर्गेनिक लोगो लगाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं।
0: बेच सकते हैं, तो बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है, इस तरह से आप किसान बहन भाई ये कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और जिन लोगों ने देर से ट्यून किया उनके लिए हम बता दें कि हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुज चौहान जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं एलपीएम सेक्शन में आईवीआरआई बरेली में, और आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग पे कि किस तरह से उससे बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो काफी कुछ जाना अभी तक हमने, और अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे किसान भाई बहन आप में से बहुत सारे, बहुत पूंजी नहीं होती होगी उनके पास, तो क्या कोई ऐसी योजना है सर, कि सरकारी योजना या फिर बैंक से कुछ सहायता मिल सके ताकि ये सेटअप कर सकें?
1: जी डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हैं जो सरकार की हैं,
0: जी,
1: जिसमें नाबार्ड व प्रधानमंत्री डेयरी लोन योजना है
0: अच्छा
1: जिसमें जो छोटे डेयरी यूनिट्स हैं उनकी स्थापना के लिए मिल्किंग मशीन खरीदने के लिए या फिर चिलिंग यानी दूध ठंडा करने की यूनिट्स के लिए 25% से लेकर 33% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
0: अच्छा,
1: इसके साथ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत भी अगर कोई प्रोडक्ट की यूनिट लगाता है यानी घी पनीर निर्माण की यूनिट लगाता है तो बैंक लोन पर 3% तक की ब्याज की छूट भी उपलब्ध है।
0: अच्छा,
1: इसके साथ साथ जो डेयरी की अन्य योजनाएं उनका भी आप लाभ ले सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष योजनाएं हैं जैसे नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत स्वदेशी गायों के पालन के लिए, इस तरह की योजनाओं का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो योजनाएं ढेर सारी हैं, बस उनका इस्तेमाल करने की, उनके बारे में जानकारी होने की जरूरत है, और जानकारी जब हो जाए तो वहां पे फिर उसका फायदा उठाने की जरूरत है। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, ये भी अगर बता दें आप।
1: जी इसमें जो यूपी सरकार की वेबसाइट है उसमें आप जाकर जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है
0: अच्छा
1: उस पर ये सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, साथ साथ जो यूपी सोका की वेबसाइट है एपेडा की वेबसाइट है इसमें भी आप जानकारी ले सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अब इसमें बात आती है, जैसा आपने बताया कि ऑर्गेनिक तरीके से चारा खिलाया जाना चाहिए ये पशुओं को, तो इसमें बात यह आती है कि खेत में बिना रसायन के उपयोग

0: किए हुए हरा चारा किस तरह से उगाया सकता है, कौन कौन सी पद्धति होती है इसकी?
1: ये ऑर्गेनिक डेयरी फार्म का सबसे महत्वपूर्ण घटक है कि जो चारे का प्रबंधन है वही पहले तो ऑर्गेनिक हो। तो इसके लिए क्या है कि जो साधारण तौर पर किसान बहुत ज्यादा उर्वरक कीटनाशक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें वो चारा नहीं चल पाएगा। तो इसमें चारे की बुवाई करने से पहले जो किसान भाई हैं, वो अगर प्रति एकड़ 2 से 3 टन केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट या फिर जो अच्छे से सड़ा हुआ गोबर की खाद है, फार्म यार्ड मैनोर जिसे कहते हैं, वो मिट्टी में मिलाएं, तो उससे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ बुवाई के समय और सिंचाई के साथ जीवामृत यानी जो गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन, मिट्टी का मिश्रण, उसका छिड़काव करें। इससे मिट्टी में लाभकारी बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ेगी। बीज बोने से पहले अजोटोबैक्टर और पीएसबी जैसे लिक्विड बायो फर्टिलाइजर से उपचारित कर सकते हैं सीड को। तो ये भी हवा से फास्फोरस, नाइट्रोजन मिट्टी से सोखने में मदद करेगा। चारों की फसलों में कीटों जैसे इल्ली या चेपा, इसके नियंत्रण के लिए भी रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर नीम के पत्तों, गौमूत्र से बने नीमास्त्र या अन्य ऐसे जो उपचार की व्यवस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, तो जो आपका चारा है या जो दाना उगेगा वो पूरी तरह ऑर्गेनिक कहलाएगा और उसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग में किसान भाई और डेयरी पालक कर सकते हैं।
0: जी, और ये जो चीजें हैं जैसे जीवामृत है और नीमास्त्र है, तो ये सब बनाने की जो विधियां हैं ये आईवीआरआई सेंटर पे आप लोग चाहें तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं ना?
1: जी, केवीके के माध्यम से आप इन सब चीजों की ट्रेनिंग ले सकते हैं।
0: और जो ये पूरा ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग है इसके बारे में भी अगर कोई जानकारी लेना चाहे?
1: जी, तो आपका आईवीआरआई में स्वागत है। आप केवीके के माध्यम से या हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन डिवीजन है,
0: अच्छा,
1: वहाँ पर आप संपर्क कर
0: सकते हैं। ट्रेनिंग भी चलती
1: जी,
0: है?
1: जी, नियमित ट्रेनिंग चलती है।
0: उसमें शामिल हो सकते हैं किसान बहन भाई। अब ये कई बार ये सवाल कुछ किसानों के जहन में आता है, कहते भी रहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक पद्धति है ये एक तो कई बार महंगी होती है और कई बार पैदावार पे असर पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, आज की अगर आप स्थिति देखें वर्तमान में, तो जो साधारण दूध के मुकाबले जो ऑर्गेनिक लेबल वाला दूध है
0: जी,
1: वो शहरों में 1.5 से 2 गुना रेट पे बिक रहा है। ऑर्गेनिक जो घी है, बिलौना घी है, वो 3-4 गुना रेट पे बिक रहा है। तो इसमें मुनाफा इसलिए काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें आपको उसका सेल प्राइस वो काफी बढ़ा हुआ है,
0: बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग इस चीज को प्राथमिकता देते हैं कि हम शुद्ध खाएं, ऑर्गेनिक खाएं। तो बिल्कुल साफ तौर पे ये व्यवसाय अगर आप ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग करते हैं तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाना तय है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो डॉक्टर अनुज चौहान सर ने बताया, जो भी पद्धति बताई और तमाम चीजें बताई, उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। जो लोग अभी तक डेयरी फार्मिंग नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू करेंगे, और जिन लोगों का पहले से है वो अपने डेयरी फार्म को ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में बदलेंगे, यही उम्मीद है। और भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हो तो आप सीधे कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क भी कर सकते हैं और समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो डॉक्टर अनुज चौहान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान बहनों भाइयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।

अभी आप सुन रहे थे आईवीआरआई इज्जत नगर बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि पाठशाला। विषय था जैविक डेयरी फार्म में उद्यमिता के प्रमुख अवसर। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अनूप चौहान। आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। एक महिला शांति देवी पत्नी महिपाल निवासी ग्राम देवचरा थाना भमोरा जिला बरेली। इनकी उम्र 45 वर्ष, लंबाई 5 फुट, रंग गोरा, शरीर सामान्य है और इनका चेहरा गोल है। ये 26 अगस्त 2026 से लापता है। अगर आपके पास इनके विषय में कोई सूचना है तो थाना प्रभारी भमोरा बरेली को सूचित करें। सूचना एक बार और सुन लें। एक महिला शांति देवी पत्नी महिपाल निवासी ग्राम देवचरा थाना भमोरा जिला बरेली।

इनकी उम्र 45 वर्ष, लंबाई 5 फुट, रंग गोरा, शरीर सामान्य, चेहरा गोल है। ये 26 अगस्त 2026 से लापता हैं। अगर आपके पास इनके विषय में कोई सूचना है तो थाना प्रभारी भमोरा बरेली को सूचित करें।

एक और सूचना सुनिए। एक महिला रहीशम, पत्नी अबरार शाह, निवासी ग्राम लाड़पुर उस्मानपुर, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली। इनकी उम्र 40 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट, शरीर सामान्य, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। अगर इनके विषय में आपको कोई सूचना हो तो प्रभारी निरीक्षक थाना हाफिजगंज बरेली को सूचित करें।

सूचना एक बार और सुन लें। एक महिला रईसन पत्नी अबरार शाह निवासी ग्राम लाड़पुर उस्मानपुर थाना हाफिजगंज जिला बरेली। इनकी उम्र 40 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट, शरीर सामान्य रंगे हुआ है और चेहरा गोल है। अगर इनके विषय में कोई सूचना हो तो प्रभारी निरीक्षक थाना हाफिजगंज बरेली को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर

0: पर अभिनंदन प्रस्ताव समेत 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जीते। और झांसी में कल से शुरू होगी 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। 3 डिवीजन की 29 टीमें लेंगी हिस्सा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में विकास, औद्योगिक निवेश, कृषि, रोजगार, तकनीक और जन कल्याण से जुड़े 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की यात्रा सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना से संचालित रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नए आत्मविश्वास के साथ चतुर्मुखी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
1: कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नए आत्मविश्वास के साथ चतुर्मुखी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद इस बात के लिए सदैव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी रहेगी कि उन्होंने राज्य के विकास को निरंतर अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से आज उत्तर प्रदेश विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का नया मॉडल बनकर उभरा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश को मिली एक बड़ी सौगात है। ये एयरपोर्ट आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, पर्यटन और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। इसी भावना के साथ कैबिनेट ने एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है।
1: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी की आभारी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एवं भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। अतः यह मंत्रिपरिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास करती।
0: कैबिनेट बैठक में दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। बैठक में प्रदेश की नगरीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत लखनऊ, कानपुर सहित प्रदेश के 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
2: जनपद भदोही में भारतीय संत परंपरा के महत्वपूर्ण संत एवं समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के द्वारा किए गए सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान के दृष्टिगत उनकी स्मृति एवं सम्मान में जनपद भदोही का नाम परिवर्तित किए जाने पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि जनपद का नाम संत रविदास नगर भदोही रखा जाए। आखिर में उनकी दी गई विशेष बात यह है कि उनका नाम भी रहेगा संत रविदास जी का और भदोही भी रहेगा।
0: बैठक में ब्याज माफी योजना 2026 लागू करने और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान क्रय नीति को भी मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 10 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य शामिल हैं। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। राज्यसभा सदस्यों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना था। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सदस्यों में धर्मपाल सिंह, राम प्रकाश पाल, श्रुति गंगवार, विद्यासागर सोनकर, प्रियंका सिंह रावत, राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडे और राम प्रताप सिंह शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव और धनराज नाथवानी राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 अक्टूबर को होने वाले सीजेपी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर

0: नजर दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाएं पूरी तरह बंद न की जाएं। ये निर्देश दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास बंद करने और रेलवे के कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द करने के फैसले के बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से जारी रहनी चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आप जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
1: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
2: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है।
3: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे।
1: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झांसी में कल से 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 शुरू होगी। इसमें 3 डिवीजन की कुल 29 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का समापन 21 अक्टूबर को होगा। उत्तर प्रदेश हॉकी के अध्यक्ष और खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने आज लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश को इसकी मेजबानी मिलना गौरव की बात है।
4: उत्तर प्रदेश तो सदैव खेलों को दुनिया में विकास कर रहा है और उसी के सापेक्ष हमने वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप ले लिया जिसका कल उद्घाटन हो जाएगा 10 तारीख को और 21 अक्टूबर को उसका समापन किया जाएगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव समेत 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जीते। और झांसी में कल से शुरू होगी 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। 3 डिवीजन की 29 टीमें लेंगी हिस्सा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: talking game.
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। श्रोताओं के प्यारे प्यारे खातों पे आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत के आज के सुरीले और कर्णप्रिय सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। लीजिए प्रस्तुत है अनुरोध गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म निकाह से, आवाज है सलमागा की और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। बटिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू डॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। ये खत्म है भेजा है ग्राम पारस रामपुर नई बस्ती से कमरजान अंसारी, सुजाउद्दीन, साहिल मोहम्मद, सजय अंसारी ने। सराय कालेखा नई दिल्ली से अनिल ठाकुर, रीना, ज्योति और प्रशांत। मौलागढ़ नई बस्ती से आप हैं तनु अंसारी, तराना अंसारी, अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन, रिदा, ऐजा और इनके मम्मी पापा। गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से कैशर शमसी, अजीम सलीम, ताबिश और तरन्नुम शमसी। ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी रामपुर से अमरजीत जी, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। नाज रेडियो क्लब करेली बरेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजरत फातमा, अबरार अहमद, इसार अहमद, इकबाल अहमद, तस्लीम रजा और मुन्ना भाई।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म क्रांति से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। ग्राम व पोस्ट कोठा कंडू से राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, सविता मिश्रा, सत्या मिश्रा, शीतल मिश्रा, राधा मिश्रा और शिवम मिश्रा। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से आप हैं पवन गौड़, कुसुम गौड़, सुयश आशीष और राधिका गौड़। बहेड़ी से ये खाता में भेजा है अंजू भाई, खालदा बेगम, कहका शाह और दानिश आदिल शफक ने। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, वैंडी शर्मा, सौरभ और साइना शर्मा। ग्राम लटूरी पुष्ट बिलवा बरेली से हशमत अली, हासिर, हमशेर, आमिर और तैमूर अली। ये फरमाइश है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का। रामपुर रोड हल्द्वानी से आप हैं गंगा सिंह रावत।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र और आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत देवेंद्र रावत के साथ। पारसमणि, इस फिल्म में आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में गीत। शब्द रचना है असद भोपाली की और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। मोहल्ला किशोर बाजार बिहारीपुर सिविल लाइन बरेली से कुंदनलाल सागर, ब्रजेश कुमार सागर, विपिन कुमार सागर, कल्पना सागर, पूजा सागर, बेटी नैना सागर और समस्त सागर परिवार। ये खत हमें भेजा है हमारे पुराने श्रोता ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लाल मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, मुबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। भोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। क्रम पजौनी जलौन से आप हैं सत्येंद्र कुमार और साथी। गणेश कॉलोनी चंदौसी से देवेंद्र कुमार गुप्ता, प्रिंस प्रशांत, कार्तिक और पवी। आप हैं हमारे रेगुलर लिस्नर खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। तो सुनते हैं पारसमणि का ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म डॉन से, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार है अनजान, संगीतकार है कल्याण जी अन जी। इस गीत की फरमाइश में भेजी है बरेली जंक्शन से गरीब भाई नासिर भाई विक्की भारद्वाज ने। मोहल्ला हलवाया शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिन्ना कौसर। शेरगढ़ बहेड़ी से आप हैं लईक अहमद इदरीसी, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अतीक, यास्मीन और शिफा भी। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से माही, पलक दुबे, मधुर, सुशीला, राजेंद्र, सतीश और भागवत महाराज। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुधन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन शाह, राजनजी शाह और सुषमा कपूर। शारदू शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाल, चंद्रकला रिवाल। उगैती बदायूं से डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता और पी के हिटलर।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म नमक हलाल से। आवाजें हैं आशा भोसले और बप्पी लहरी की। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं बप्पी लहरी। और सुनने की फरमाइश आप सबकी बक्सीना दातागंज बदायूं से विमल ठाकुर, सरता शुभ लव गुनगुन, अमर सिंह नीलू, अमन रिया, सेजल, सूर्य, सोना, रीना और नीरज। खन्ना बिल्डिंग के पास सुभाष नगर बरेली से मुन्ना लाल। इसी गीत को सुनना चाहा सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी, इमरान शेख ने। और इनके साथ हैं करुला मुरादाबाद के अयूब खान। गांव चौलादा से संजय ढींगिया, नमन मुस्कान और कुनाल। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। आप हैं बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली से विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी और मुस्कान। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली बरेली से शारून अंसारी, मोइन, तस्लीम, सर्वे सैनी और डीजे प्रधान। नई मस्जिद करेली से इंतजार अंसारी, अब्दुल सलाम, अख्तर, हिना और नाजरीन। कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इरफान, आमिर, इकबाल, अफजाल, सजीद अभी, शाहनवी, सब्जल, सानिया, सैबिर, सबनूर, फैजल, अमान, मोनिस और इनके मम्मी पापा। तो सुनते हैं नमक हलाल का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ आज का अनुरोध गीत संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: किसे नहीं मरने दोगी?
0: अनुरोध गीत अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: गीत के साथ ही हम आकाशवाणी के लखनऊ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं बालिका सेन गुप्ता का काव्य पाठ।
1: एक आह निकलती है, एक वाह निकलती है, जीवन के दोराहे पर कविता रूपी नई राह निकलती है। वेदना संवेदना, जश्न जोश होश रोष आवेश आवेग और उद्वेग वेग, जब जुनून की हद से आगे बढ़ जाए, जिंदगी के मार्ग पर भ्रम का असमंजस रूपी जब कोहरा ही कोहरा नजर आए, कविता नई संजीवनी बनकर प्राण निज का औरों का जीवन बचाए, लौ जलाए उम्मीद दिखाए, उसकी भी आगे रूहानियत के रुखसार उत्तम

तुम तक जाने की एक चाह निकलती है, अंतर मन की ध्वनि साहित्य ओ जीवन के अनंतिम पथ पर सरे राह निकलती है, सरे राह निकलती है, शब्द एहसास ओ अनुभूति जुड़ जाते हैं अनुभवों के चुंबक संग, बांधते हैं इंद्रधनुषी समा ओ जीवन के इंद्रधनुषी रंग, सुलझाते हैं अनसुलझे पहलू जीवन के, सिखलाते हैं जीने का अनोखा ढंग, हम जीतते हैं जाने ही अनजाने ही जीवन के हारे हुए जंग, उस माँ जिसकी समाति नस नस शिराओं में जगाती नित नूतन तरंग, आत्मा परमात्मा संग करके वार्तालाप, माध्यम कविता का करके अंगीकार, अति इंद्रिय सुख का पाता है उमंग, मानो ज्यों जीवन की बगिया में कुसुमित पुष्पित पल्लवित कोई अप्रतिम अति सुंदर अद्भुत नैसर्गिक सुगंध, एक आह निकलती है, एक वाह निकलती है जीवन के दौराहे पर, कविता रूपी नई राह निकलती है। आइए एक मेरी ये दूसरी कविता है, सुनो सुनो सुनो कुछ तो करो, सुनो कुछ तो करो कि इससे पहले सब श्मशानों में तब्दील हो जाए, इससे पहले सब श्मशानों में तब्दील हो जाए, कुछ तो करो कि इससे पहले घर मकानों और खंडहरों में तब्दील हो जाए, कुछ तो करो इससे पहले घर मकानों और खंडहरों में तब्दील हो जाए, कुछ तो करो इससे पहले कि दवाएं जहरों में तब्दील हो जाए, कुछ तो करो इससे पहले कि भोजन खुद भूख में, भोजन खुद भूख में और भूख बेबस आंखों के आंसू बनकर, बेबस आंखों के आंसू बनकर न सूख पाए न बह पाए, न सूख पाए न बह पाए, सुनो सुनो इससे पहले कि अपने अपनों से बिछड़ जाए, इससे पहले कि अपने अपनों से बिछुड़ जाए, इससे पहले कि आते हमेशा के लिए मौन हो जाए, बेजुबान बोल उठे जुबान वाले मौन हो जाए, रोने और हंसने का फर्क ही खत्म हो जाए, जागने सोने का अर्थ ना कोई समझ पाए, उत्सव मनाने सब फरिश्ते बन, उत्सव मनाने सब फरिश्ते बन, किसी और ही जहां में मिलने का करे वादा, किसी और ही जहां में मिलने का करे वादा, पर दोस्तों ऐसी भी बेमौत मरने की क्या थी जल्दी, अभी कहां था इरादा, पर दोस्तों ऐसी भी बेमौत मरने की क्या थी जल्दी, अभी कहां था इरादा, कुछ तो करो इससे पहले कि अथाह समंदर तनहा तनहा हो जाए, इससे पहले कि नदियां उससे मिलने को उतावली ही न रह जाए, इससे पहले कि बादल गरजने बरसने से डर जाए, इससे पहले कि बादल गरजने बरसने से डर जाए, आसमान खून से लथपथ इंद्रधनुष सिर्फ लहू का ही रंग चीख चीख जतलाएं, बिजलियां विचारों में भी कौंधने से डर जाएं, बिजलियां विचारों में भी कौंधने से डर जाएं, सोचो विचार कौंधने जैसा दिमाग भला वो फिर कहो कहां से पाएं।

0: कहो बंधु, जब मानव ही ना बच पाए, आखिर मानवता जाए तो कहाँ जाए। अहो, जब बंधु भाई ही हो जाए भगवान को प्यारा, भाईचारा किन हाथों की डोर संग बंध जश्न मनाए। जिस दिन पुकारने पर कोई नहीं सुनेगा, नहीं कोई करने पर पछताएगा, जब खून और सांसें, दिल आंखें और धड़कन उधार देने पर भी नहीं चलेंगी, भला कहो फिर कौन किसके शव पर रोने आएगा। भला कहो फिर कौन किसके शव पर रोने आएगा। फिर मानव किस किस बात पर रोलेगा, और भला किस बात पर मुस्कुराएगा। जब उड़ते परिंदे आसमान से उतरना जाएंगे फूल, जब सारा मान विमान धरा में समाकर हो जाएगा धूल, यादें अनाचार व्यभिचारों की डराएंगी बनकर शूल, अबोध अबोले जानवर किसी और ही जहां की सैर पर निकल जाएंगे, किसी और ही जहां की सैर पर निकल जाएंगे। पेड़ पौधे अस्थि पंजरों से बने पत्थरों पर जड़ न जमा पाएंगे, पेड़ पौधे अस्थि पंजरों से बने पत्थरों पर जड़ न जमा पाएंगे। सोचो सोचो सोचो, भटकती रूहें क्या करेंगी, दिया बाती सांध्य प्रहर क्या करेंगी, दिया बाती सांध्य प्रहर लेंगी ईश्वर का नाम करके कल्पना, क्या रूह कांप न जाता, करके कल्पना क्या रूह कांप न जाता। आह थर राती जुबान, आह थर राती जुबान, जब साय साय की मौत के जीत की प्रतिध्वनि गूंजेगी समस्त ब्रह्मांड के अणु अणु में, गूंजेगी समस्त ब्रह्मांड के अणु अणु में, साक्षी होगा अनिल अंबर अवनी, साक्षी होगा अनिल अंबर अवनी। क्या देश समाज शहर क्या ग्राम, ओह कैसी होगी वो शाम, ओह कैसी होगी वो शाम। हे शिव रक्षा करो, हे शिव रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे शिव रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम।
1: अभी आप सुन रहे थे बालिका सेन गुप्ता का काव्य पाठ। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अरशद हुसैन चिश्ती व साथियों की गाई नात व कव्वाली। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं नात।

कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत का, और आज आप सुन रहे हैं अरशद हुसैन चिश्ती व साथियों की गाई नात व कव्वाली। अभी आपने सुनी नात, अब आपको सुनवा रहे हैं कव्वाली। आवाजें हैं अरशद हुसैन चिश्ती व साथियों की।

इस कव्वाली के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे अरशद हुसैन चिश्ती व साथियों की गाई नात व कव्वाली। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का गीत सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है रमैया वस्तवैया।

कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म का नाम है एजेंट विनोद।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार शाम 6:50 से लेकर शाम 7:20 तक। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने दो दो

0: तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने एक सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदी ग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलग वेत्रीगड़गम टीवीके ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजी नगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशे

0: वरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमरीकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
1: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
0: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. Vance की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
1: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
2: There are three parties that have got licenses.
3: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
4: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
5: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
6: सेमीकंडक्टर जर्नी,
7: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
6: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
4: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
8: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही।

0: लेकिन आपको आता क्या है? उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में हरियाली और रास्ता फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण के बोल और तर्ज, चित्रगुप्त की, फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी।

श्रोताओं, अगला गाना हमने लिया है भाभी फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, बोल है राजेंद्र कृष्ण के और चित्रगुप्त ने धुन बनाई है इस गाने की।

अगला गाना हमने लिया है नीला आकाश फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, राजा मेहंदी अली खां ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए. लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे सनम फिल्म का गाना. मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं ओपी नैयर.

आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लव इन टोक्यो फिल्म से हसरत जयपुरी ने लिखा, इसे संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने।

ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका दरा दरा दरा अब ये क्या उल्टी हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों में रंग है भारतीयता का। वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हम उसका भरपूर आनंद ले पाते हैं।

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक

देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुई। उस दौर की ये मशहूर फिल्में हैं चोर मचाए शोर।

रविंद्र जैन की प्रतिभा इस मायने में दूसरे संगीतकारों से अलग है क्योंकि रविंद्र जैन फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ गीत भी लिखते रहे और उन्होंने कई गीत गाए भी।

रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसीलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

0: आशियां।
1: रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ओछापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

व्याकरण की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में, सस्ती तुकबंदियों में करहाते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।

रविंद्र जैन ने एक ओर जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार गीत।

0: आज से पहले
1: संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और रामायण।

0: कुछ प्रसिद्ध बैले कृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्यमालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।
1: तो

एक टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन। रविंद्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविंद्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविंद्र जैन सदैव याद किए जाएंगे अपने मधुर संगीत के लिए, मीठे गीतों के लिए।

0: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन पर केंद्रित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिरों में आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल की कलम से जब निकलते हैं चाहतों के किस्से, तो वो बातें छपती हैं दिल की गहराइयों में। अरमानों के बादल रचते हैं नित नई इबारत प्रेम की। मन डूबने लगता है एहसासों की गहराइयों में। उमड़ते हैं जज्बातों के सैलाब और नजर आता है यादों में बस वही चेहरा।

मासूम चाहतों में क्या कुछ किए जाते हैं हम, लिखते हैं तेरा नाम कभी कभी छुपाते हैं हम। दिल की बातों को कह पाना कहाँ आसान रहा, लिखने लगूं तो शब्द भी पड़ते हैं कम। जो कहना था तुमसे मिलकर हमें, वो जज्बात कागज में कहाँ समाएंगे। कभी मिलो जो ख्वाबों में तुम, हर वो बात तुम्हें बताएंगे।

थी जो प्यार की पहली पाती, हुए मेरे पैर हवा अब। कभी उड़ती हूँ यहाँ, कभी उड़ती हूँ वहाँ, कदमों ने मेरे छू लिया जैसे आसमां। न होश खुद का न खबर जमाने की, कहने लगी सखियां मेरी हुई तो उस दीवाने की। इश्क मोहब्बत प्रेम की पींगे खेलने लगी हैं दिल से, अब राज ये छुपाना मुश्किल हुआ है इस दिल से।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। भेज तो दिया दिल का पैगाम उन्हें, न जाने क्या लिखा इस दिले नादान ने। अब घबराते हैं अरमान, डरते हैं खुदा जान उन्हें। प्रेम में नाराजगी न मिले कहीं अंजाम हमें। ये प्रेम की पाते लिखना कहाँ आसान रहा, जब तक न मिले जवाब उनका दिल रहे परेशान मेरा।

आया है खत तो देंगे जवाब भी हम, कैसे कह दें किसी अनजान से अपने दिल की ये बात हम। कहनी तो थी उनसे लाखों बातें दिल की, मगर किसी और से कहते वो बातें झुकती हैं शर्म से नजर। लिखा था मेरे सांवरिया ने, जानते हैं वो मेरे दिल की हर बात, लिखा सलाम छुपाए हैं उसमें ही दिल के सारे जज्बात।

लिख तो दिया था सलाम खत में छुपा कर दिल के जज्बात, वो क्या समझेंगे मेरे विरह की ये रात, क्या जान जाएंगे मेरी उलझी लटों की उलझने, मिलेंगी आंखों की कोर में छुपी उनके इंतजार की वो रात, न जाने कब आएंगे साजन इस गली, उनके बिना न दिन भले लगे न लगी भली रात।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है, दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे

0: वन, ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
0: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
3: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
2: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का ध्रुपद गायन, जिसके अंतर्गत आपने सुना राग जय जयवंती। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: محمد زبیر. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है. तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं. पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही. असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है. उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी. आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे. दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है. संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है.
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग. इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है. जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था.
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था. पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है. सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163

0: के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायवेद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Midnapore district and Rajinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. In Nandigram, BJP candidate Hazirani Rath defeated Congress candidate Milan Pradhan by over 1,22,000 votes. In Rajinagar, BJP candidate Shakha Rao Sarkar defeated Ghulam Nabi Azad of the Aam Janata Unnayan Party, AJUP, by more than 75,000 votes. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand won the Thattanachavadi Assembly by-election by 8,482 votes. In Tamil Nadu, the ruling Tamil Ragavetri Karagam, TVK, won the by-elections in Madurantakam and Tharapuram. K. Margatham Kumaravel won Madurantakam by 73,801 votes, while B. Satyabham won Tharapuram by 9,471 votes, defeating S. Suganya of DMK. In Assam, BJP candidate Devashish Sharma won the Nagaon Lok Sabha by-election, defeating AIUDF chief Badruddin Ajmal by over 1,40,000 votes. Congress candidate finished third. Prime Minister Narendra Modi congratulated the BJP candidates and praised party workers, saying the results reflected public support for the BJP NDA's good governance agenda. He also congratulated the AINRC for its victory in Puducherry. Union Home Minister Amit Shah said the NDA's by-election and local body poll victories showed that the people have completely rejected the India alliance. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing media in New Delhi today, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance.
2: We have received an application from Sarav Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
1: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita are currently